पैर समाध सना हो ज्ञान गए आसन चढ़यो धराम तनक कर गयो भगत सील है सर लड़यो पै निरपो हर अटल मान शब्द गुर ने जा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अवत पंच दूत बिखंडयो पलो पुहाल तेजो तना निरपतनाथ नानक बार गुर अमरदास सच सल पान तय दल जितो इव युद्ध कर कण हर बूंद बसो रो मावल कुसुम बसंत गणंत न आवै रस करण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे उदर ध्यान ज्ञान सदगुर के

सदगुर प्रमाण बिद न सिरयो जग जस दूर बजायो। गुरु रामदास कल उचरै तै अपाए अमर पद पायो। जग जितो सदगुर प्रमाण मन एक तिहायो। तन तन सदगुर अमरदास जिन नाम दिरड़ायो। नामृद नाम निधान रिद सिता की दासी। तय सरोवर मिलयो पुरख भेट्यो अविनासी। आदले भगत जित लग तरे।

सदगुर शब्द अथाहो अमे तारा रस गुट मत माता संतोख पिता सर सहज समायो आजो नहीं संभव्यो जगत गुर भजन तरायो अवगत अगोचर अपर पार मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उचर तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निधान भगते पौतारण अमृत बूंद हर नाम बिस्की विहे निवारण सहज तरोवर फल्यो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते भय सतगुर शब्द

सदगुरु नाम एक लेमन जपे दृढ़, तिन जन दुख पाप कहो कत होवे जियो, तारण तरण खिन मातर जाको दृष्ट धारै।

की सेव सेव सिद्ध साधक तोर असुर गण तरे ते तीस गुर बचन सुन कन रे सुन तरे ते संत हित भगत गुर गुर कर तरे उप्रहलाद गुर मिलत मुन जन रे तरे नारदास संकाद हर गुरमुखे तरह एक नाम लग तजो रस अन रे दास बेंत कहे नाम गुरमुख लहे गुरु गोर गुरु गोर गुरु जप मन रे श्री गुरु साहेब सब ऊपर करी कृपा सहयुग जिन त्रू पर श्री प्रहलाद भगत को धरियं हस्त कमल माथे पर तरियं अलख रूप जी लखिया ना जाई साधक सिद्ध सगल सरनाई गुर के बचन सत जी धारो मानस जन्म दे निस्तारो गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रापाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसे बनवारी ते लैणा थाप जोत जग तारी।

राम चुरे दल मेलव अंतर बल अधिकार, बंतर की सेना सेवी है मन तन जुज अपार। सीता लह गया देसरो लक्ष्मण मुगो सराप, नानक करता करनहार कर वेखे थाप थाप। मन में चूरे राम चंद सीता लक्ष्मण जोग, हनुमंतर आराध्या आया कर संजोग। उला दैत न समझई इन पव की ये काम, नानक वे

ना पदार्थ पाया अतुट परे भंडार हर गुरबाणी उच्चर है अंत न पारावार नानक सब कारण करता करे वेखे सृजनहार गुरमुख अंतर सहज है मन चढ़िया दसवें आकाश इथे ऊंग ना पुख है हर अमृत नाम सुखवास नानक दुख सुख व्याप्त नहीं जिथे आत्म राम प्रगास काम क्रोध का चोलड़ा सब गले आए पाए एक उपजे एक बिन सजावे हुक्मे आवे जाए जमन मरण न चुकई रंग लगा दूजे पाए बंधन बंद पवाईयन करना कछु न जाए जिनको कृपा तारियन तिना सतगुर मिलिया आए सतगुर मिले उल्टी पई मर जीव्या सहज सुपाए नानक भगती रत्या हर हर नाम सुमाए मानमुख चंचल मत है अंतर

दूजे पाए बिखमाया कारण परम दे फिर घर घर पतकवाए बेसवा केरे पूत ज्यों पिता नाम तिस जाए हर घर नाम ना चेतनी करते आप खुआए हर गुरम कृपा तारियन जन विछड़े आप मिलाए जन नानक तिस बलिहारणे जो सतगुरु लागे पाए नाम लगे से ऊबरे बिन नावे जम पुर जावे नानक बिन नावे सुख नहीं आए गए पछतावे चिंता ताव तरे गए तामन पया आनंद गुर प्रसादी बुझिए सातन सुती नचिंद जिनको पूर्व लिखया तिना पेटिया गुर गोविंद नानक सहजे मिल रहे हर पाया परमानंद सतगुर सेवन अपना गुर सबदी विचार सतगुर का पाणा मन लैन हर नाम रखे उरतार एथे उथे मनियन हर नाम लगे वापार गुरमुख शब्द संजाप दे इत साचे दरबार सच्चा सौदा खर्च सच अंतर प्रेम प्यार जम काल नेड़ ना आवई आ बख्शे करतार नानक नाम रते चेतनवंत हैन निरतन होर संसार जन की टेक हर नाम हर बिन नावे ठवर न ठाओ गुरमति नाओ मन मसे सहजे सह समाओ वडभागी नाम त्याया ऐरस लागा पाओ जन नानक मंगे तूड़ तेन पौ सत कुरबाणे जाओ लग चौरासी मेदनी तिसना जलती करे पुकार यो मोह माया सब पसरिया नाल चले न अंती वार बिन घर सांत न आवई किस आगे करी पुकार वडभागी सतगुर पाया बुझिया ब्रह्म विचार तिसना अगन सब बुझ गई जन नानक हर उर तार असी खते बहुत कमान दे अंत न पारावार हर कृपा करके बख्श लै हो हों पापी वड गुनेगार हर जियो लेखे वार न आवई तू बख्श मिलावनगार गुर तुठे गरपा मिलया सब किल कट विकार जिन्ना हर घर नाम त्याया जन नानक तिन जयकार विछड़ विछड़ जो मिले सतगुर के पय पाए जन्म मरण हिचल पय गुरमुख नाम त्याए गुर साधु संगत मिले हीरे रत्न लभन नानक लाल अमोल का गुरमुख खोज लहन मनमुख नाम न चेत्यो तिग जीवन तिग वास जेदा दिता खाना पहनना तो माना वस्यो गुणतास त्यो मन शब्द न भेद्यो त्यो होवे करवास मनमुखिया दोहा गणी आवन जान मुहियास गुरमुख नाम सुहाग है मस्तक मणि लिखयास हर हर नाम उरतारिया हर हिरदे कमल प्रगास सतगुर सेवने अपना हों सद बलिगारी तास नानक तेन मुख उजले जिन अंतर नाम प्रगास शब्द मरे सोई जन सिज बिन शब्दे मुक्त न होई एक करे बो कर्म विगुते पाए दूजे परज वगोई नानक बिन सतगुरु नाओ ना पाईए जे सो लोचे कोई हर का नाओ आतवड़ ऊंचा ऊंची हुई ऊंचा होई अपड़ कोई न सकई जे सो लोचे कोई मुख संजम खच्छा ना हो भई तर पेख पवे सब कोई गुर की पौड़ी जाए चढ़े कर्म प्राप्त होई अंतर आए बसे गुर शब्द विचारे कोए नानक शब्द मरे मन मानिए साचे साची सोए माया मोह दुख सागर है।

जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच होमे कर्म कमाम दे सब धर्म राय कै जाही गुरमुख हछे निर्मले गुर के शब्द सुभाए ओना मैल पतंग न लगई जे चलन सतगुर पाए मनमुख झूठ न उतरै जे सो तोवन पाए नानक गुरमुख मेलियन गुर के अंक समाए बुरा करे सो केहा सिजै अपने रोह आपे ही दजै मनमुख कमला रगड़े लुजै गुरमुख होए तेस सब किछ सुजै नानक गुरमुख मन स्यो लुजै जिन्ना सतगुर पुरख न सेवे हो अवदना की तो विचार ओए मानस जून।

हर मंदिर वस्त अनेक है, नाम निद नाम समाल, तन भगवंती नानका जिन्ना गुरमुख लद्दा हर पाल, वड भागी गढ़ मंदिर खोजया

अभे बंगली कौन असले की पई बारी ए पैरों की पंचो नारी पंचम हरख दे साख सुनाव है बंगालम माद माद वगाव है ललत बिलाव लगावगी अपनी अपनी पांत अष्ट पुत्र पैरव के गावे गायन पात्र द्वितीया माल कौशक आलाप है संग रागनी पंचो थप है गोंड करी अरदेव गंधारी

पौरानद गाए अष्टमाल कौशिक संगलाए पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सुत उठे तान कलोल गायन तार मिलावगी ते लंगी देवकरी आई बसंती संदूर सुहाई सरस अहीरी ले पार जा संग लाई पंचो आर जा सुरमानंद पास कर आए चंद्र बिंब मंगलन सुहाए सरस बाण औ आए बिनोदा गावे सरस बसंत कमोदा।

उजरी संग दीपक के थाप कालंका कुंतल औरामा कामल कुसुम चंपक के नामा गौरा औ कनरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मेल

मन कोई पंच प्रमाण पंच प्रधान पंचे पावे दर गै मान पंचे सोह है दर राजान पंचा का गुरेक ध्यान जे को कह करे विचार करते कह करने नाही सुमार तौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जन सूत जे को बुझे हुए सचियार तबले उपर केता पार धरती होर परे होर होर तिस्ते पार तलै।

को गुआओ, तिस्ते होए लख दरियाओ। कुदरत कौन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख जाप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तपताओ, असंख ग्रंथ मुखवेद पाठ, असंख जोग मन रह उदास। असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूरमो पक्षार, असंख मोहन लिवलाए तार। कुदरत कौन कहा विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावै साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल बढ़ात्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सर करह भार, नानक नीच कह विचार। वारिया ना जावा एक वार, जो तुद पावै साई परिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख है सिर पार होए, अखरी

सो पुरख निरंजनु हर पुरख निरंजनु हर अगमा अगम अपारा सब त्यावै सब त्यावै तुद जी हर सच्चे सृजनहारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावो संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी।

तेरी अनक तेरी अनक करे हर पूजा जी, तब तापे जपे बेअंता, तेरे अनेक पड़े बो सिमरत शास्त्र जी। कर किरिया खड़ कर्म करंता, से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता, तू मात पुरख अपरंपर करता जी, तू जेवड़े अवर ना कोई, तू जुग जुग वेको सदा सदा तू एको जी, तू निश्चल करता सोई, तू द्यापे भाव है सोई वरतै जी, तू आपे करे सो होई, तू द्यापे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई, जन नानक गुण गावे करते के जी, जो सब सह का जानोई, आसा महला चौथा। तू करता सचियार मैंडा साई, जो तो पावे सोई थीसी, जो तू देह सोई हाँ पाई रहाओ, सब तेरी तू सबनी त्याया, जिसनो कृपा करह तिन नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया।

जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जान्या हर राया, कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे की रखो शर्मा। सोहेला राग गौड़ी देव की महला पहला, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीर्ति।

अगै गया जानी है मिणा मैं बेकार, पै तेरा डर अगला खप खप छिजै देह। नाव जिन्ना सुल्तान खान होंदे डिठे खेह, नानक उठी चलिया सब कूड़े टुटे ने। श्री राग महला पहला सब रस मिठे मने है सुनिया सा लोने। खड़ तुरसी मुख बोलना मारन नाद किए, छत्ती अमृत भाओ एक जा को नदर करे। बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए मन में चले विकार। रहाओ रत्ता पहनन मन रत्ता सुपेदी सतदान, नीली स्याही कदा करनी पहरन पैर ध्यान। कमर बंद संतोख का तन जोबन तेरा नाम, बाबा होर पहनन खुशी खुआर। जित पैदे तन पीड़िए मन में चले विकार। रहाओ घोड़े पाखर सोयने साखत बूजन तेरी वाट, तर्क स्तीर कमान सांग तेग बंद गुण धात। वाजा नेजा पत्स्यों प्रगट,

मन मानक निर्मोल है, राम नाम पत पाए, मिल सत संगत हर पाई है, गुरमुख हर लिवलाए, आप गया सुख पाया, मिल सलल है सलल समाए, जिन हर हर नाम ना चेतेओ सो अवगुण आवै जाए, जे सतगुर पुरख ना भेटेओ सो पौजल पचै पचाए, एहो मानक जियो निर्मोल है, इउं कौडी बदलै जाए, जिन्ना सतगुर रस मिलै से पूरे पुरख सुजान, गुरमिल पौजल लंगी है दरगह पत प्रवान, नानक ते मुख उजले तुन उपजै शब्द निशान, श्री राग महला पहला, वणज करो वणजारियो वखर लेहो समाल, तैसी वस्त विसाही है जैसी निभ नाल, अगे साहो सुजान है लैसी वस समाल, पाई रे राम कहो चितलाए, हर जस वखर लै चलो सहो देखे पति आए, रहाओ जिन्ना रास ना सच है क्यों तिन्ना सुख होए, खोटे वणज वणंजे है मन तन खोटा होए, फाही फाथे मिर्ग ज्यों दुख कणो नितरोए, खोटे पोते ना पवै तिन हर गुर दर्श ना होए, खोटे जात ना पाता है खोट ना सी जिस कोए, खोटे खोट कमावना आए गया पत खोए, नानक मन समझ आई है गुर कै शब्द सलाह, राम नाम रंग रतिया पारना परम तिनाह, हर जप लाहा अगला निरपव हर मन माहा, श्री राग महला पहला कर दूजा, तन जोबन अर फुलड़ा नाठी अड़े दिन चार, पबन केरे पत ज्यों टल टुल जुम्मन हार, रंग मान लै प्यारिया जां जोबन नौ हुला, दिन थोड़े थके पया पुराना चोला, रहाओ सज्जन मेरे रंगले।

मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझ ते निकसी फूट मरा। ना जाना मैं ओ ना जाना जाली, जां दुख लागे तां तुझे समाली। रहाओ तू भरपूर जान्या मैं दूर, जो कश करी

बिन गुर महल ना पाइए, नाम ना प्राप्त होए, ऐसा सतगुर लोड लहो, जिद्दू पाइए सच सोए, असर संगारे सुख वसै, ज्योतिष पावे सो होए, जेहा सतगुर कर जानिया तेहो जेहा सुख होए, एहो सहसा मूले नाही भाव लाए जन कोए, नानक एक जो दोई मूर्ति शब्द मिलावा होए। श्री राग महला तीजा। अमृत छोड़ बिख्या लोभाणे, सेवा करे विडाणी, अपना धर्म गवावै बूझे नाही, अनदन दुख विहानी, मनमुखे अंद न चेत ही, डूमोए बिन पानी, मन रे सदा पजो हर सरनाई, गुर का शब्द अंतर वसै तां हर विसर ना जाई, रहाओ एहो शरीर माया का पुतला, विच हमें दुष्टि पाई, आवन जाना जमन मरना मनमुख पत गवाई, सतगुर सेव सदा सुख पाया, ज्योति ज्योत मिलाई, सतगुरु की सेवा यत सुखाली, जो इच्छा सो फल पाए, जत सत तप पवित्र शरीरा, हर हर मन वसाए, सदा आनंद रह दिन राती, मिल प्रीतम सुख पाए, जो सतगुरु की शरणागति, हों तन कै बल जाओ, दर सच्चा सच्ची वडियाई, सहजे सच समाओ, नानक नदरी पाई है, गुरमुख मेल मिलाओ। श्री राग महला तीजा। मनमुख कर्म कमावणे, जो दोहागण तन सिंगार, सेजै कंतना आवई, नितनित होए खुवार, पिरका महल ना पावई, ना दिसै घर बार, भाई रे एक मन नाम ते आए, संता संगत मिल रहे, जप राम नाम सुख पाए, रहाओ गुरमुख सदा सुहाग।

अंतरों दुख भ्रम कटिए, सुख प्राप्त होए, गुर कै पाणै जो चलै, दुख ना पावै कोई। गुर के पाणे विच अमृत है, सहजे पावै कोई, जिन्ना प्रभ तिन पिया, हमै विचों खोए, नानक गुरमुख नाम धियाई है, सच मिलावा होए। श्री राग महला तीजा, जा पिर जाना अपना, तन मन अग्गै धरे, सुहागणी कर्म कमाम दिया, से ही कर्म करे, सहजे सच मिलावड़ा, सच वडाई दे, भाई रे गुरबिन भगत ना होए, बिन गुर

पूरा पाग सतगुर मिलै फिर पाया सच समाए से सहिया सोहागनी जिन को नजर करे खसम पछाणा अपना तन मन आगै दे घर वार पाया अपना हम मैं दूर करे नानक सो बावंतिया सोहागनी अनजन भगत करे श्री राग महला तीजा एक पिर रावै अपना हाँ कह दर पूछो जाए सतगुर सेवी भाव कर मैं पर देह मिलाए सब पाए आपे वेखै किस नेड़े किस दूर जिन पिर संगे जानिया पिर रावे सदा हदूर मुंदे तू चल गुर कै पाए आंदन रावै पिर अपना सहजे सच समाए रहाओ शब्द रतिया सोहागनी सच्चा शब्द सिंगार हर वार पायन घर अपना गुर कै हित प्यार से सुहावी हर रंग रवै भगत भरे भंडार सो प्रभ प्रीतम मन वसै जे सब सह दे आधार पिर सालाहन अपना तिन कै हो सद बलिहारे जाओ मन तन अर्पी सिर दई तिन कै लागा पाए जिन्नी एक पछाणिया दूजा पाव चुकाए गुरमुख नाम पछाणिया नानक सच समाए श्री राग महला तीजा हर जी सच्चा सच तू सबके तेरे चीरे लख चौरासी तरस दे फिरे बिन गुर भेटे पीरे हर जी ओ बख्से बख्स लए सुख सदा शरीर गुर प्रसादी सेव करी सच गहर गंभीर है मन मेरे नाम रते सुख होए गुरमती नाम सलाही है दूजा अवर ना कोए रहाओ धर्म राय नो हुक्म है बह सच्चा धर्म विचार दूजे पाए

हाँ पंथ तसाई नित खड़ी कोई प्रभ दसे तिन जाओ, जिनी मेरा प्यारा रावया तिन पीछे लाग फिराओ। कर मिन्नत कर जोदड़ी मैं प्रमरण का चाओ, मेरे भाई जना कोई मोको हर प्रभ मेल मिलाए। हाँ सतगुर बेटो वारिया जिन हर प्रभ दिया दिखाए रहाओ। होए निमाणी टह पावा पूरे सतगुर पास, निमाणिया गुरमान है गुर सतगुर करे साबास। हाँ गुर सा लाहे नर जऊ मैं मेले हर प्रपास, सतगुर नो सब को लोईदा जेता जगत सब कोए। बिन भागा दर्शन ना थी है भाग हीन बैरोए, जो हर प्रभ पाना सो थिया तुर लिखिया ना मिटै कोए। आपे सतगुर आप हरो आपे मेल मिलाए, आप दया कर मेल सी गुर सतगुर पीछे पाए। सब जग जीवन जग आप है नानक जल जलै समाए। श्री राग महला चौथा रस अमृत नाम रस आत भला, कित बिद मिले रस खाए। जाए पुछो सोहागणी तुसा क्यों कर मिलिया प्रभ आए। ओए वे प्रवाह ना बोलनी हाँ मल मल तोवा तिन पाए। भाई रे मिल सज्जन हर गुण सार, सज्जन सतगुर पुरख है दुख कढे हों मैं मार। रहाओ गुरमुखियां सोहागणी तिन दया पई मन आए। सतगुर वचन रतन है जो मन्ने सो हर रस खाए। सेवड़ भागी वड़ जानी है जिन हर रस खादा गुर पाए। एहो हर रस वण तिण सबत है भागहीन नहीं खाए। बिर सतगुर पलै ना पवै मनमुख रहे बिललाए। ओए सतगुर आगै ना निवै ओना अंतर क्रोध बिलाए। हर हर हर रस आप है आपे हर रस होए। आप दया कर देवसी गुरमुखे अमृत चोए। सब तन मन हरिया होया नानक हर वसिया मन सोए। श्री राग महला चौथा दिन चढ़े फिर आथ वै रैन सबाई जाए। आव घटै नर ना बुझै नित मूसा लाए टुकाए। गुण मिठा माया पसरिया मन मुख लग माखी पचै पचाए। भाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए, पुतकलत मोह बिख है अंत बेली कोई ना होए। रहाओ गुरमत हर लिवे उबरे अलिप्त रहे सरनाए। ओनी चलन सदा निहालिया हर खर्च लिया पत पाए। गुरमुख दर गए मन्नी है हरे आप गए गल्लाए। गुरमुखानो पंथ प्रगटा दर ठाक ना कोई पाए। हर नाम सलाहन नाम मानो नाम रहन लिवलाए। अनहद तुनी दर वजदे दर सच्चा सोबा पाए। जिनी गुरमुख नाम सलाहया तिन्ना सबको कहे साबास। तिन की संगत देह प्रभ मैं जाचक की अरदास। नानक भाग वड्डे तिन्ना गुरमुखा जिन अंतर नाम प्रगास। श्री राग महला पंजवां घर पहला क्या तू रता देख कै पुत्र कलत्र सिंगार। रस भोगै खुशियां करै माणै रंग अपार। बहुत करै फुरमायसी वरतै होए अफार। करता चेतना आवई मनमुख अंध गवार। मेरे मन सुखदाता हर सोए, गुर प्रसादी पाईऐ कर्म प्राप्त होए। रहाओ कपड़ भोग लपटाया सोए ना रूपा खाक। हैवर गैवर बहुरंगे किए रथ अथाक। किसी चेतना पावही बिसरिया सब साक। सिरजन हार भुलाया विणना वैना पाक। लेंदा बद दुआए तू माया करै अकत। जिसनो तू पति आईंदा सो सन तुझे अनित। अहंकार करै अहंकारिया व्यापिया मन की मत। तिन प्रभ आप भुलाया ना तिस जात ना पत। सतगुर पुरख मिलाया इको सजन सोए। हर जन का राखा एक है क्या मानस हम मैं रोए। जो हर जन पावै सो करे दर फेर ना पावै कोए। नानक रता रंग हर सब जग में चरण होए। श्री राग महला पंजवा मन बिलास बौरंकणा दृढ़ पूर खुशियां। छतर तार बादशाहियां वैसे से परियां। भाई रे सुख सा संग पाया लिखिया लेख तिन पुरख बिधातै दुख सह समट गया। रहाओ जेते थान थनंतरा तेते
ਭਵ ਆਇਆ ਧਨ ਪਾਤੀ ਵਡ ਭੂਮੀਆਂ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰ ਪਰਿਆ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਨਿਸੰਗ ਹੋਏ ਵਰਤੈ ਅਫਰਿਆ ਸਭ ਕੋ ਵਸਗਤ ਕਰ ਲਏ ਓਨ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਖਾਕ ਰਲਿਆ ਕੋੜ ਤੇਤੀਸ ਸੇਵਕਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਦਰ ਖਰਿਆ ਗਰੰਗ ਬਾਰੀ ਵਡ ਸਾਹਿਬੀ ਸਭ ਨਾਨਕ ਸੁਪਨ ਥੀਆ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਭਲ ਕੇ ਉੱਠ ਪੋਲੀਐ ਵਿਣ ਬੁੱਝੇ ਮੁਗਦਿਆ ਜਾਣ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚੇਤਨਾ ਆਇਓ ਛੁੱਟੈ ਗੀ ਬੇਬਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਤੀ ਚਿਤ ਲਾਏ।

कुदम करे पसपंखिया दिसै नाहीं काल, ओतै साथ मनुख है फाथा माया जाल। मुक्ते से ही पाली है जे सच्चा नाम संभाल, जो कर छट गवावना सो लगा मन माहे। जिथे जाए तुद वर्तना तिसकी चिंता नाहे, फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पाहे। कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए, चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए। नानक सच्चे पात साहे डुबदा लिया कढ़ाए, श्री राग महला पंजवा। कड़ी मोहत का पाहुना काय सवार नहार, माया काम व्यापिया समझे नाहीं गावार। उठ चलिया पछताया परया वस जंदार, अंधे तू बैठा कंदी पाहे। जे होवी पूर्व लिखिया ता गुर का बचन कमाहे। रहाओ हरी नाही नह डडरी पक्की वडन हार, लै लै दात पहुतिया लावे कर तैयार। जां होवा हो

जिन मन वस्या पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, तिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान। जिनी मेरा प्रभ त्याया नानक तिन कुर्बान। श्री राग महला पंजवां, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वस्या मन आए, अंतर जोत प्रगासिया एक स्यों लिवलाए। मिल साधु मुखी उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नित गावणे निर्मल साचै नाए। मेरे मन गुर शब्दी सुखोए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए ना कोए रहाओ। मन कियां इच्छा पूरियां, पाया नाम निधान, अंतर जम इसदा संग करना हर पिछान। गुर प्रसादी मुखी उजला जप नाम दान इसनान, काम क्रोध लोभ बिनसया तज

आवन जाना रह गया आप हुआ मेहरबान, सच महल कर पाया गुर का शब्द पहचान, भक्त जना को राख दाया।

दीन दर्द दुख भंजना सेव कै सत पाए अचरज रूप निरंजनो गुरमे लाया माए। पाई रे मीत करो प्रभ सोए माया मोह प्रीत त्रिग सुखी ना दिसै कोए रहाओ। दाना दाता सीलवंत निर्मल रूपया पार सखा सहाय अत वड्डा ऊंचा वड्डाया पार। बालक बिरद ना जानिया निचल तिस दरबार जो मंगिया सोई पाईऐ नेदाराय आधार। जिस पेख तो किल विखे हरै मन तन होवै सांत एक मन एक ते आईऐ मन की लहे परांत। गुण निदान नव तन सदा पूर्ण जा की दात सदा सदा आराधी है।

देखे सुने हदूर साधो घट घट ब्रह्म रविंद अकिरत कणा नो पालदा प्रभ नानक सद बखशिंद। श्री राग महला पंजवा मन तन धन जिन प्रभ दिया रखिया सह सवार सर्ब कला कर थापिया अंतर ज्योत अपार। सदा सदा प्रभ सिमरी है अंतर राख्यो तार मेरे मानो हर बिने अवर ना कोए प्रभ सरनाई सदा रहो दुख ना व्यापै कोए रहाओ। रतन पदार्थ माणका सोना रूपा खाक मात पिता सुत बंद पा कूड़े सबे साक जिन कीता तिसै ना जाणई मनमुख।

वञ पूर राख ले हो प्रभ करण हार, जी जंत कर दया बिन प्रभ कोई ना रखन हार, महा बिकट जम पया नानक नाम ना विसरो कर अपनी हर माया।

आए कर संगत नित साध की गुरचरणी चित लाए रहाओ। नाम निधान त्याई है मस्तक होवे पाग, कार्य सब सवारी है गुर की चरणी लाग। हौ मैं रोग भ्रम कटी है ना आवे ना जाग, कर संगत तू साध की अड़ सड़ तीर्थ नाओ। जियो प्राण मन तन हरे साचा एहो सवाओ, एथे मिले वडियाईया दरगह पावे थाओ। करे कराए आप प्रभ सब किश्त सही हाथ, मारा पे जीवाल दा अंतर बाहर साथ। नानक प्रभ शरणागति सर्ब कटा के नाथ। श्री राग महला पंजवा, शरण पए प्रभ अपने गुरु होवा कृपाल। सतगुर कै उपदेश है बिनसे सर्ब जंजाल, अंदर लगा राम नाम अमृत नदर निहाल। मन मेरे सतगुर सेवा सार, करे दया प्रभ अपनी एक निम

रहो। थान थंतर रव रहया प्रभ मेरा भरपूर, सच पातशाही अमर सच, सच्चे सच्चा थान, सच्ची कुदरत धारियान, सच सिर जियोन जहान, नानक जपिए सच नाम, सदा सदा कुर्बान। श्री राग महला पंजवा, उद्दम कर हर जापना, वडभागी तन खाट, संत संग हर सिमरना, मल जन्म जन्म की काट। मन मेरे राम नाम जप जाप, मन इच्छे फल पुंच तू, सब चूके सोग संताप। रहाओ जिस कारण तन तारिया, सुपर डिठा नाल, जल थल महियल पूरिया, प्रभे अपने

श्री राग महला पहला कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद आख आख मन वावना ज्यो ज्यो जापै वाए जिसनों वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आ

तेरा हुक्म ना जापी के तड़ा लिख ना जाने कोए जे सौ सायर मेली है तिल ना पुजावै रोए कीमत कने ना पाईया सब सुन सुन आखै सोए पीर पै कामर सालक साधक सौंदे और शहीद सेख मसायक का।

गणत गण आवने आईया सुहावे स्वीकार पाखंड प्रेम ना पाई है खोटा पाज खुवार हर जियो इओ पिरड़ावै नार तुद पावन सोहागणी अपनी कृपा लह सवार रहाओ गुरसबदी सिंगारिया तन मन पिर कै पास दोए कर जोड़ खड़ी तक सच कह अरदास लाल रती सच पै वसी पाए रती रंगरास प्रेकी चेरी कांडी है लाली मन है नाओ साची प्रीतना तुटई साचे मेल मिलाओ शब्द रती मन वेदया हो सदबलिहार है जाओ सा तन रंड ना बैसई जे सतगुर माहे समाए पिरी सालू नौ तनो साचो मरै ना जाए नित रवै।

आर संत सवा सुखी उपजै गुरमुख नाम आधार खिन मैं उपजै खिन खपै खिन आवे खिन जाए शब्द पछाण रव रह ना तिसकाल संताए साहेबा तुल ना तोलिए कथन ना पाया जाए वापारी वन जा रहा आए वजो लिखाए कारक मावे सच की लाहा मिलै रजाए पूंजी साची गुर मिलै ना तिस तिल ना तमाए गुरमुख तोल तोलाए सी सचत राजी तोल आसा मनसा मोहनी गुर ठाकी सच बोल आप तोलाए तोल सी पूरे पूरा तोल कथना कहन ना छुट्टिया ना पढ़ पुस्तक पार काया सोच ना पाईऐ बिनहर भगत प्यार नानक नाम ना विसरै मिले गुर करतार श्री राग महला पहला सतगुर पूरा जे मिलै पाईऐ रतन विचार मन दीजै गुरे अपने पाईऐ सर प्यार मुक्त पदार्थ पाईऐ अवगुण मेटन हार पाई रे गुरबिन ज्ञान ना होए पूछो ब्रह्मे नारद वेद व्यास कोय रहाओ ज्ञान ध्यान तुन जानिए कथ कहावे सोए सफलो बिरख हरियावला शाव कनेरी होए लाल

दुख दाता दुख मेटनो सतगुर असर संगार भाव जल बिखम डरावनो ना कंधी ना पार ना बेड़ी ना तुलहड़ा ना तिसवंज मलार सतगुर पै का बोए था नदरी पार उतार एक तिल प्यारा विसरै दुख लागे।

ज्ञान पदार्थ खोया ठग्या मुठा जाए, बाबा माया परम पुलाए, परम पुली डोहागणी ना पर्यंक समाए रहाओ। पुली फिर जसन

ज्ञान मन हठ बुद्धि केतिया केते भेद विचार केते बंधन जी के गुरमुख मुख द्वार सचो और सब को ऊपर सच आचार सबको ऊंचा आखिए नीचे ना दिसे कोए एक न पांडे साजिया एक चानन ते होलोए करम मिले सच पाईए तुर बख्शना मेटे कोए साध मिले साधु जने संतोख वसे गुरु पाए अकथ कथा विचारी है जे सतगुरु माहे समाए पी अमृत संतोखिया दरगह पैंदा जाए घट घट वाजे किंगुरी आन दिन शब्द सुभाए विरले कौ सोजी पई गुरमुख मन समझाए नानक नाम ना विसरे छूटे शब्द कमाए। श्री राग महला पहला चिते दिसै तौल हर बगे बंक द्वार कर मन खुशी ओसारिया दूजे हित प्यार अंदर खाली प्रेम बिनो टह टेरी तन शार पाई रे तन तन साथ ना होए राम नाम तन निर्मलो गुरदात करे प्रभ सोए रहाओ राम नाम तन निर्मलो जो देवे देवन हार आगे पुछ न हो वही जिस बेली गुर करतार आप छड़ाए छुट्टी आपे बख्शन हार मन मुख जाने अपने तिया पूछ संजोग नारी देख विगासी है नाले हरख सो सोग गुरमुख शब्द रंगावले अहनस हर रस भोग चित चले वित जावनो सागत डोल डोलाए बाहर टूंड विगुची है कर मैं वस्त सो थाए मन मुख हम कर मुसी गुरमुख पल्ले पाए साकत निर्गुण आ रहा अपना मूल पछाण रकत बिंद काय तन अग्नि पास पिराण पमण कै वस देहुरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगी है मुआ ना लोड़े कोए सुख जीवन तिस आखी है जिस गुरमुख वसिया सोए नाम होने क्या गणी जिस हर गुर दर्श ना होए ज्यों सुपने निस भुली है जब लग निंद्रा होए इउं सरपन कै वस जियाड़ा अंतर हम मैं दोए गुरमत होए विचारी है सुपना एहो जग लोए अगन मरै जल पाई है ज्यों बारक दूध माए बिन जल कमल सो ना थी बिन जल मीन मराए नान गुरमुखा रस मिले जीवा हर गुण गाए श्री राग महला पहला डूंगर देख डरावणो पेयड़ डरियास ऊंचो पर्वत गाखड़ो ना पौड़ी तास गुरमुख अंतर जानिया गुरमेली तरियास पाई रे पाव जल बिखमंड राऊ पूरा सतगुर रस मिले गुर तारे हर नाऊ रहाओ चला चला जे करी जाना चल नहार जो आया सो चल सी अमर सो गुर करतार भी सच्चा सालाहना सच्चे थान प्यार दर कर महला सोहने पक्के कोट हजार हस्ती कोड़े पाखरे लश्कर लख्या पार किसी नाल ना चलिया खप खप मोए असार सोयना रूपा संची है माल जाल जंजाल सब जग में दोही फेरी है बिन नाम है सिरकाल पिंड पड़े जियो खेल सी बद फैली क्या हाल पुत्ता देख वगसी है नारी सेज पतार चोवा चंदन लाई है कापड़ रूप सिंगार खेहू खेर लाई है छोड़ चले घर बार मेहर मलूक कहाई है राजा राव के खान चौधरी राव सदाई है जल बलिये अभमान मनमुख नाम विसारिया ज्यों डबदा कान हम मैं कर कर जाए सी जो आया जग माहे सब जग काजल कोठड़ी तन मन दे सुवाहे गुर राखे से निर्मले शब्द निवारी पाहे नानक तरिया सच नाम सिरसाहा पातशाह हो
ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਹਰ ਨਾਮ ਰਤਨ ਵੇ ਸਾਹੋ ਮਨਮੁਖ ਪਉ ਜਲ ਪਚ ਮੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰੇ ਅਥਾਹੋ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਦੂਜਾ ਮੁਕਾਮ ਕਰ ਕਰ ਬੈਸਣਾ ਨਿਚਲਣੈ ਕੀ ਧੋਖ ਮੁਕਾਮ ਤਾਂ ਪਰਜਾਣੀਐ ਜਾਂ ਰਹਿ ਨਿਚਲ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸ ਮੁਕਾਮੇ ਕਰ ਸਿਦਕ ਕਰਨੀ ਖਰਚ ਬੰਦਉ ਲਾਗ ਰਹੋ ਨਾਮੇ ਰਹਾਉ ਜੋਗੀ ਤਾਂ ਆਸਣ ਕਰ ਬਹਿ ਮੁੱਲਾਂ ਬਹਿ ਮੁਕਾਮ ਪੰਡਿਤ ਵਖਾਣੇ ਪੋਥੀਆਂ ਸਿੱਧ ਬਹਿ ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਸੁਰ ਸਿੱਧ ਗਣ ਗੰਧਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਖ ਪੀਰ ਸਲਾਰ ਦਰ ਕੂਚ ਕੂਚਾ ਕਰ ਗਏ ਅਵਰੇ ਪੇ ਚਲਣ ਹਾਰ ਸੁਲਤਾਨ ਖਾਨ ਮਲੂਕ ਅਮਰੇ ਗਏ ਕਰ ਕਰ ਕੂਚ ਘੜੀ ਮੁਹਤ ਕੇ ਚਲਣਾ ਦਿਲ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਪੇ ਪਹੂਚ ਸਬਦਾਹ ਮਾਹੇ ਵਖਾਣੀਐ ਵਿਰਲਾ ਤਾਂ ਬੂਝੈ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੈ ਬੇਨਤੀ ਜਲਥਲ ਮਈਲ ਸੋਏ ਅਲਾਹ ਅਲਾਖਾ ਗਮ ਕਾਦਰ ਕਰਨ ਹਾਰ ਕਰੀਮ ਸਭ ਦੁਨੀ ਆਵਣ ਜਾਵਣੀ ਮੁਕਾਮ ਏਕ ਰਹੀਮ ਮੁਕਾਮ ਤਿਸਨੋ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਸਿਸ ਨਾ ਹੋਵੀ।

महले पहले सतारह अष्टपदियां, श्री राग महला तीजा घर पहला अष्टपदियां, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख कृपा।

आपे हर जग जीवन दाता, आपे बस मिलाए, जी जनते क्या विचारे, क्या को वक सुनाए। गुरमुख आपे दे वड़ियाई, आपे सेव कराए, देख कुटांब मोहे लोभाना, चल दिया नाल न जाई। सतगुर सेव गुण निधान पाया, तिसदी कीम ना पाई, प्रभ सखा हर जियो मेरा, अंते होए सखाई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, मनमुख पत गवाई, बिन सतगुर को मग न जाणै, अंधे ठौर ना काई। हर सुख दाता मनी वसिया, अंत गया पछताई। पेई अड़ै जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया, अनदिन भगत करै दिन राती, हौं मैं मोह चुकाया। जिस स्यों राता तै सो होवै, सच्चे सच समाया, आपे नदर करे भाव लाए, गुर सबदी विचार। सतगुर सेवे सहज उपजाय, हमें तृष्णा मार। हर गुण दाता सद मन वसै, सच रखिया उर धार। प्रभ मेरा सदा निर्मला, मन निर्मल पाया जाए। नाम निदान हर मन वसै, हमें दुख सब जाए। सतगुर शब्द सुनाया, हम सद बलिहारै जाओ। अपने मन चित कह कहाई, अपने मन चित कह कहाए, बिन गुरे आप ना जाई। हर जियो भगत मच्छर सुखदाता, कर कृपा मन वसाई। नानक सोभा सुरत दे प्रभ, आपे गुरमुख दे वड़ियाई। श्री राग महला तीजा, हमें कर्म कमावंदे, जम डंड लगै तिन आए। जे सतगुर सेवन से उबरे, हर से ती लिवलाए। मन रे गुरमुख नाम ते आए, तुर पूर्व करतै लिखिया, तिन्ना गुरमत नाम समाए रहाओ। विण सतगुर परतीत ना आवई, नाम ना लागा उपाओ, सुपने सुख ना पावई, दुख

आए से प्रमाण है सब कुल का करे उधार। सब नदरी कर्म कमाम दे नदरी बाहर ना कोए। जैसी नदर कर देखे सच्चा तैसा ही को होए। नानक नाम वडाइयां कर्म प्राप्त होए। श्री राग महला तीजा गुरमुख नाम ते आई मनमुख बूझ ना पाए। गुरमुख सदा मुखी उजले हर वसया मन आए। सहजे ही ते सुख पाईए सहजे रहे समाए। पाई रे दासन दासा होए गुर की सेवा गुर भक्त है विरला पाए कोए। रहाओ सदा सुहाग सुहागनी जे चले सतगुर पाए। सदा पिर नहीं चल पाईए ना ओह मरे ना जाए। शब्द मिली ना विछड़े पिर कै अंक समाए। हार निर्मल अतुजला बिन गुर पाया ना जाए। पाठ पढ़े ना बूझई पेखी परम पुलाए। गुरमती हर सदा पाया रसना हर रस समाए। माया मोह चुकाया गुरमती सह सुभाए। बिन शब्द जग दुखिया फिराए मन मुखा नो गई खाए। शब्दे नाम ते आईए शब्दे सच समाए। माया पूले सिद्ध फिर समाद ना लगे सुभाए। तीने लो व्यापत है अद कही लपटाए। बिन गुरमुक्त ना पाईए ना दुबदा माया जाए। माया किसनो वाखिए क्या माया कर्म कमाए। दुख सुख एहो जियो बद है अहो मैं कर्म कमाए। बिन शब्द परम ना चुकई ना विचो हो मैं जाए। बिन प्रीति भगत ना हो वई बिन शब्द थाए ना पाए। शब्द हो मैं मारिए माया का परम जाए। नाम पदार्थ पाईए गुरमुख सह सुभाए। बिन गुर गुण ना जापनी बिन गुण भगत ना होए। भगत वछल हर मन वसिया सहज मिलिया प्रभ सोए। नानक शब्दे हर साल आई है कर्म प्राप्त होए। श्री राग

ब्रह्म के बेते शब्द पछाण है हो मैं जात गवाई सुर नर तिन की बाणी गावे कोई न मेट भाई दैत पुत कर्म धर्म किछ संजम ना पड़े दूजा पाओ न जाने सतगुर भेटे निर्मल होवा अंदन नाम वखाणे एको पढ़े एको ना बूझे दूजा अवर न जाने खड़ दर्शन योगी सन्यासी बिन गुर परम भुलाए सतगुर सेवै ता गत मित पावे हर जियो मन वसाए सच्ची बाणी सो चित लागे आवन जान रहाए पंडित पढ़ पढ़ वाद वखाणे बिन गुर परम भुलाए लख चौरासी फेर पया बिन शब्द मुक्त ना पाए जा नाव चेतै तांगत पाए जा सतगुर मेल मिलाए सत संगत मैं नाम हर उपजै जा सतगुर मिले सुभाए मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाए सतबलिहारी गुर अपने विटाओ जे हर से तीच तलाए सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदे हर से तीरंग राता प्रभ निकट वसै सबना घट अंतर गुरमुख वर लै जाता नानक नाम मिलै वडियाई गुर कै शब्द पछाता श्री राग महला तीजा सहजै नौ सब लोई दी बिन गुर पाया ना जाए पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके भेखी परम भुलाए गुर भेटे सहज पाया अपनी कृपा करे रजाए भाई रे गुर बिन सहज ना होए शब्द ही ते सहज उपजै हर पाया सच सोए रहाओ सहजे गावया थाए पवै बिन सहजे

स्वार्थ स्वाओ ना को करे, ना किश होवै काज, चित आवै ओस पार ब्रह्मो, ता निचल होवै राज। जा कहो चिंता बहुत बहुत, देही व्यापै रोग, ग्रस्त कुटुंब पलेटिया, कदे हरख कदे सोग। गौण करे चहो कुंटका, कड़ी ना बैसन सोए, चित आवै उस पर ब्रह्म, तन मन शीतल होए। काम क्रोध मोहे वस किया, किरपन लोग प्यार, चारे किलबख उन अग किए, होवा असर संघार। पोथी गीत कवित किश कदे ना करन धरिया, चित आवै उस पार ब्रह्म, ता निमक सिमरत तरिया। शास्त सिमरत वेद चार, मुखागर बिचरे, तपे तपी सर जोगिया। तीर्थ गमन करे खटकर माते दुगणे, पूजा करता नाए, रंग ना लगी पार ब्रह्म, ता सर पर नरके जाए। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्तार, बाग सुहावे सोहणे, चले हुक्म अफार। रंग तमासे बहु विधि, चाए लग रहया, चित ना आयो पार ब्रह्म, ता सर्ब की जून गया। बहुत तनाड्या चारवंत, शोभा निर्मल रीत, मात पिता सुत भाइया, साजन संग प्रीत। लश्कर तरकस बंद।

भगवती रहत जुगता, योगी कहत मुक्ता, तपसी तप है राता, मोनी मोन धारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नम है प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, ग्रस्ती ग्रस्त धर्माता, एक शब्दी बहुरूप अवधूता, कापड़ी कौते जागूता, एक तीर्थ नाता, निरहार वर्ती अपरसा, एक लूकना देव दर्शा, एक मन ही ज्ञाता, काटना किन ही कहाया, सब कहते हैं पाया, जिस मेले सो भगता, सगल उगत उपावा, त्यागी शरण पावा, नानक गुर चरण पराता, एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, श्री राग महला पहला कर तीजा, जोगी अंदर जोगिया, तू भोगी।

मात पिता सुत ने हुकनेरा माया मोह सबाई संजोगी आया किरत कमाया करनी कार कराई राम नाम बिन मुक्त ना होई बुढ़ी दूजा हेत कहो नानक प्राणी पहले पहरे छूटै गार चेत दूजे पहरे रहन कैवन जारिया मित्रा पर जोबन मैं मत अहनस काम व्यापिया मन जारिया मित्रा अंदले नाम ना चित राम नाम कट अंतर नाही होर जाने रसकस मीठे ज्ञान ध्यान गुण संजम नाही जन्म मरोंगे झूठे तीर्थ वर्त सुच संजम नाही कर्म धर्म नहीं पूजा नानक भाए भगत निस्तारा दुबदा व्यापै दूजा तीजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा सरहंस अलथड़े आए जोबन कटै जरुआ जनैवन जा रहा मित्रा आव कटै दिन जाए अंत काल पछतासी अंदले जां जम पकड़ चलाया सब किश अपना कर कर राखिया खिन मैं पया पराया बुद्ध विसरजी गई सियाणप कर अवगन पछताए कहो नानक प्राणी तीजे पहरे प्रभ चेतो लिवलाए चौथे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा बिरद पया तन खीण अखी अंधना दी सही बन जा रहा मित्रा कन्नी सुने ना वैण अखी अंध जीव रस नाही रहे परा कौताना गुण अंतर नाही क्यों सुख पावे मन मुख आवन जाना खड़ पक्की कुड़ भजै बिनसै आए चलै क्या मान कहो नानक प्राणी चौथे पहरै गुरमुख शब्द पछाण ओढ़ के आया तिन साहयावन जा रहा मित्रा जर जर वाणा कन एक रती गुण ना समाने आवन जा रहा मित्रा अवगण खड़सन बन गुण संयम जावै चोट ना खावै ना तिस जमण मरना काल जाल जम जोहे ना साकै पाए भगत पै तरना पत सेती जावै सहज समावै सगले दुख मिटावै कहो नानक प्राणी गुरमुख छूटै साचे ते पत पावै श्री राग महला चौथा पहले पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा हर पाया उदर मझार हर त्यावै हर उचरैवन जा रहा मित्रा हर हर नाम समार हर हर नाम जपया राधे विच अग्नि हर जप जीविया बाहर जन्म भया मुख लागा सरसे पिता मात थीविया जिसकी वस्तो तिस चेतो प्राणी कर हृदय गुरमुख विचार कहो नानक प्राणी पहले पहरे हर जपिए कृपा तार दूजे पहरे रहन कैवन जा रहा मित्रा मन लागा दूजे पाए मेरा मेरा कर पालीवन जा रहा मित्रा ले

दासा ने भावै बिंदर सावै एखन तीरज क्यों करै। नाम बिहुना तन मनहीना जल बिन मछली ज्यो मरै। मिल मेरे प्यारे प्राण आधारे गुण साध संग मिल गावै। नानके स्वामी धार अनुग्रह मंत्र अंक समावै। डखना सो हंदड़ो हबठाए कोय न दिसै डुजड़ो खुलड़े कपाट। नानक सतगुर भेट ते संत तेरे बचना नू पिया पार। संतन आधार बाणी बिचारी है जियो सिमरत सास गिरास। पूर्ण विश्वास क्यों मनो विसारी है जियो क्यों मनो विसारी है निमख नहीं टारी है। गुणवंत प्राण हमारे मन बाइंत फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारे। अनाथ के नाथे सर्व के साथे जप जुवै जन्म नहारी है। नानक की बेनंती प्रपै कृपा कर पव जल तारी है। डखना तूड़ी मजन साधखे साईं थिए कृपालो लदे हब्बे थोकड़े। नानक हर तन मालो शंत सुंदर स्वामी धाम भगतै विश्राम। आसा लग जीवते जियो मन तन गुलतान। सिमरत प्रभ नाम हर अमृत पीवते जियो अमृत हर पीवते सदा थिर थीवते। बिखै बन फीका जानिया भय कृपाल गोपाल प्रभ मेरे साध संग।

मन सर्व सुख उठे गोविंद तुठे जन्म मरना सा मिट गए। सखी मंगलो गाया इच पुजाया बौण ना माया होया कर गै लीने नानक प्राप्या रे संसार सागर नहीं पोहया। डखना साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो जिन्ना पाग मथा है से नानक हर रंग मान दो। संत कहते पवित्र सुनते सब धन लिखती कुल तारिया जियो जिन कौ साधु संग नाम हर रंग तिन्नी ब्रह्म विचारिया जियो। ब्रह्म विचारिया जन्म सवारिया पूर्ण कृपा प्रभ करी कर गै लीने हर जसो दीने जो न तावै नह मरी। सतगुर दयाल कृपाल भेटत हरे काम करो लो मारिया कथ न जाय अकथ स्वामी सद कह जाय नानक वारिया। श्री राग महला चौथा वणजारा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद हर हर उत्तम नाम है जिन सरिया सब कोई जियो। हर जी सबे प्रतपालदा घट घट रमैया सोए सो हर सदा त्याई है तिसबने अवर ना कोए। जो मोहे माया चितलाए दे से छोड़ चले दुख रोए जन नानक नाम त्याया हर अंत सखाई होए। मैं हर बिने अवर ना कोए हर गुर शरण आई पाई है वन जारिया मित्रा वड भाग प्राप्त होए। रहाओ संत जना विण पाईया हर किने ना पाया नाओ विच हम

तोर मस्तक हर प्रभ लिखिया जन नानक नाम ते आए। मन हर हर प्रीत रंग लगाए वडभागी गुर पाया गुर शब्दी पार लंघाए रहाओ। हर आपे आपो पाएंदा हर आपे दे वैले हर आपे परम भुलाएंदा हर आपे ही मत दे। गुरमुखा मन परगास है से विरले के हम बलिहारी तिन कहो जिन हर पाया गुरमते। जन नानक कमल परगासिया मन हर हर उठड़ाओ है मन हर हर जपन करे हर गुर शरण आई भज पाओ जिंदु। सब किल विख दुख पर हरे रहाओ घट घट रमैया मन वसै क्यों पाईऐ कित भत। गुरपुरा सतगुर भेटियै हर आए वसै मन चित। मैं तर नाम आधार है हर नामै ते गत मत। मैं हर हर नाम विसाहो है हर नामै ही जत पत। जन नानक नाम ते आया रंग रतड़ा हर रंग रत। हर त्यावो हर प्रभ सत गुरबचनी हर प्रभ जानिया सब हर प्रभ ते उत्पत। रहाओ जिन कहो पूर्व लिखिया से आए मिले गुरपास। सेवक पाए वन जा रहा मित्रा गुर हर हर नाम प्रगास। तन तन वन जवा पारिया जिन वखर लद्याड़ा हर रास। गुरमुखा दर मुख उजले से आए मिले हर पास। जन नानक गुर तिना पाया जिन्ना आप तुठा गुणतास। हर त्यावो सास गिरास मन प्रीत लगी तिना गुरमुखा। हर नाम जिन्ना रह रास रहाओ। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री राग की वार महला चौथा श्लोका नाल श्लोक महला तीजा। रागा विच श्री राग है जे सच तरे प्यार सदा हर सच मन वसै निश्चल मत अपार। रतना मूलक पाया गुर का शब्द विचार जेवा सच्ची मन सच्चा सच्चा श्री रियाकार।

सरै सरैयत करै विचार, बिन बूझे कैसे पावै पार। सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद, जेह तिर देखा ते तिर मौजूद। महला तीजा, गुरसभा एव ना पाई है, ना नेड़ै ना दूर। नानक सतगुर तां मिलै, जा मन रहै हदूर। पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा, नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा। हर सबना वे तू वरदा, हर सबना पाणा। सब तुझे ते आवै जी जंत, हर सारंग पाणा। जो गुरमुख हरिया राध दे, तिन्हों कुरबाणा। तू आपे आ वरदा, कर चोज विडाणा। श्लोक महला तीजा, कलो मसाजनी क्या सदा।

पौड़ी। सो ऐसा हर नाम त्याई है मन मेरे, जो सबना उपर हुक्म जलाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो अंति अवसर ले छाए। सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे, जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए। सो गुरमुख नाम जपिया वडभागी, तिन निंदक दुष्टो सब पैरी पाए। नानक नाम आराध सबना ते वड्डा, सब नावे अगे आण निवाए। श्लोक महला तीजा। वेस करे क्रूप को लखणी, मन खोटे कूड़ियार। पिरकै पाणे ना चले, हुक्म करे गावार। गुर कै पाणे जो चले, सब दुख निवारण हार। लिखिया मेट न सकिए, जो तुर लिखिया करतार। मंत्र सौपे कंत कहो, सब दे तरे प्यार। बिन नावे कने ना पाया, देखो हृदय विचार। नानक सा सुआल्यो सुलखणी, जे रावि सृजनहार। महला तीजा। माया मोह गुबार है, तिसदा ना दिसै उरवार ना पार। मनमुख अज्ञानी महा दुख पाए, दे डुबे हर नाम विसार। पाल के उठ बहु कर्म कमावै, दूजे पाए प्यार। सतगुर सेवै अपना, पौ जल उतरे पार। नानक गुरमुख सच समावै, सच नाम उरतार। पौड़ी। हर जल थल महियल भरपूर, दूजा नाहे कोए। हर आप बै करे न्याओ, कूड़िया और सब मार कढोए। सचियारा दे वड़ियाई, हर धर्म न्याओ की ओए। सब हर की करो उसत, जिन गरीब अनाथ राख ली ओए। जयकार कियो धर्मिया का, पापी को दंड दी ओए। श्लोक महला तीजा। मनमुख मैली कामणी, कुलखणी कुनार।

पूरा जियो। रेन संतन की मेरा मुख लागी, दुरमत बिन सीख बोध्या पागी, सच कर बैस रहे गुण गाए, नानक बिन से कूरा जियो। माज महला पंजवा, विसर नाही ए वड़दाते, कर कृपा भगतन संगराते, दिन सरैन ज्यो तुद ते आई, एहो दान मुहे करना जियो। माटी अंधी सुरत समाई, सबके दिया पलिया जाई, आनंद बिनोद तोज तमासे, तुद पावै सो होना जियो। जिस दा दिता सब कुछ लैना, शक्ति अमृत भोजन खाना, से सुखाली शीतल पवना, सहज के रंग करना जियो।

जल थल पूर रहया मेहरबाना, सद बलिहार जाइए कुर्बाना। रैन दिन सो तिसदा त्याई, जे खिन मैं सगलो उदारे जियो। राख लिए सगले प्रभ आपे, उतर गए सब शोक संतापे। नाम जपत मंतन हरियावल, प्रभ नानक नदर निहारे जियो। माज महला पंजवा, जिथै नाम जपिए प्रभ प्यारे। से अस्थल

माज महला पंजवां सबे सुख पए प्रभु तुठे गुरपुरे के चरण मन मुठे सह समाध लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहिब मेरा कड़कड़े अंतर वर्तै नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को बिरलाया पछाणे जियो प्रमृण की है निशानी मन को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाणे जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारे जन्म मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माणे जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करता दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मन सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपे बुद्ध सियाणप किशु ना जापे अपने संतां नो आप सहाई प्रभु भरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच धियाई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा धरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुर्बानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याए त्याए जीवै जन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वड पागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरा तुद भावै सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत ना जाने कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सद ही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला घड़ी मूर्त सिमरत पल वन्य जीवन सफलत थाई जियो सिमरत नाम दोग सब लाथे अंतर बाहर हर प्रभ साथे पै पाओ परम खोया गुरपूरै देखा सबनी जाई जियो प्रभ समरथ वाडी ऊचा पारा नौनद नाम परे पंडारा आद अंत मध प्रभ सोई दूजा लवै ना लाई जियो

पूर्ण पूर रहया सब आपे गुरमत नदरी आवणिया आपे आप निरंजन सोई जिन सिर जीतन आपे गोई नानक नाम समाल सदा तू सहजे सच समावणिया। माज महला तीजा से सच लागे जो तुद पाए सदा सा सेवै सह सुभाए सच्चे शब्द सच्चा सा लाही सच्चे मेल मिलावणिया। हाँ वारी जियो वारी सासा लाहणिया सच ते आए न से सच राते सच्चे सच समावणिया। रहाओ जह देखा सच सबनी थाई गुर प्रसादी मन वसाई तन सच्चा रसना सच राती सच सुन आख वखानणिया। मनसा मार सच समाणी इन मन डीठी सब आवण जानी सतगुर सेवे सदा मन नि चलो निज कर वासा पावणिया। गुर कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह सब जलाया सचो सच्चा वेख सालाही गुर शब्दी सच पावणिया। जो सच राते तर सच्ची लिव लागी हर नाम समालै से वड भागी सच्चे शब्द आप मिलाए सत संगत सच गुण गावणिया। लेखा पढ़िए जे लेखे विच होवै ओह अगमे गोचर शब्द शुद्ध होवै आन दिन सच शब्द सालाही होर कोई ना कीमत पावणिया। पढ़ पढ़ थाके सांत ना आई तृष्णा जाले शुद्ध ना काई बिख विहाजै बिख मोह प्यासे कूड़ बोल बिख खावणिया। गुर प्रसादी एको जाना दूजा मार मन सच समाणा नानक एको नाम वरतै सब अंतर गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा वर्ण रूप वरतै सब तेरे मर मर जमै फेर पवै कणेरे तू एको नहीं चलो अगमया पारा गुरमती बूझ बुझावणिया। हाँ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया जिस रूप ना रेखिया वर्ण ना कोई गुरमती आप बुझावणिया। रहाओ सब एका जोत जाने जे कोई सतगुर सेवे प्रगट होई गुप्त प्रगट वरतै सब थाई ज्योति ज्योत मिलावणिया। तिसना यगन जलै संसारा लोभ अवमान बहुत हंकारा मर मर जन्मै पत गवाए अपनी बिरथा जन्म गवावणिया। गुर का शब्द को विरला बूजै आप मारे तांत्र पवन सूजै फिर ओह मरै न मरना होवै सहजे सच समावणिया। माया मह फिर चेतना लाए गुर कै शब्द सद रह समाए सच सा लाहे सब कट अंतर सचो सच सुहावणिया। सच सा लाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया परपूरे गुर प्रसादी सच नदरी आवै सच्चे ही सुख पावणिया। सच मन अंदर रहया समाए सदा सच निह चलो आवै ना जाए सच्चे लागै सो मन निर्मल गुरमती सच समावणिया। सच सालाही अवरना कोई जित सेवै सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावणिया। माज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत समहे समाणी निर्मल बाणी हर सा लाही जप हर निर्मल मैल गवावणिया। हाँ वारी जियो वारी सुखदाता मन वसावणिया हर निर्मल गुर शब्द सा लाही शब्दो सुनत सा मिटावणिया। रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आए मन तन निर्मल माया मोह गवाए निर्मल गुण गावे नित साचे के निर्मल नाद बजावणिया। निर्मल अमृत गुर ते पाया
ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਮੁਵਾ ਤਿੱਥੈ ਮੋਹ ਨਾ ਮਾਇਆ। ਨਿਰਮਲ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਅਤ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਬਾਣੀ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ। ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵੇ ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਉਮੈ ਮੈਲ ਗੁਰਸਬਦੇ ਧੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਵਾਜੈ ਅਨਹਤੁਨ ਬਾਣੀ, ਦਰ ਸੱਚੈ ਸੋਭਾ ਪਾਵਣਿਆ। ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਸਭ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੈ, ਨਿਰਮਲ ਮਨੁਆ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰੋਵੈ। ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ। ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਸਬਦੇ ਸੋ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮਨ ਤਨ ਮੋਹੈ। ਸੱਚ ਨਾਮ ਮਲ ਕਦੇ ਨਾ ਲਾਗੈ, ਮੁਖ ਉਜਲ ਸੱਚ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ ਦੂਜੈ ਪਾਏ, ਮੈਲਾ ਚੌਕਾ ਮੈਲਾ ਥਾਏ। ਮੈਲਾ ਖਾਏ ਫਿਰ ਮੈਲ ਵਧਾਏ, ਮਨਮੁਖ ਮੈਲ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਮੈਲੇ ਨਿਰਮਲ ਸਭ ਹੁਕਮ ਸਵਾਏ, ਸੇ ਨਿਰਮਲ ਜੋ ਹਰ ਸਾਚੇ ਪਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਅੰਤਰ, ਗੁਰਮੁਖ ਮੈਲ ਚੁਕਾਵਣਿਆ। ਮਾਝ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਗੋਵਿੰਦ ਉਜਲ ਉਜਲ ਹੰਸਾ, ਮਨ ਬਾਣੀ ਨਿਰਮਲ ਮੇਰੀ ਮਨਸਾ। ਮਨ ਉਜਲ ਸਦਾ ਮੁਖ ਸੋ ਹੈ, ਅਤ ਉਜਲ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਣਿਆ। ਹਾਂ ਵਾਰੀ ਜਿਉ ਵਾਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣਿਆ। ਰਹਾਓ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਪੈ ਉਜਲ ਹਉਮੈ ਮਲ ਜਾਏ। ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਸੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਵਣਿਆ। ਮਨੁਆ ਨਾਚੈ ਭਗਤ ਦਰੜਾਏ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਮਨ ਮਿਲਾਏ। ਸੱਚਾ ਤਾਲ ਪੂਰੇ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਚੁਕਾਏ, ਸ਼ਬਦੇ ਨਿਰਤ ਕਰਾਵਣਿਆ। ਉੱਚਾ ਕੂਕੇ ਤਨੈ ਪਛਾੜੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹੇ ਜੋਹਿਆ ਜਮਕਾਲੇ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਇਸ ਮਨੈ ਨਚਾਏ, ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਭਗਤ ਜਾਂ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਤਨ ਮਨ ਰਾਤਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ। ਬਾਣੀ ਵਜੈ ਸ਼ਬਦ ਵਜਾਏ।

दूजे पाए दुख पावणिया, जिस अंतर प्रीत लगै सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जोता, गुर कै शब्द सदा हर त्याए, एहा भगत हर पावणिया। गुरमुख भगत जुगचारे होई, होरत भगत ना पाए कोई, नानक नाम गुर भगती पाई है, गुर चरणी चित लावणिया। माझ महला तीजा, सच्चा सेवी ससा लाही, सच्चे नाए दुख कभी नाही, सुखदाता सेवन सुख पायन, गुरमत मन वसावणिया। हाँ वारी जियो वारी, सुख सह समाध लगावणिया, जो हर सेवै से सदा सोहै, सोभा सुरत सुहावणिया। राओ सब को तेरा भगत कहाए, से भगत तेरे मन पाए, सच बाणी तुदै सालाहनो, रंग राते भगत करावणिया। सब को सच्चे हर जियो तेरा, गुरमुख मिलै तां चूकै फेरा, जां तुद पावै तां नाए रचावै, तू आपे नाउ जपावणिया। गुरमती हर मन वसाया, हरक सोख सा मोह गवाया, एक सस्यों लिव लागी सदही, हर नाम मन वसावणिया। भगत रंग राते सदा तेरे चाए, नौनिद नाम वस्या मन आए, पूरे भाग सतगुर पाया, सब दे मेल मिलावणिया। तू दयाल सदा सुखदाता, तू आपे मेलै गुरमुख जाता, तू आपे देवै नाम वडाई, नाम रते सुख पावणिया। सदा सदा साचे तुद सा लाही, गुरमुख जाता दूजा को नाही, एक सस्यों मन रहा समाए, मन मनै मनै मिलावणिया। गुरमुख होवै सो सालाहे, साचे ठाकर वे परवाहे, नानक नाम वसै मन अंतर, गुर सबदी हर मिलावणिया। माझ महला तीजा, तेरे भगत सो है साचे दरबारे, गुर कै शब्द नाम सवारे, सदा आनंद रह दिन राती, गुण कै गुणी समावणिया। हाउ वारी जियो वारी, नाम सुन मन वसावणिया, हर जियो सच्चा ऊचो ऊचा, हाउ मैं मार मिलावणिया। रहाओ हर जियो साचा साची नाई, गुर प्रसादी किसै मिलाई, गुर शब्द मिलै से विछड़ै नाही, सहजे सच समावणिया। तुझते बाहर कछु ना होए, तू कर कर वेख्या जाने सोए, आपे करे कराए करता, गुरमत्या मिलावणिया। कामण गुणवंती हर पाए, पै पाए सिंगार बनाए, सतगुर सेव सदा सोहागण, सच उपदेश समावणिया। शब्द विसारण।

लिख दिया लिख दिया कागद मस खोई, दूजे पाए सुख पाए ना कोई। कूड लिखे तै कूड़ कमावे, जल जावे कूड़ चित लावणिया। गुरमुख सचो सच लिखे विचार, सेजन सच्चे पावे मुख द्वार। सच कागद कल मसवाणी, सच लिख सच समावणिया। मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे, गुरप्रसादी मिले सोई जन लेखे। नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावणिया। माज महला तीजा, आत्म राम प्रगास गुरते होवे। हम मैं लागी गुरसबदी खोवे। मन निर्मलो अंदन भगति राता, भगत करे हर पावणिया। हाँ वारी जियो वारी, आप भगत करन अवरा भगत करावने। तिना भगत जना कहो, सद नाम सकार की जय। जो अंदन हर गुण

पावणिया गुरमुख आपे करे कराए, गुरमुख हिरदय उठाया प्याए। नानक नाम मिलै वड्याई, पूरे गुरदे पावणिया माज महला तीजा। एका जोत जोत है शरीरा, सब दिखाए सतगुर पूरा। आपे फर्क की तोन घट अंतर, आपे बणत बनावणे आ। हाँ वारी जियो वारी, हर सच्चे के गुण गावणे आ। वाहिगुरु को सह

हर जग जीवन निरपौ दाता गुरमत सहज समावणिया रहाओ। करी मैं तरती तौल पाताला कर ही मैं प्रीतम सदा है बाला सदा आनंद रह सुखदाता गुरमत।

अंदर महल रतनी परे भंडारा गुरमुख पाए नाम अपारा गुरमुख बणजे सदा वापारी लहा नाम सद पावणे आपे वथ राखै आपे दे गुरमुख बणजै केई के नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावणे माज महला तीजा हरे आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द भाव दूजा जाए हर निर्मल सदा गुणदाता हर गुण मैं आप समावणे हाँ वारी जियो वारी सच सच्चा हिरदय वसावणे सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन वसावणे रहाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता सेवक सेवै गुरमुख हर जाता अमृत नाम सदा जन सो है गुरमत हर रस पावणे इस गुफा मैं कथान सोहाया पूरे गुरह मैं भरम चुकाया अंदर नाम सलाहन रंग राते गुर कृपा ते पावणे गुर कै शब्द एहो गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर वसै मुरारे हर गुण गावै शब्द सुहाए मिल प्रीतम सुख पावणे जम जा गाती दूजै पाए कर लाए नाम पूले दे सजाए कड़ी मोहत का लेखा लेवै रतियो मासा तोल कढ़ावणे पेयड़ प्रचेते नाही दूजै मुठी रोवै ताही खरी कुवाल्यो क्रूप कुलखणी सुपने पर नहीं पावणे पेयड़ पिर मन वसाया पूरे गुरह दूर दिखाया कामन पिर राख्या कंठ लाए सबदे प्रदा वैसे सुहावणे आपे देवै सद बुलाए अपना नाउ मन वसाए नानक नाम मिलै वडियाई अंदन सदा गुण गावणे माज महला तीजा ऊतम जन्म सुथान है वासा सतगुर सेवै कर माहे उदासा हर रंग रहे सदा रंग राते हर रस मंत्र बतावणे हाँ वारी जियो वारी पढ़ बुझ मन वसावणे गुरमुख पढ़े हर नाम सलाह है दर सच्चै सोभा पावणे रहाओ अलख अपेओ हरया समाए उपाय न किती पाया जाए कृपा करे ता सतगुर भेटे नदरी मेल मिलावणे दूजे पाए पड़े नहीं बूजे त्रिबद माया कारण लूजे त्रिबद बंधन टूटे गुरसबदी मुक्त करावणे एहो मन चंचल वस न आवै दुबदा लागै दैदस्तावै बिखका कीड़ा बिख मै राता बिखी माए पचावणे हाँ हों करे तै आप जनाए बहु कर्म करै कि थाए न पाए तुते बाहर किशु ना होवै बक्से शब्द सुहावणे उपजै पचै हर बूजै नाही अंदन दूजै पाए फिराही मनमुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणे पिर पर दे सिंगार बनाए मनमुख अंध ऐसे कर्म कमाए हलत ना सोभा पलत ना ढोई बिरथा जन्म गवावणे हर का नाम किने विरलै जाता पूरे गुर कै शब्द पछाता।

तुद जेवड़ दाता है वरना स्वामी लवै ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए, साजना का मंत्र कमाए, आप तरै सगले कुल तारे।

हर जेठ जुड़न दा लोड़िया जिस अगै सब निवान हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन माणक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन अपन लिया जे मिले विचड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसके पाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास दुया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास जिहा बीजै सो लुणै मथे जो लिखे आस रैण विहानी पछताणी उठ चली गई निरास जिन कौ साधु भेटिया सो दरगह होए खलास कर किरपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आसार सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तेन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरखिया पार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार जिनी सखिए प्रभ पाया हों तिनके सबर हार नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागनी।

मन आठ साठ तीर्थ सगल पुन जी दया परवान जिसनो देवे दया कर सोई पुरख सुजान जिना मिलिया प्रभ अपना नानक तिन कुरबान माघ सुचे से कांडी है जिन पूरा गुर मेहरवान फल गुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नाहीं जाए इच पुनी वड़ भागनी वर पाया हर राय मिल सहिया मंगल गावही गीत गोविंदया लाए हर जिहा अवर न दिसई कोई दूजा लवै ना लाए हलत पलत सवारयों नि चलो दितियां न जाए संसार सागर ते रखियां न बहुना जन्मै ताए जिहवा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाए फल गुण नित सलाही है जिसनो तिल ना तुमाए जिन जिन नाम ते आया तिनके काज सरे हर गुर पूरा आराध्या दरगे सच खरे सर्व सुखा निध चरण हर पहो जल बिखम तरे प्रेम भगत तिन पाईया बिखिया नाहे जरे कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे पार ब्रह्म।

नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे। माज महला पंजवां दिन रहन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रहन आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैण जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैण हर पिर बिन चैन न पाईए खोज डिठे सब गैण आप कमाणे विछड़ी दोस न काहू देण कर कृपा प्रभ राख लेहो होर नाही करन करेण हर तुद बिन खाकू रूलना कहिए किथे वैण नानक की बेनंतिया हर सुरजन देखा नैण जी की बिरथा सो सुने हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना काया धार ससरे पईए तिसकंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम्या गाद बोध किशंतना पारावार सेवा सा तिस पावसी संता की होए शार दीना ना दयाल देव पत ते उदाहरण हार आज जुगादि रखदा सच नाम करतार कीमत कोई न जाने को नाही तोलन हार मंत्र अंतरवास रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभ को सेव दे तिन कै सद बलिहार संत आराधन सद सदा सबना का बख्शेंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिति निजिंद गुरसबदी आराधी है जपिए निर्मल मंत कीमत कहन न जाइए परमेश्वर बेअंत जिस मन वसै नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिलै स्वामी कंत नानक जीवै जप हरि दोख सबे ही हंत दिन रहन जिस ना विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्ण मन ने माणी थाओ हरे ओट गही मन अंदरे जब जब जीवन आओ कर कृपा प्रभ अपनी जंतूड़ी संग समाओ जो तू राख्या त्यो रहा तेरा दिता पैना खाओ उद्यम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए न सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊंचे अगम्या माओ मन विछड़िया हर मेली है नानक हो सवाओ सर्व कल्याणा तित देनो हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सुहिया की तुनी गावनी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद श्लोक महला पहला गुरदाता गुर है वैकार गुर दीपक तेह लोए अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए महला पहला।

गए से कीत पुकारिता, उड़िया हंस दसायरा, आया गया मुया ना, पिछे पतल सद्यो का, नानक मन मुख अंध प्यार, बाजगुरु डुबा संसार, महला पहला। दस बाल तन बीसरवण, तीसा का सुंदर कहावे, चालीसी पर होए, पचासी पग खिसै।

तू आपे खेल करे सब करते क्या दूजा अख बखानी है। जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति बिच तू बोलै वेण ज्योति कोई किश करो दिखा सियाणी है। नानक गुरमुख नदरी आया हर इको सूट सुजानी है। पौड़ी तुद आपे जगत पाए कै तुद आपे तंद लाया। मोठ गौली पाए कै तुद आपो जगत खुआया। तिसना अंदर अगन है न तिप तै भुखा तिहाया। सह सायो संसार है मर जमै आया जाया। बिर सतगुर मोह न टुटई सब थके कर्म कमाया। गुरमती नाम ते आई है सुख रजा जा तुद पाया। कुल उधारे अपना तन जने दी माया। सोभा सुरत सुहावनी जन हर सेती चित लाया। श्लोक महला दूजा अखी बाजो वेखना मन कन्ना सुनना। पैरा बाजो चलना मन हथा करना। जीबे बाजो बोलना ओ जीवत मरना। नानक हुक्म पछाण कै तौ खसमै मिलना। महला दूजा दिसै सुनिया जानिया सौ ना पाया जाए। रोहला टुंडा अंदला क्यों गल गै तहाए। पै के चरण कर भाव के लोइन सुरत करे। नानक है सियाणीए इव कंत मिलावा होए। पौड़ी सदा सदा तू एक है तो दूजा खिल रचाया। हम मैं गुरु ब्यो पाए कै लोभ अंतर जनता पाया। ज्यो पावे त्यो रख तू सब करे तेरा कराया। इकना बख्सै मेल लै गुरमती तुदै लाया। एक खड़े करे तेरी चाकरी विणना मैं होर ना पाया। होर कार वेकार है एक सच्ची कार लाया। पुत कलत कुटंब है एक अलिप्त रहे जो तुद पाया। ओहे अंदरो बारो निर्मले सच्चे नै समाया। श्लोक महला पहला सोने कै पर्वत गुफा करी कै पानी पै आल कै विच धरती कै आकाशी उर्द्रहा सिर पार। पुर कर काया कपड़ पहरा तोवा सदाकार। बग्गा रत्ता पियला काला बेदा करी पुकार। होए कुचील रहा मलतारी दुर्मत मत विकार। ना हो ना मैं ना होवा नानक शब्द विचार। महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संयम होवै। अंतर मैल लगी नहीं जाने बारो मलमल तोवै। अंधा फूल पया जम जाले वस्त्र पराई अपनी कर जाने। हम मैं भी दुख काले नानक गुरमुख हम मैं टुटै ता हर हर नाम ते आवै। नाम जपे नाम वारा दे नामे सुख समावै। पवड़ी काया हंस संजोग मेल मिलाया तिन्ही किया विजोग। जिन उपाया मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया। सुख उठे रोग पाप कमाया हर खो सोग विजोगो पाए पाया। मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया। सतगुर हथ नबेड़ झगड़ चुकाया। करता करे सुहोग न चले चलाया। श्लोक महला पहला कूड़ बोल मुरदार खाए अवरी नो समझावन जाए। मुठाया मुहाए साथ है नानक ऐसा गूजा पै। महला चौथा जिस दे अंदर सच है सो सच्चा नामुख सच्चा लाए। ओ हरे मार्ग आप चलदा होर नानो हर मार्ग पाए। जे अगे तीर्थ होए ता मन लै छपड़ ना तै सगवी मन लाए। तीर्थ पूरा सतगुरु जो अंदन हर हर नाम ते आए। ओ आप छुट्टा कुटंब स्यो दे हर हर नाम सब सिरिट छिड़ाए। जन नानक तिस बारे हारण जो आप जपै अवरा नाम जपाए। पौड़ी एक कंद मूल चुन खाहे वण खंड वासा। एक भगवा वेस कर फिरै जोगी सन्यासा। अंदर तृष्णा बहुत शादर भोजन की आसा। वृथा जन्म गवाए ना गिरही ना उदासा। जम काल सिरो न उतरै त्रिवद मनसा। गुरमती काल ना आवै नेड़ै जा होवै दासन दासा। सच्चा शब्द सच मन कर ही माहे उदासा। नानक सतगुर सेवन अपना से आसा ते निरासा। श्लोक महला पहला जे रत लगे कपड़े जमा होए पलीत। जो रत पीवै मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। नानक नाम खुदाए का दिल हच्छा मुख ले हो। अवर दिवाजे दुनी के झूठे अमल करे हो। महला पहला जा हो नाही ता क्या खा क्यों नाही क्या होवा। कीता करना कहया कथना भरिया पर तोवा। आप ना बुझा लोक बुझाई ऐसा या गुहोवा। नानक अंदा होए कह दसे रहा है
ਸਭ ਸਮੁਹਾਇ ਸਾਥ ਹੈ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਮੋਹੇ ਮੋਹੇ ਪਾਹੇ ਸੋ ਐਸਾ ਅਗੂਜਾ ਪੈ ਪੌੜੀ ਮਹਾਰੁਤੀ ਸਭ ਤੂੰ ਕੜੀ ਮੂਰਤ ਵਿਚਾਰਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸੱਚੇ ਲਖਿਆ ਪਾਰਾ ਪੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਜਿਸ ਲਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰਾ ਨਾ ਉਹ ਪੜੀਐ ਨਾ ਉਹ ਬੁੱਝੀਐ ਗੁਰਮਤੀ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁਰਮਤੀ ਨਾਮ ਤਨ ਖਟਿਆ ਭਗਤੀ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਮੰਨਿਆ ਦਰ ਸੱਚੈ ਸਚਿਆਰਾ ਜਿਸਦਾ ਜੀਓ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਅੰਤਰ ਜੋਤਿਆ ਪਾਰਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹੋ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਹਰ ਮਸੀਤ ਸਿੱਧਕ ਮੁਸੱਲਾ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਕੁਰਾਨ ਸਰਮ ਸੁਨਤ ਸੀਲ ਰੋਜਾ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਰਨੀ ਕਾਬਾ ਸੱਚ ਪੀਰ ਕਲਮਾ ਕਰਮ ਨਿਵਾਜ ਤਸਬੀ ਸਾ ਤਿਸ ਭਾਵ ਸੀ ਨਾਨਕ ਰੱਖੈ ਲਾਜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਗਾਏ ਗੁਰਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ ਗੱਲੀ ਪਿਸ ਨਾ ਜਾਈਏ ਛੁੱਟੈ ਸੱਚ ਕਮਾਏ।

जिसो कुती तात, बोला जे समझाइए पढ़िए सिमरत पाठ। अंधा चानन रखिए दीवे बले पचास, चौने सोई ना पाइए चुन चुन खावे कास। लोहा मारन पाइए टह ना होए कपास, नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनाश। महला पहला, तैहा कंचन तुटे सार, अग्नि गंढ पाए लोहार, गोरी सेती तुटे पतार, पुत्री गंढ पवै संसार। राजा मंगे दिते गंढ पाए, भुखिया गंढ पवै जा खाए, काला गंढ नदियां मीह झोल, गंढ प्रीति मिठे बोल। बेदा गंढ बोले सच कोए, मोया गंढ नेकी सत होए, एत गंढ वरतै संसार, मूर्ख गंढ पवै मोहिमार। नानक आखै हो बीचार, सिफती गंढ पवै दरबार। पौड़ी आपे कुदरत साज कै, आपे करे बीचार, एक खोटे एक खरे आपे परखणहार। खरे खजाने पाईऐ, खोटे सटियै बार वार, खोटे सच्ची दरगह सुटी है, किस आग्या करे पुकार, सतगुर पिछे भज पवै एहा करनी सार। सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द सवारन हार, सच्ची दरगह मनियन गुर कै प्रेम प्यार, गणत तिना दी को क्या करे जो आप बख्से करतार। सलोक महला पहला, हम जेर जिमी दुनिया पीरा मसाए काराया, मेर वद बादशाह अफजू खुदाए। एक तू ही महला पहला, ना देव दानवा नरा, ना सिद्ध साधका तरा, अस्त एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला। ना दादे देहां दे आदमी, ना सबत जेर जिमी, अस्त एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला। ना सूर सस मंडलो, ना सपत दीप नह जलो, अन्न पौन थिर ना कोई, एक तू ही महला पहला। ना रिजक दस्त आकसे, हमारा एक आस वसे, अस्त एक दिगर कोई, एक तू ही महला पहला। परंदे ना ग्रह जर, दरख्त आव्यास कर, देहंद सुई एक तुई महला पहला। नानक ललार लिखिया सोए, मेटना सके कोए, कला तरै हरै सुई एक तुई पौड़ी। सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया, गुरमति आप गवाए सच पछाणिया। सच तेरा दरबार शब्द निशानिया, सच्चा शब्द विचार सच समाणिया। मनमुख सदा कूड़ियार परम भुलाणिया, विष्टा अंदर वास साधना जानिया। विण नावें दुख पाए आवन जानिया, नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया। सलोक महला पहला, सिंह बाजा चरगा कुहियां, इन्हां

करे असगा, कीड़ा थाप दे पातशाही, लश्कर करे सुवा। जेते जी जीवे लै सहा, जीवा।

दुए भौकिया खादा हुए सुहा पी खाने स्यों दोस्ती चौथे आई ऊंग अखी मीट पवार गया पी उठ रचियोन वाद सैवरिया की पिड़ बदी सबे वेला वक्त सब जे अठी पौ होए नानक साहिब मन वसै सच्चा नावन होए महला दूजा से पूरे साहा जिनी पूरा पाया अठी वे परवाह रहन एक तैरंग दर्शन रूपया था विरले पाई है कर्म पूरा पूरा गुरु पूरा जाका बोल नानक पूरा जे कर कटै नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इना चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाए सो भन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है कोई ना।

जय कारण तट तीर्थ जाही रतन पदार्थ कट ही माही पड़ पड़ पंडित बाद वखाण भीतर होंदी वस्त न जाण हो ना मुआ मेरी मुई बलाए ओह ना मुआ जो रया सुमाए कहो नानक गुर।

गुरमत दे भरोसा तेरा तन मह मैल नाही मन राता गुरबचनी सा शब्द पछाता तेरा तान नाम की वड्याई नानक रहना भगत सरनाई गौड़ी महला पहला जिन अकथ कहाया अप्यो पी आया अनपै विसरे नाम समाया क्या डरिए डर डरै समाना पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास सह सुभाए मिले साबास जाहे सवारै सांझ बयाल इत उत मनमुख बांधे काल अहनिस

तीन अवस्था कह वखियान, तुरियावस्था सतगुर ते हर जान, राम भगत गुर सेवा तरना, बहुड़ जन्म ना होए है मरना रहाओ। चार पदार्थ कह सब कोई, सिमरत शास्त्र पंडित मुख सोई, बिन गुरे अर्थ विचार ना पाया, मुक्त पदार्थ भगत हर पाया, जा कै हृदय वसया हर सोई, गुरमुख भगत प्राप्त होई। हर की भगत मुक्त आनंद, गुरमत पाए परमानंद, जिन पाया गुर देख दिखाया, आसा महे निरास बुझाया, दीना नाथ सर्व सुखदाता, नानक हर चरणी मन राता, गौड़ी चेती महला पहला, अमृत काया रहे सुखाली, बाजी यो संसारो लभ लोभ मुच कूड़ कमावे, बहुत उठावे पारो, तू काया मैं रुलदी देखी, ज्यों तारी उपर इशारो, सुन सुन सिख हमारी, सुकिरत कीता रहसी मेरे जियड़े, बहु नया व्यवारी रहाओ। हाँ तुझे आखा मेरी काया, तू सुन सिख हमारी, निंदा चिंदा करे पराई, झूठी लाए तबारी, वेल पराई जो है जियड़े, करे चोरी बुरियारी, हंस चलिया तू पिछे रही है, छुट्टड़ हुई है नारी, तू काया रही है सुपनंतर, तुद क्या कर्म कमाया, कर चोरी मैं जाक छलिया, ता मन भला पाया,

नानक से देह आवन। राग गौड़ी ग्वारे री महला तीजा, चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद। गुर मिले हर मेला होई, आपे मेल मिलावे सोई। मेरा प्रभु सब विद्या पे जाने, हुक्मे मेले शब्द पछाणे। सतगुर कै भय परम पौ जाए, पैरा चै सच रंग समाए रहाओ। गुर मिले हर मन वसै सुभाए, मेरा प्रभु पारा कीमत नहीं पाए। शब्द सलाह अंत ना पारा वार, मेरा प्रभु बख्शे बख्शनहार। गुर मिले सब मत बुद्ध होए, मन निर्मल वसै सच सोए। साच वसै साची सबकार, उत्तम करनी शब्द विचार। गुर ते सच

बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन ना मैं दुखिया चलिया रोए। रसना हरस जाखिया सह सुभाए, गुर कृपा ते सच समाए, साचे राती

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जियो वडाणी चाकरी लाया, महा दुख हटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नाव निध पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाई पाई रहाओ, आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुक्त हर पावै सोए, हर गुण गावै मातूतम होए, सहजे सही समावै सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए, हमै माया महा बिख खाए, पुत कुटंब गृह मोया माए, मन खयंदा आवै जाए, हर हर नाम देवै जन सोए, अंदन भगत गुर सबदी होए, गुरमत विरला बूझै कोए, नानक नाम समावै सोए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावै कोई, अखुट नाम तन हर तोट न होई, ऐथै सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे भरम ना कीजै, गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै ऐसे महापुरख संसारे, आप उदरे कुल सगल निस्तारे, हर का नाम रखै और तारे, नाम रते भौजल उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मन दासा, हमै मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निकर वासा, नाम रते कर माहे उदासा, सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भक्ति आख वखाणी, आन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी, गौड़ी गुआरी री महला तीजा, सतगुर मिले वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ, ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने विरलै चख डीठा, कर्म कांड बहु करे आचार, बिना मैं त्रिग त्रिग हंकार, बंदर बांधे हो माया फास, जन नानक छूटै गुर प्रगास, महला तीजा गौड़ी बैरागण, जैसी धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्ये पानी नाही, जैसे धरती मध्ये पानी परगासिया, बिन पग्गा वरसत फिराही, बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाय समाही रहाओ, स्त्री पुरख होए कै क्या वे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे तुझी मैं समाही, इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्य सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही, नानक तत् तत् सो मिलिया, पुनरप जन्म ना आही, गौड़ी बैरागण महला तीजा,

लख चौरासी भरम दे मन अठिया वह जाए, गुर का शब्द ना चीन्यो फिर जो नी पाए। गुरमुख आ पछाणिया हर नाम वसया मन आए, अंदर भगती रतिया हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरे प्रतीत होए, हो मैं तजे वेकार, जन नान करमी पाईया नु हर नामा भगत भंडार। गौड़ी बैरागण महला तीजा, पे अड़ै दिन चार है, हर हर लिख पाया सोभावंती नार है। गुरमुख गुण गाया पेवकड़ै गुण समलै, साहुरै वास पाया गुरमुख सह समाणिया हर हर मन पाया। ससरै पेय पिर वसै, कहो किद बिद पाईऐ, आप निरंजन अलख है आपे में लाइय रहाओ। आपे ही प्रभ देह मातु हर नाम ते आई है, वडभागी सतगुर मिलै मुखी अमृत पाई है। हो मैं दुबदा बिनस जाए, सहजे सुख समाई है, सब आपे आवरदा आपे नाए लाई है। मनमुख गर्भ ना पायो अज्ञान अयाणे, सतगुर सेवा ना करे फिर पछताणे। गर्भ जोनी वास पाए दे गर्भे गर जाने, मेरे करते एवै भामदा मनमुख प्रमाणे। मेरा हर प्रभ लेख लिखाया तुरमस्तक पूरा, हर हर नाम ते आया भेटिया गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधु बीरा, हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक कीरा। गौड़ी बैरागण महला तीजा, सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् बिचारा, मत मलीन प्रगट भई जपना मुरारा। सेव सकत मिटाइया चूका दियारा, तुरमस्तक जिन कौ लिखिया तिन हर नाम प्यारा। हर कित बिद पाईऐ संत जना, जिस देख हो जीवा हर बिन चसा ना जीवती, गुर मिल्यो हर रस पीवा रहाओ। हाँ हर गुण गावा नित हर सुनी, हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी। तन तन गुर सतपुरख है जिन भगत हर दीनी, जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी। गुण दाता हर राय है,

साध संकै नाही नेर, लख चौरासी ब्रह्मता फेर, एक जल फहाए पंखी, रस रस पोकर बोरंगी। कहो नानक जिस पय कृपाल, गुरपुरै ताके काटे जाल, गौड़ी गुआरे री महला पंजवा। तौ कृपा ते मार्ग पाई है, प्रभ कृपा ते नाम ते आई है, प्रभ कृपा ते बंधन छुट है, तौ कृपा ते हम मैं तुट है। तुम लावाओ तौ लागै सेव, हम ते कछु न होवै देव रहाओ। तुद भावै ता गावा बाणी, तुद भावै ता सच वखाणी, तुद भावै ता सतगुर मया, सर्व सुखा प्रभ तेरी दया। जो तुद भावै सो निर्मल कर्मा, जो तुद भावै सो सच धर्मा। सर्व निदान

संचारे खोजत खोजत नहीं कर पाया अमोल रतन साज दिखलाया कर कृपा जब मिले साहे कहो नानक गुर कै वे साहे गौड़ी महला पंजवां ग्वारेरी रैन दिन सो रहे करंगा प्रभ को जाने सधी संगा ठाकर नाम कियो उन वर्तन तृप्ता गवन हर कै दर्शन हर संग्राते मंतन हरे गुर पूरे की सरनी परे रहाओ चरण कमल आत्म आधार एक निहार आज्ञाकार एको बनजो एको व्यवहारी अवर न जाने बिन रंकारी हरख सोग दहूं ते मुक्ते सदा अलिपत जोग हर जुगते दिसे सब मैं सब ते रहते पार ब्रह्म का होए ध्यान तरते संतर की महिमा कमन बखाना आगाध बोध किस्मत नहीं जानो पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय तूर संतन की नानक दी जय गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत तू मेरा प्रीतम तुम संगहीत तू मेरी पात।

आप कमाओ अवरा उपदेश, राम नाम हृदय प्रवेश, जाके माथा हो निधान, सोई पुरख जपै भगवान। आठ पहर हर हर गुण गाओ, कहो नानक हौ तिस बल जाओ। राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, चौपदे दुपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद। जो प्रायो सोई अपना, जो ता छोड़न तिस्यो मन रचना, कहो गुसाई मिली है के है, जो बिबर्जित तिस्यो ने है। रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती, सत होवन मन लगे ना राती। बावे मार्ग टेढ़ा चलना, सीधा छोड़ा पूठा बुनना, दुहा सरिया का खसम प्रभ सोई, जिस मेले नानक सो मुक्ता होई। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, कल युग में मिले आए संजोग, जिचर आ गया तिचर पोगै भोग, जलै ना पाईऐ राम स्नेही, किरत संजोग सती उठ होई। रहाओ देखा देखी मन हट जल जाइय, प्रे संग ना पावै बहु जोन पवाइय, सील संजम प्रयाया गया मन, तिस नारी कहो दुख ना जमानै, कहो नानक जिन प्रयो परमेसर कर जानिया, तन सती दरगै परवानिया। गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, हाव तन मन तो पाक सच नाए, हर गुण गावै सही सुभाए। रहाओ पियू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन पया निधाना, अर्तन लाल जाका कछु ना मोल, परे पंडारा खूटा तोल। खावै खर्चै रल मिल भाई, तोट ना आवै।

देखो पवन कहां कौन रोध, मेरा मेरा कर बिल्लाही, मरण हारे हो जियरा नाही, कहो नानक गुर खोले कपाट, मुक्त पाए बिन से ब्रह्म थाट। गौड़ी महला पंजवा, वड़े वड़े जो दिसे लोग, तिनको व्यापै चिंता रोग, कौन वड़ा माया वड़ियाई, सो वड़ा जिन राम लेवलाई रहाओ। भूमिया भूम ऊपर नित लुजै, छोड़ चले तृष्णा नहीं बुझै, कौ नानक्यो तत विचारा, बिन हर भजन नहीं छुटकारा।

हर कै मार्ग पतत पुनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करण हार सदवसै हदूरा कहो नानक मेरा सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा संत की तूर मिट अग कोट संत प्रसाद जन मरण ते छोट संत का दर्श पूर्ण स्नान संत कृपा ते जपिए नाम रहाओ संत कै संग मिटया हंकार दृष्टिया वै सब एक अंकार संत सो प्रसन्न आए वसपंचा अमृत नाम हृदय लै संचा कहो नानक जाका पूरा कर्म तिस भेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल प्रगास है हर सिमरत त्रा सबनास है सा मत पूरी जित हर गुण गावै वड्डे पाक साधु संग पावै रहाओ साध संग पाई है निदनामा सा संग पूर्ण सब कामा हर की भगत।

है गौड़ी महला पंजवां। पले दिनस पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निरजोग। ओह बेला को हम बल जाओ, जित मेरा मन जप हर नाओ रहाओ। सफल मूर्त सफल ओह करी, जित रसना उचरै हर हरी। सफल ओह माथा संत नमस्कार सो, चरण पुनीत चले हर मार्ग। कहो नानक भला।

पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी सगल कटाके अंतरजामी करो अरदास अपने सतगुर पास नानक नाम मिले सच रास गौड़ी महला पंजवा कण बिना जैसे थोथर तुखा नाम बिहून सुने से मुखा हर हर नाम जपो नित प्राणी नाम बिहून त्रिग देह बेगानी रहाओ नाम बिना नाही मुख भाग परत बिहून कहां सोहाग नाम बिसार लगे अनसवाए ताकि आसना पूजे काए कर कृपा प्रभ अपनी दात नानक नाम जपै दिन रात गौड़ी महला पंजवा तू समर्थ तू है मेरा स्वामी सब किश तुम ते तू अंतरजामी पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट तेरी शरण उधरै जन कोट रहाओ जेते जी ते सब तेरे तुमरी कृपा ते सुख नेरे जो किश वरतै सब तेरा पाणा हुक्म बूझै सो सच समाणा कर कृपा दीजै प्रभदान नानक सिमरै नाम निधान गौड़ी महला पंजवा ताका दर्श पाईऐ वडभागी जा की राम नाम लिव लागी जा कै हर वसिया मन माही ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ सर्व निधान राखे जन्मा है ताकै संग किलविख दुख जाए जन की महिमा कथी न जाए पार ब्रह्म जन रया समाए कर कृपा प्रभ बिनो सुनिजै दास की तूर नानक कहो दीजै गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत तेरी जाए बलाए सर्व कल्याण वसै मन आए पज मन मेरे को नाम जी तेरे कै आवै काम रहाओ रैन दिनस गुण गाओ अनंता गुरपूरे का निर्मल मंता छोड़ उपाव एक टेक राख महापदार्थ अमृत रस चाख बिखम सागर तेई जन तरे नानक जा कौन नदर करे गौड़ी महला पंजवा हिरदय चरण कमल प्रभ तारे पूरे सतगुर मिल।

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन ले जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दे वसै भगवान, कहो नानक से ही जन

साधु संग करो सब कोए, सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान, नानक दरगह पाई है मान। गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हरमीत, प्रांबिन से गाए गुणनीत। उठत सोवत हर संग पहरुआ, जाकै सिमरन जमने डरुआ। रहाओ चरण कमल प्रभृदय निवास, सगल दुख का होया नास। आसा मान तान तन एक, साचे साह की मन में टेक। महागरीब जन साध्या नाथ, नानक प्रभ राखे दे हाथ। गौड़ी महला पंजवा, हर हर नाम मजन कर सूचे, कोट ग्रहण पुन फल मुचे। रहाओ हर के चरण हृदय में बसे, जन्म जन्म के किलबख नसे। साध संग कीर्तन फल पाया, जम का मार्ग दृष्ट न आया। मन बच क्रम गोविंद आधार, ताते छुट्यो बिक संसार। कर किरपा प्रभ कीनो अपना, नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवा, पौ सरण आई जिन हर जाते, मन तन शीतल चरण हर राते। पै पंजन प्रभ माना बसाही, डरपत डरपत जन बहुत जाही। रहाओ जा कर दे बस्यो हर नाम, सगम नोरथ ताके पूर्ण काम। जन्म जरा मृत जसवास, सो समरथ सिमर सास गिरास। मीत साजन सखा प्रभ एक, नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवा, बाहर राख्यो हृदय समाल, घर आए गोविंद लै नाल। हर हर नाम संतन कै संग, मंत्र राता राम कै रंग। रहाओ गुर प्रसादी सागर तरिया, जन्म जन्म के किलबक सब हिरिया। शोभा सुरत नाम भगवंत, पूरे गुर का निर्मल मंत। चरण कमल हृदय में जाप, नानक पेख जी वै प्रताप। गौड़ी महला पंजवा, तन एहो थान गोविंद गुण गाए। कुशल खेम प्रभ आप बसाए। रहाओ विपत तहां जहां, हर सिमरन नाही। कोट आनंद जय हर गुण गाही। हर बिसरे दुख रोग कनेरे, प्रभ सेवा जम लगे नानेरे। सो वडपागी निश्चल थान, जह जपिय प्रभ केवल नाम। जह जाइय तह नाल मेरा स्वामी, नानक कौ मिलया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा, जो प्राणी गोविंद त्यावै, पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावै। साधु संग सिमर गोपाल, बिना मैं झूठा तन माल। रहाओ रूपवंत सो चतर सियाणा, जिन जन मान्या प्रभ का पाणा। जग मैं आया सो प्रवाण, घट घट अपना स्वामी जान। कहो नानक जाके पूर्ण भाग, हर चरणी ताका मन लाग। गौड़ी महला पंजवा, हर के दास स्यों सागत नहीं संग। ओह बिखई ओस राम को रंग। रहाओ मन असवार जैसे तुरी सिंगारी, ज्यों का पुरख पचारे नारी। बैल कौ नेत्रा पाए दुहावे, गऊ चर सिंह पाछे पावे। गाडर ले काम तेन कर पूंजी, सौदे कौतावे बिन पूंजी। नानक राम नाम जपचीत, सिमर स्वामी हर सामीत। गौड़ी महला पंजवा, सामत निर्मल कहियत तीर, राम रसायन पीवत बीर। हर के चरण हृदय कर ओट, जन्म मरण ते होवत छोट। रहाओ
सो तन निर्मल जित उपजे ना पाप, राम रंग निर्मल प्रताप, साध संग मिट जात बेकार, सब ते उच एहो उपकार, प्रेम भगत राते गोपाल, नानक जाचै सादरवाल, गौड़ी महला पंजवां, ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, मेल लय पूर्ण।

गई ब्याद उबरे जनमीत मन बच कर्म प्रभ अपना त्याई नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा नेत्र प्रगास किया गुरुदेव परम गए पूर्ण भई सेव रहाओ शीतलाते रखिया बिहारी पार ब्रह्म प्रभ कृपा तहारी नानक नाम जपै सो जीवै साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा तान्यो मस्तक।

तेन उपर जाइए कुर्बान, नानक जिन जपया निर्बाण, गौड़ी महला पंजवा, तू है मसलत तू है नाल, तू है राखे सार समाल, ऐसा राम दीन दुनी सहाई, दास की पैज रखे मेरे भाई रहाओ, आगे आप इहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर को जापे, पत प्रवान सच निशान, जाको आप करे फुरमान, आपे दाता या प्रतपाल, नित नित नानक राम नाम समाल। गौड़ी महला पंजवा, सतगुर पूरा पया किरपाल, हृदय वसिया सदा गोपाल, राम रवत सदी सुख पाया, माया करी पूर्ण हर राया रहाओ, कहो नानक जाके पूरे भाग, हर हर नाम अस्तर सोहाग, गौड़ी महला पंजवा, तोती खोल विछाए हेठ, गर्द पवांगू लाहे पेट, बिन कर तूती मुक्त ना पाइए, मुक्त पदार्थ नाम त्याइए रहाओ, पूजा तिलक करत इशनाना, शुरी कार्ड लेवे हथ दाना, बेद पड़े मुख मीठी बाणी, जिया कुहत ना संगे प्राणी, कहो नानक जिस कृपा तारै, हिरदा सुध ब्रह्म बीचारै, गौड़ी महला पंजवा, थिर कर बैसो हर जन प्यारे, सदगुर तुमरे का सवारे रहाओ, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जन की पैज रखी करतारे, बादशाह सा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपा होए पजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानके ओट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा, हर संगराते पाहे ना जलै, हर संगराते माया नहीं छलै, हर संगराते नहीं डूबै जलाओ, हर संगराते सफल फलाओ, सब पै मिटै तुम्हारे नाए, पेट संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संगराते मिटै सब चिंता, हर स्यों सो रचै जे साधका मंता, हर संगराते जम की नहीं त्रास, हर संगराते पूर्ण आस, हर संगराते दुख ना लागे, हर संगराता अंदन जागे, हर संगराता सहज कर वसै, हर संगराते परम पौन सै, हर संगराते मत उत्तम होए, हर संगराते निर्मल सोए, कहो नानक तिनको बल जाई, जिनको प्रम मेरा बिसरत नाही, गौड़ी महला पंजवा, उद्यम करत शीतल मन भये, मार्ग चलत सगल दो गए, नाम जपत मन पय आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल घर आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाओ, नेत्र पुनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस, गोविंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया, जन की कीनी आप सहाए, सुख पाया लगदा सह पाए, आप गया ता आपे पए, कृपा निदान की सरणी पए, जो चाहत सोई जपाया, तब ढूंढन कहां को जाया, अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इसनान, लाख अरब खरब दीनो दान, जामन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाय गोपाल, पाप मिटाए साधु शरण दयाल रहाओ, बहुत और दो तब साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन आरा दे,
सिमरत शास्त्र वेद बखाने, जो ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ स्यो मन माने, आगाध बोध हर अगम अपारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे, नानक प्रभ कृपा तारे। गौड़ी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुरदेव बसाया, गुरु गोबिंद पार ब्रह्मपुरा, तिसे अराध मेरा मन धीरा रहाओ, आन दिन जपो गुरु गुरनाम, ताते सिद्ध पय सगल काम, दर्शन देख शीतल मन भए, जन्म जन्म के किलबिख गए, कहो नानक कहां पै भाई, अपने सेवकी आपै रखाई। गौड़ी महला पंजवां, अपने सेवको आप सहाई, नित प्रत पारे बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए, करन करावन पूर्ण सज सोए, रहाओ आप मन बसिया करना हारा, पै बिनसे आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाथे, कह ना जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास दा सरनाई। राग गौड़ी चेती महला पंजवां, दो पदे एको ओंकार सतगुर प्रसाद, राम कोबल।

नानक मांगत नाम आधारे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद। कवन गुण प्राण पात मिलो मेरी माई, रहाओ रूपहीन बुद्ध बलहीनी, मोहे परदेसन दूर ते आई। नाहन दर्ब ना जोबन माती, मोहे अनाथ की करो समाई। खोजत खोजत पई बैरागन, प्रभ दर्शन कहो फिरत तसाई। दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक, साह संग मेरी जलन बुझाई। गौड़ी महला पंजवा, प्रभ मिलबे कौ प्रीत मन लागी, पाए लगो मोहे करो बेनती। कौ संत मिलै वड़ भागी, रहाओ मन अर्पो तन राखो आगै। मन की मत मोहे सगल त्यागी, जो प्रभ की हर कथा सुनावै। आन दिन फिराओ तिस पिछै वैरागी, पूर्व कर्म अंकर जब प्रगटे। भेट्यो पुरख रसक बैरागी, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक। जन्म जन्म की सोई जागी, गौड़ी महला पंजवा। निकसरे पंखी सिमर हर पांख, मिल साधु शरण गहो पूर्ण। राम रतन हियरे संग्राख, रहाओ भ्रम की कुई तृष्णा रस पंकज। आतीखण मोकी फास, काटन हार जगत गुरु गोविंद। चरण कमल ताके करो निवास, कर कृपा गोविंद प्रप्रीतम। दीना ना सुनो अरदास, कर गै लेहो नानके स्वामी। जियो पिंड सब तुमरी रास, गौड़ी महला पंजवा। हर पेखन को सिमरत मन मेरा,

करो दास दासन की अनक पान तिस करो निहोरा, तुला तहार तोले सुख सगले बिन हर दर्श सबो ही थोरा, संत प्रसाद गाय गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा, आनंद सुख पेट तहर नानक जन्म कृतार्थ सबल सवेरा, राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद, केन विद मिले गुसाई मेरे राम राय, कोई ऐसा संत सह सुखदाता मोहे मार्ग दे बताई रहाओ, अंतर अलख न जाई लखिया विच पड़दा हूं मैं पाई, माया मोहे सबो जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई, एका संगत एकत ग्रह बसते मिल बात ना करते भाई, एक बसद बिन पंच दुहेले ओ बसदा गोचर ठाई, जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुर सौ पाई, अन क्यों पाव करे नहीं पावै बिन सतगुर सरनाई, जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिव लाई, पंच जना मिल मंगल गाया हर नानक भेद ना पाई, मेरे राम राय इन बिद मिले गुसाई, सहज पया परम खिन मैं नठा मिल ज्योति जो समाई, रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा, ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीठल सतगुर मजै बतायो, रहाओ जात का देखो ताता तुम ही मोहे एहो विश्वास होए आयो, कै पै करो अरदास बेनती जो सुनतो है रगरायो, लयो सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सह सुख पायो, होना सा सोई फुन होसी सुख दुख कहां दिखायो, खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर पर्दा खोल दिखायो, नाव निद नाम निधान इकठाई तो बाहर कैठ जायो, एक कनक अनक भांत साजी बहु प्रकार रचायो, कहो नानक परम गुर खोई है इव तत् तत् मिलायो, गौड़ी महला पंजवा औद कटै दिन सुरै नारे मन गुरमिल का इसवारे, रहाओ करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की वेला, इहां खाड़ चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला, एहो संसार बेकार सहसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी, जिसे जगाए पी आए हर रस अकथ कथा तिन जानी, झांको आए सोई विहा जाओ हर गुरते मने बसेरा, निज कर महल पावो सुख सहजे बहुर ना होए गो फेरा, अंतर जामी पुरख विधाते सरदा मन की पूरे, नानक दास ही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे, गौड़ी महला पंजवा राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण।

ले वर्ण ना साकौ तुमरे रंगा गुणदान सुखदाते अगमै गोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुर ते जाते भ्रम पौ काट की ए नह केवल जब ते हमे मारी जन्म मरण कौ चूको सहसा साध संगत दरसारी चरण पखार करो गुर सेवा बार जाओ लख बरिया जेह प्रसादे पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कमनरी जावे तो ही तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ सुर्ग पयाल मृत भू मंडल सर्व समानो एक ओही शिव शिव कर तो सगल कर जोर सर्व माया ठाकर तेरी दोही पतत पावन ठाकर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीत लोही ज्ञान ध्यान नानक वड्याई संत तेरे स्यों गाल गलोही गौड़ी महला पंजवा मिलो प्यारे जिया प्रभ किया तुम्हारा थिया रहाओ अनक जन्म बजोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मान खुदे पाई है देहो दर्श हर राया सोई होवा ज्योतिष।

जौ सौ प्रसन्न भय प्रभ ठाकर सब आनंद रूप दिखायो। ना किश आवत ना किश जावत सब खेल कियो हर रायो। कहो नानक अगम अगम है ठाकर भगत टेक हर नायो। गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ता की ओट गही जैरे। जिन तारे ब्रह मंड खंड हर ताको नाम जपी जैरे। रहाओ मन की मत त्यागो हर जन हुकम बू सुख पाइये रे। जो प्रभ करे सोई पल मानो सुख दुख ओही त्याइये रे। कोट पत तो उधारे खिन मैं करते बार ना लागे रे। दीन दर दुख पंजन स्वामी जिस पावे तसे निवाजे रे। सबको मात पिता प्रतपालक जी प्राण सुख सागर रे। देन दे तोट नाही तस करते पूर रहे रत्नागर रे। जाचक जाचे नाम तेरा स्वामी घट घट अंतर सोई रे। नानक दास ताकी सरनाई जाते बिरथा ना कोई रे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर कबू न मनो बिसारे इहां उहां सर्व सुख दाता सगल कटा प्रतपारे। रहाओ महा कष्ट काटे खिन पीतर रसना।

चरण कमल आराधित मन में जम की त्रास बिगारे। पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारे, गुण गावत त्यावत सुख सागर जुवे जन्म ना हारे। काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो निर्गुण के दातारे, कर कृपा अपनो नाम दीजै नानक सद बलिहारे। राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख नाही रे हर भगत बिना, जीत जन्म एहो रतन मोलक, साध संगत जप एक खिना रहाओ। सुत संपत बनता विनोद, छोड़ गए बहु लोग भोग। हैवर गैवर राज रंग, त्याग चलो है मूढ़ नंग। चोवा चंदन दे फूलिया, सो तन तर संग रूलिया। मोहे मोहे आ जाने दूर है, कहो नानक सदा दूर है। गौड़ी महला पंजवा, मन तार तर बे हर नाम नो, सागर लहर संसा संसार, गुरबोइथ पार ग्राम नो रहाओ। काल कालख अंधियारिया, गुर ज्ञान दीपक उजियारिया। बिख बिखिया बसरियत कनी, उबरे जप जप हर गुनी। मतवारो माया सोया, गुर भेट परंपो खोया। कहो नानक एक ते आया, कट कट नदरी आया। गौड़ी महला पंजवा, दीवान हमारो तुही एक, सेवा थारी गुर है टेक रहाओ। अनक जुगत नहीं पाया, गुर चाकर लै लाया। मारे पंच बिखा दिया, गुर कृपा ते दल साध्या। बख्शीस वजो मिले एक नाम, सुख सहज आनंद विश्राम। प्रभ के चाकर से भले, नानक तिन मुखी उजले। गौड़ी महला पंजवा, जिया रे ओला नाम का। अवर जे करन करावनो, तिन मैं पाओ है जाम का रहाओ। अवर जतन नहीं पाई है, वड्डे पाग हर त्याई है। लाख हिकमती जानी है, आगै तिल नहीं मानी है। अहु बुद्ध कर्म कमावने, ग्रह बालू नीर बहावने। प्रभ कृपाल कृपा कर, नाम नानक साधु संग मिले। गौड़ी महला पंजवा, बार न बलिहार न लख बरिया। नामो हो नाम साहिब को, प्राण अदरिया रहाओ। करन करावन तुही एक, जी जंत की तुही टेक।

ओही पाठी ओही पोचा, ओही प्यारो ओही रुचा, मन ओहो सुख जातो, सहज केलो आनंद खेलो, रहे फेर पय मेल, नानक गुर शब्द परातो, राग गौड़ी मालवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर नाम ले हो मीता ले हो, आगे बिखम पंथ पयान रहाओ, सेवत सेवत सदा सेव, तेरा संग बस्त है काल, कर सेवा तू साध की हो कटिए जमजाल, होम जग तीर्थ किए बिचहु मैं बदे बिकार, नरक सुर्ग दोए पुंच ना होए बहुर बहुर अवतार, शिवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निचल को थाओ नाहे, बिन हर सेवा सुख नहीं हो साक्त आवे जाहे, जैसो गुर उपदेसिया मैं तैसो कहया पुकार, नानक कह सुन रे मना कर कीर्तन होए उदार, राग गौड़ी माला महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पायो बाल बुद्ध सुख रे, हरख सोग हान मृत, दुख सुख चित संसार गुर मिले रहाओ, जाओ लो हाँ के सोचो चितवाओ, तौ लो दुखन परे, जाओ कृपाल गुर पूरा पेटिया, तौ आनंद सहजे, जेती सियानप कर्म हों किए, तेते बंद परे, जाओ साधु कर मस्तक धरयो, तब हम मुक्त पए, जाओ लो मेरो मेरो कर तो, तौ लो बिख घेरे, मन तन बुद्ध अर्पी ठाकर कहो, तब हम सहज सोए, जाओ

जन नानक तिन बल जात, गौड़ी महला पंजवा मांझ। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, आठ पहरे आराधी है पूर्ण सतगुर ज्ञान। रहाओ जित कट वसै पार ब्रह्म, सोई सुहावा थाओ, जम कंकर नेड़ न आवई, रसना हर गुण गाओ। सेवा सुरत ना जानिया, ना जापै आराद, ओट तेरी जग जीवना, मेरे ठाकर अगम आगाद। पय कृपाल गुसा

साधो मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अनस भागो रहाओ। सुख दुख दोनों सम कर जाना, और मान अपमाना, हर सोग ते रह अतीता, तिन जग तत् पछाना। उस्त निंदा दो त्यागे, खोजे

एक बिन से एक अस्थिर मन अचरज लख्यो न जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूर्त बिसराई। झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यों सुपना रहनाई। जो दिसे सो सगल बिनासे ज्यों बादर की शाई। जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहयो राम सरनाई। गौड़ी महला नामा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे। अहनिस मगन रह माया में कहो कैसे गुण गावे। रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों एह विद्या बंधावे। मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग देखता से उठतावे। भुगत मुक्त का कारण स्वामी मूड ताहे बिसरावे। जन नानक कोटन में को भजन राम को पावे। गौड़ी महला नावा साधो एहो मन गहयो ना जाई। चंचल तृष्णा संग बस्त है या ते थिर ना रहाई। रहाओ कठन क्रोध कठी के पीतर जेह सुध सब बिसराई। रतन ज्ञान सबको हिरलीना तासो कछना बसाई। जोगी जतन करत सब हारे गुनी रहे गुन गाई। जन नानक हर पय दयाला तो सब बिद बने।

पत तपुनीत दीन बंद हर शरण काहे तुम आवो, गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। तज अब महान मोह माया फुन भजन राम चित लावो, नानक कहत मुक्त पंथ एहो गुरमुख होए तुम पावो। गौड़ी महला नावा को माई भूल्यो मन समझावै, वेद पुराण साध मग सुन करो निमख ना हर गुण गावै रहाओ। दुर्लभ देहे पाए मानस की वृथा जन्म सिरावै, माया मोह महासंकट बानो तासो रुच उपजावै। अंतर बाहर सदा संग प्रभु तासो नेहो ना लावै, नानक मुक्ता ही तुम मानो जेकट राम समावै। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को एहो गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन औ बिखियन की सेवा, हरख सोग परसै जेह नहन सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब त्यों कंचन अर पैसा, उस्तत निंदा ए समझा कै लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए दे जे नाहन तेह तुम जानो ज्ञानी, नानक मुगता है तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तै बौरा, अहन से औद कटै नहीं जानै पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तय अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी, इन मैं कछ तेरो रे नाहन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी, निमख ना लीन पयो चरणन स्यो बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै, और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल पै भंजन शरण ताहे तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत ताको नाम ही है मो धर रे, पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावै कशु उपाओ मुक्त का कर रे, नानक कहत गाए करना मैं पव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआरेरी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। निद सद निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहा बिखमार, त्रिकुटी छूटी बिमल बजार गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया। रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पय सूहा रंग माया। नदर पई बिगठाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया, शब्द रवै मन हर स्यों लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया।

दृष्ट भई सुख आत्म धारा, तुझ बिन कोय न देखो मीत, किस सेवो किस देवो चीत, किस पूछो किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए, भगत करी रचो हरनाए, सिख्या दीख्या भोजन पाओ, हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भगतं सुख आत्म ध्याना, जोत पई ज्योति महे समाना, लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना, करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतर सियाना, नह पूलो नह परम भुलाना, कथो न कथनी हुक्म पिछाना, नानक गुरमत सहि समाना। गौड़ी गुआरे री महला पहला, मन कुंचर काया उद्याना, गुर अंकस सच शब्द निशाना, राज द्वारे शोभ सो मान, चतराई नह

नील अनिल अग्न इकठाई, जल निवरी गुर बूझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा घर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा, सागर डूगर निरपो वैसा। मुवे कहो कहो मारे कौन, निडरे कहो कैसा डर कवन, शब्द पछाने तिन्ने पौन। जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बुझिया तिन सहज पछानिया, देख विचार मेरा मन मानिया। कीर्त सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रया समाई, निज कर व्याप रया निठाई। औसत कर है केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत। गौड़ी गुआरे री महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए, मन वस दूता दुरमत दोए, मन मन गुरते एक होए। निर्गुण राम गुणे वस होए, आप निवार बिचारे सोए। रहाओ मन भूलो बहुचतै विकार, मन भूलो सिर आवै भार, मन माने हर एक अंकार। मन भूलो माया कर जाए, काम विरुद्धो रह ना ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए। गैवर हैवर कंचन सुतनारी, बहु चिंता पड़ चल हारी, जुए खेलन काची सारी, संपो संची पए विकार। हरक सोक उबे दरबार, सुख सहजे जपरदै मुरार, नदर करे ता मेल मिलाए, गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए। बिन नामै सब दुख निवास, मनमुख मूड माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास। मन चंचल तावत फुन तावै, साचे सूचे मैल न पावै, नानक हर गुण गावै। गौड़ी गुआरे री

ऐसा जग देखिया जुवारी, सब सुख मांगे नाम विसारी रहाओ। अदिष्ट दिसै ता कहया जाए, बिन देखे कहने बिरथा जाए। गुरमुख दिसै सह सुभाए, सेवा सुरत एक लिव लाए। सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार परोए। एक बिना झूठे मुक्त ना होए, कर कर करता देखे सोए। तृष्णा अग्नो शब्द बुझाए, दूजा परम सही सुभाए। गुरमती नाम हृदय वसाए, साची बाणी हर गुण गाए। तन मैं साचो गुर

काल जाल ब्रह्म अग्नि जारे जरा मरणगत गर्भ निवारे आप तरे पितरी निस्तारे सतगुर सेवे सो जोगी होए पैरच रह सो निरप होए जैसा सेवै तैसो होए नर नह केवल निरपौ अनाथ है नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने गुर कै शब्दे आप पछाणे साचै शब्द उदर निशाणे शब्द मरै तिस निज कर वासा आवै ना जावै चूकै आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दिसै सो आसन रासा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिलै उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिलै सुख होई दुख विसरै पावै सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अड़सठ मज्जन चरणै धूरी रहाओ नेत्र संतोखे एक लिव तारा जेवा सूची हर सारा सच करनी अवे अंतर सेवा मंत्र तासिया अलख भेवा जै जै देखो तैं तैं साचा बिन बूझे झगड़त जग काचा गुर समझावै सोजी होई गुरमुख विरला बूझे कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु पहे बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किसको देख करो अनपूजा संत हेत प्रभ तरपवन धारे आत्म चीनै सो तत् बिचारे साच हृदय सच प्रेम निवास प्रणवत नानक हम ता के दास गौड़ी महला पहला ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया वेद की बिपत पड़ी पछतानिया जय प्रभ सिमरे तही मन मानिया ऐसा गर्भ बुरा संसार है जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार रहाओ बल राजा माया अहंकारी जगन करे बो पार अफारी बिन गुर पूछे जाए प्यारी हरी चंद दान करे जस लेवै बिन गुरे अंत ना पाए अपेवै आप भुलाए आपे मत देवै दुर्मत हरनाक्ष दुराचारी प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी प्रहलाद उधारे कृपा धारी भूलो रावण मुगदिया चेत लुकी लंका लूटी लंका सी समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत सहस बाहो मद कीट मैं खासा हरनाक्षले नखो बिदासा दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमन संघारे रक्त बीज काल नेम बिदारे दैत संघार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दैत संघारे गुरमुख साच भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम ना जान्या करता सोई जन को दुख पचै दुख होई जन में जय गुर शब्द ना जानिया क्यों सुख पावै परम भुलानिया एक तिल भूले बहुर पछतानिया कंस केस चांडूर ना कोई राम ना चीनिया अपनी पत खोई बिन जगदीश ना राखै कोई बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए गुरमुख गुरमत धर्म तीर जहर नाए नानक नाम मिलै गुण गाए गौड़ी महला पहला चोवा चंदन अंक चढ़ावो पाठ पटंबर पहर हंडावो बिन हर नाम कहां सुख पावो क्या पहराओ।

लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड सिंगार कर अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी, दर कर मैला से सुखाली, एहनस फूल बिछावै माली, बिन हर नाम सो दे दुखाली, हैवर गैवर नेजे वाजे, लश्कर नेव खवासी पाजे, बिन जगदीश झूठे देवाजे, सिद्ध कहावाओ रिद सिद्ध बुलावाओ, ताज कुलै सिर छतर बनावाओ, बिन जगदीश कहां सच पावाओ, खान मलूक कहावाओ राजा, अबे तबे कूड़े है पाजा, बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा, हों मैं ममता गुर शब्द विसारी, गुरमत जानिया हृदय मुरारी, प्रणवत नानक शरण तुम्हारी, गौड़ी महला पहला, सेवा एक ना जान सियावरे, परपंच ब्याह त्यागै कवरे, भाई मिलै सच साचै सच रे, ऐसा राम भगत जन होई, हर गुण गाय मिलै मल धोई रहाओ, ऊंदो कवल सगल संसार है, दुर्मत यगन जगत पर जार है, सो उबरै गुर शब्द विचार है, प्रेंग पतंग कुंचर्यार मीना, मिर्ग मरै सह अपना कीना, तृष्णा राच तत नहीं बीना, काम चितै कामण हितकारी, क्रोध विनाशै सगल विकारी, पत मत खोवै नाम विसारी, पर कर चीत मन मुख डोलाए, गल जेवरी धंधै लपटाए, गुरमुख छूट सहर गुण गाए, ज्यों तन विधवा पर कौ देई, काम दाम चित पर वसेई, बिन पिर तृप्त ना कबहू होई, पढ़ पढ़ पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा, वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा, बिन रस राते मन बहु नाटा, ज्यों चात्रक जल प्रेम प्यासा, ज्यों मीना जल माहे उलासा, नानक हर रस पी तृप्तासा, गौड़ी महला पहला, हठ कर मरे ना लेखे पावे, वेश करे बहु पसम लगावे, नाम बिसार बहुर पछतावे, तू मन हर जियो तू मन सुख, नाम बिसार सह जम दुख रहाओ, चोवा चंदन अगर

वाद अहंकार नाही प्रमेला, मंदे पावे नाम सोहेला, दूजे पाए अज्ञान दुहेला। बिन दम के सौदा नहीं हाट, बिन बोए थो सागर नहीं वाट, बिन गुर सेवे काटे काट। तिसको वाहो वाहो जे वाट देखावे, तिसको वाहो वाहो जे शब्द सुनावे, तिसको वाहो वाहो जे मेल मिलावे। वाहो वाहो तिसको जिसका एहो जियो, गुर शब्दी मथे अमृत पियो, नाम वडाई तुद भाणे दियो। नाम बिना क्यों जीवा माए, आन दिन जपत रहो तेरी सरनाए, नानक नाम रते पत पाए, गौड़ी महला पहला। हाँ मैं करत पेखी नहीं जानिया, गुरमुख भगत विरले मन मानिया, हाँ हाँ करत नहीं सच पाई है, हाँ मैं जाए।

सुल्तान खान बादशाह नैरना, नामो पुले जमका दुख सहना, मैं तर नाम ज्यो राखो रहना। चौधरी राजे नहीं किसे मुकाम, साह मरे संचय माया दाम, मैं तन दीजे हरे अमृत नाम। रैयत महर मुकदम सिकदार है, निश्चल कोई ना दिसे संसार है, अफरियो काल कूड़ सिर मार है। निश्चल एक सच्चा सच सोई, जिन कर साजी तने सब गोई, ओ गुरमुख जापै ता पत होई। काजी शेख पेख फकीरा, वड्डे कहावे हम मैं तन पीरा, काल ना छोड़े बिन सतगुर की तीरा।

काल न जोहे सकै गुण गाए, नानक गुरमुख शब्द समाए। गौड़ी महला पहला, बोले साच मिथ्या नहीं राई। चाले गुरमुख हुक्म रजाई, रह अतीत सच्चे सरनाई। सच कर बैसै काल न जो है, मनमुख कौ आवत जावत दुख मोह। रहाओ अप्यो पियो अकथ कथ अकथ कथ रही है। निज कर बैस सहज कर लही है, हर रस माते उस कही है। गुरमत चालो निचल नहीं डोले, गुरमत साच सहज हर बोले। पीवे अमृत तत् विरोले, सतगुर दीखिया दीख्या लीनी। मन तन अर्प्यो अंतरगत कीनी, गत मित पाई आत्मचीनी। भोजन नाम निरंजन सार, परमहंस सच ज्योतिया पार। जय देखो तह एक ओंकार, रह निरालम एका सच करनी। परम पद पाया सेवा गुरचरणी, मन ते मन मानिया चूकी अहम ब्रह्मणी। इन बिद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया। प्रभ पाए हम अवर ना पारिया, साच महल गुर अलख लखाया। निहचल महल नहीं छाया माया, सासन दुखे परम चुकाया। जिनकै मन वसया सच सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई।

मन करहला गुरु गोविंद समाल रहाओ, मन करहला विचारिया मनमुख पाथिया महाजाल, गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम समाल। मन करहला मेरे प्यारिया सत्संग सतगुर पाल, सत्संगत लग हर त्याई है हर हर चल तेरे नाल। मन करहला वडभागिया हर एक नजर निहाल, आप छडाए छुट्टिया सतगुर चरण समाल। मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत समाल, गुर नानक नाम विखालिया हर दात करी दयाल। मन करहला तू चंचला चतराई छड विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया जम मारियाड़ा जमकाल। अंतर निदान मन करहले भ्रम पवै बाहर पाल, गुरपुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे न उतरै गुर सेवा शब्द समाल। हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल, वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम समाल। राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा अष्टपदियां एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब एहो मन मैं करत गुमाना तब यो बावर फिरत बेगाना, जब एहो हुआ सगल कीरीना ता तेर मैया कड़कड़ जीना। सहज सुहेला फल मस्कीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ, जब किस को एहो जान समंदा तब सगले इस मेले फंदा। मेर तेर जब इन्हें चुकाई तां ते इस संग नहीं बैराई, जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करना हर पिछाता तब इसनो नाही किश्ताता, जब इन अपनो बांध्यो मोहा आवै जाए सदा जमजोहा। जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा, जब इन किश कर्मा ने पेदा तब ते दुख डंड यार खेदा। जब इन एको एकी बुझिया तब ते इसनो सबके सूझिया, जब एहो तावै माया अर्थी न तृप्तावै न तसलाथी। जब इसते एहो यो जौला पीछे लाग चली उठ कौला, कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदिर में दीपक जलियो। जीत हार की सोजी करी तो इस कर की कीमत परी, करन करावन सब किश एक है आपे बुद्ध विचार बबेक है। दूर ना नेरे सब कै संगा सा सालाहण नानक हर रंगा, गौड़ी महला पंजवा गुर सेवा ते नामे लागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक पागा। तिसके हृदय रव्या सोए मन तन सीतन निचल होए, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे रहाओ। जास जपत पौ अपदा जाए तावत मनुआ आवै ठाए, जास जपत फिर दुख ना लागे जा जपत हम मैं पागे। जास जपत वसिया वै पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा। जास जपत एह तृष्णा बुझै, जास जपत हर दरगह सजै। जास जपत कोट मिटै अपराध, जास जपत हर होवै साध। जास जपत मन शीतल होवै, जास जपत मन सगली खोवै। जास जपत रतन हर मिलै, भवन न छोड़ै हर संग हिलै। जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जप सो सहज निवास। जास जपते अग्न पोहत, जास जपते काल ना जोहत। जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जप सगला धुलाता। जास जपत मुश्किल कछु ना बने, जास जप सुन अनहत तुने। जास जपते निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए। गुर सुख दृष्ट सब ऊपर करी, जिसके हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तन पूजन चूरा, कहो नानक जे सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा गुर का शब्द हृदय अंतर धारै, पंच जना स्यों संग निवारै। दस इंद्री कर रखै वास, ताकै आत्मै होए प्रगास।
ऐसी दृढ़ता ता कह होए, जां को दया मया प्रभ सोए रहाओ। साजन दुष्ट जां कै एक समान, जेता बोलन तेता ज्ञान है।

आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर का करी नमस्कार। कल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा।

नाम बिना जो पहरै खाए, ज्यो कूकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, ज्यो मृतक मिथ्या सिंगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। नाम त्याग करे अनकाज, बिरस जाए झूठे सब पाज। नाम सा

पिर बिन खरी निमाणी जियो, बिन पिर क्यों जीवा मेरी माई, पिर बिन नींद ना आवै जियो, कापड़ तन ना सुहाई, कापर तन सुहावै जा पिर भावै, गुरमती चित लाइयै सदा सुहागण जा सतगुर सेवे, गुर कै अंक समाई है, गुर शब्दे मेला ता पिर रावी, लाहा नाम संसारे नानक कामण नहा प्यारी, जा हर के गुण सारे, सा तन रंग माणे जियो, अपने नाल प्यारे, अहनस रंग राती जियो, गुरशब्द विचारे, गुरशब्द विचारे हम मैं मारे, इन बद मिलो प्यारे, सा तन सोहागण सदा रंग राती, साचै नाम प्यारे, अपने गुरमिल रहीऐ अमृत गहीऐ, दुबदा मारन वारे, नानक कामण हर वर पाया, सगले दुख विसारे,

राम नाम वा पाराग में अपारा गुरमती तन पाई है, सेवा सुरत भगते साची विचों आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे, आपे सतगुर आप शब्द जियो जो जुग भगत प्यारे। जो जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे, आपे भगती लाए आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए। आपे गुण दाता आप गुण काटे हृदय नाम वसाए, नानक सत बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा गुर की सेवा कर पिराजियो, हर नाम ते आए मन्यो दूर ना जाहे पिराजियो, घर बैठिया हर पाए। घर बैठिया हर पाए सदा चित लाए, सहजे सत सुभाए। गुर की सेवा खरी सुखाली जिसनो आप कराए। नामो बीजै नामो जमै नामो मन वसाए, नानक सच नाम वड्याई पूर्व लिखिया पाए। हर का नाम मीठा पिरा जियो जा चाख है चित लाए, रसना हरस चाख मुइये जियो आन रस साध गवाए। सदा हर रस पाए जा हर पाए, रसना शब्द सुहाए नाम ते आए सदा सुख पाए, नाम रह लिव लाए। नामे उपजै नामे बिरसै नामे सच समाए, नानक नाम गुरमती पाईऐ आपे लै लवाए। एह वडाणी चाकरी पिरा जियो तन छोड़ परदेस सिधाए, दूजै किनै सुख ना पायो पिरा जियो बिख्या लोभ लुभाए। बिख्या लोभ लुभाए परम पुलाए, ओह क्यों कर सुख पाए। चाकरी वडाणी खरी दुखाली आप विच धर्म गवाए। माया बंधन टिकै नाही खिन खिन दुख संताए, नानक माया का दुख तदे चूकै जा गुर शब्दी चित लाए। मन मुख मुग्ध गवार पिरा जियो शब्द मन नाम वसाए। माया का परम अंध पिरा जियो हर मार्ग क्यों पाए, क्यों मार्ग पाए बिन सतगुर पाए मन मुखे आप गणाए। हर के चाकर सदा सुहेले गुर चरणी चित लाए, जिसनो हर जियो करे कृपा सदा हर के गुण गाए। नानक नाम रतन जगाहा गुरमुखे आप बुझाए। राग गौड़ी संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन बैराग भया जियो क्यों देखा प्रभदाते, मेरे मीत सखा हर जियो गुरपुरख बिदाते। पुरखो बिदाता एक श्री तार क्यों मिले तुझे ओडीणिया, कर करे सेवा शीस चरणी मन आस दर्शन मानिया। सास आसना

चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जन धारी करना मैं समर्थ स्वामी घटघट प्राण आधारी प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम्य पारो सरण जोग समर्थ मोहन सर्व दुख बेदारो रोग सोग सब दुख बिनसै जपत नाम मुरारी बिनवंत नानक करो कृपा समर्थ सब कल तुहारी गुण गाओ मना अचत अविनाशी सब ते उच दयाला विश्वंपर देवन कौ एक सर्व करै प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारे सब किसै काल कंटक लो मोह नासै जी जाकै प्रभसै सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण कला बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी जब दीन दयाला गौड़ी महला पंजवा सुन सखिए मन उदम करेहा मनाए लय हर कंत मान त्याग कर भगत ठगौरी मोहै साधु मंत सखी वस आया फिर छोट ना जाई एह रीत भली भगवंत नानक जरा मरण पै नरक निवार पुनीत करै तिस जंत सुन सखिए एह पली बिनंती एहो मतांत पकाइय सहज सुभाए उपाद रहत होए गीत गोविंद गाइय कल कलेस मिटै भ्रम नासै मन चिन्हया फल पाइय पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर नानक नाम ते आइय सखी इच्छ करी नित सुख मनाई भ्रम मेरी आस पुजाए चरण प्यासी दर्श बैरागन पेखो थान सवाए खोज लहो हर संत जना संग समर्थ पुरख में लाए नानक तिन मिलिया सुरजन सुखदाता सेवट पागी माए सखी नाल वसा अपने नहा प्यारे मेरा मन तन हर संग हिलिया सुन सखिए मेरी नींद भली मैं अपनड़ा पिर मिलिया प्रम खोयो सांत सह स्वामी प्रगास भया कौल खिलिया वर पाया प्रभ अंतर जामी नानक सोहाग ना टलिया।

गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश, गुरुदेव मंत निरोदरा, गुरुदेव सांत सतबुद्ध, गुरुदेव सांत सतबुद्ध मूर्त, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित करा, गुरुदेव आद जुगा जो जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा।

नानक एको रवरया, दूसर होवा ना होग पौड़ी। ओवं साधु सतगुर नमस्कारं, आदमद अंत निरंकारं। आपे सुनो आपे सुख आसनो, आपे सुनतो आप ही जासनो। आपने आप आपे उपायो, आपे बाप आप ही मायो। आपे सूखमो आपे अस्थूला, लखी ना जाई नानक लीला। कर के

तंदे कहां ब्यापै ताहूं, जो एक छाड़ियन कतै न जाहूं, जा कह ही है दियो प्रभ नाम, नानक साध पूर्ण भगवान। सलोक अनक पेख यार ज्ञान ध्यान, मन अठ मिलो ना कोए, कहो नानक कृपा पही, भगत ज्ञानी सोए। पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बात, अनक जुगत शास्त्र कर पात, ज्ञानी सोए जा कह दृढ़ सो, कहत सुनत कह जोग ना हो। ज्ञानी रहे तो आज्ञा दृढ़ जा कह, उसन सीत समसर सब ता कह, ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी, नानक जाको कृपा धारी। सलोक आवन आए सृष्ट में, बिन बूझे फस टोर, नानक गुरमुख सो बुझ जाके पाग मथोर। पौड़ी या युग में एक को आया, जन्मत मोयो मोनी माया, गर्भ कुंट में उर तब करते, सास सास स्मृत प्रव रहते, उर्ज परे जो छोड़ छडाना, देवन हार मन बिसराना, तारो कृपा जसै गुसाई, एत उत नानक तिस बिसरो नाही। सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म, आज्ञा पिन ना कोए, आवन जाना तेह मिटै, नानक जेहे मन सोए। पौड़ी एउ जी बहुत गर्व वासे, मोह मगन मीठ जोन फासे, इन माया त्रैगुण बस कीने, आपन मोह कटे कट दीने, ए साजन कश कहो उपाया, जाते तरो बिखम ए माया, कर कृपा सत्संग मिलाए, नानक ताके निकट ना माए। सलोक किरत कमावन सो ब्या सुभ, कीने तिन प्रभ आप, पासे अपन हाँ हाँ करै, नानक बिन हर कहां कमात। पौड़ी एक है आप करावन हारा, आपै पापुन बिस्थारा, या जुग जिजत आपै लायो, सो सो पायो जो आप दिवायो, उवा का अंत न जाने को, जो जो करै सूफन हो, एक है ते सगला बिस्थारा, नानक आप सवार नहारा। सलोक राज रहे बनता बिनोद, कुसम रंग बिख सोर, नानक तेह सरनी परो, बिनस जाए मैं मोर। पौड़ी रे मन बिन हर जै रचा, तह तह बंधन पाए, जेह बिद कतू न छूटी है, सकते उकमाहे, हाँ हाँ करते कर मरत, ताको पारिया फार, प्रीत नहीं जो नाम सेओ, तऊ एऊ कर्म बेकार। बादे जम की जेवरी, मीठी माया रंग, भ्रम के मोहे ने बुझे, सो प्रभ सधू संग, लेखे गणतना।

भुवनहार हो सदयाया, वकंत न काहू पाया। कीट हस्त में पुरुष माने, परगट पुरख सब डाऊ सब ठाऊ जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर ते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए, जास रसन हर हर जस भनिए। आए बसै साधु कै संगे, अंदन नाम ते आवै रंगे। आवत सोजन नाम मै राता, जा को दया मैं बेदाता। एक आवन फिर जो ना आया, नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जपत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सहजे सोऊ। यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्मना आवै सोऊ, एक नाम ले मने प्रोऊ। यैया जन्म ना हारिया, गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया, जा कह ही अर एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुरपूर उपदेसया, नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरव तास कहो, जो अंत सहाई होए। एह बिख्या दिन चार छे, छाड़ चलो सब कोए। कां को मात पिता सोतिया, गृह बंता का संग न लिया। ऐसी संच जो बिनसत नाही, पसेती अपने कर जाही। साध संकर कीर्तन गाया, नानक ते ते बहुर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कही है नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खड़शास्त्र होए ज्ञाता, पूरक कुंभक रेच करमाता। ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, सोम पाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता। उवा ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंट चार दै दिस प्रमे, कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन, नानक लिख्यो लेख। पवड़ी कक्का का

गंगा ग्रासै काल तेहे जो सगत प्रभ कीन अनक जोन जन्मै मरै आत्म राम न चीन ज्ञान ध्यान ताहू को आए कर कृपा जे आप देवाए गणती गणी नहीं को छूटै काची गागर सर पर फूटै सो जीवत जह जीवत जपया प्रगट पाए नानक ने छपया सलोक चित चित बो चरणार बिंद ऊंद कवल बिग सांत प्रगट पाए आपै गोबिंद नानक संत मतात पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा तन तन ओवा दिन संजोग सुभागा चार कुंट दै दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो चार विचार बिन सो शब्द हुआ सा संगमन निर्मल हुआ चिंत बिसारी एक दृष्टेता नानक ज्ञान अंजन जे नेत्रा सलोक छाती शीतल मन सुखी संत गोबिंद गुण गाए ऐसी कृपा करो प्रभ नानक दास दसाए पौड़ी शशा शोहरे दास तुम्हारे दा दासन के पानी हारे शशा शार हो तेरे संता अपनी कृपा करो भगवंता शार सियान बहु चतराई संतन की मन टिक टिकाई शार की पुत्री परम गत पाई नानक जाको संत सहाई।

जा कौ साध कृपाल साधु संग तौ बसै जो अपन होहे दयाल। टोहे टाहे बहु पवनो बिन्ना मैं सुख नाहे टले जाम के दूत तेहे जो साधु संग समाहे बार बार जाऊं संत सदके नानक पाप बिना से कदके। सलोक ठाक ना होती तिन उदार जे होवो सो प्रसन्न जो जन प्रभ अपने करे नानक ते तन तन। पौड़ी ठठा मनुआ ठाहै नाही जो सगल त्यागे कै लपटाही ठहक ठहक माया संग मुवे उवां कै कुशल न कथू हुए। ठांड परी संतै संग बसिया अमृत नाम तहां जी रसिया ठाकर अपने जो जन पाया नानक वाका मन शीतलाया। श्लोक डंडौत बंदन अनकबार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। पौड़ी डड्डा डेरायो नहीं जय डेरा तै जान ओवा डेरा का संजमो गुर कै सबद पिछान। ओवा डेरा या डेरा कौ सरम कर कालै जाका तसु नहीं संचालै ओवा डेरा की सोमत जान है जाको दृष्ट पूर्ण भगवान है। डेरा निचल सच साध संग पाया नारक तेजन न डोलाया। श्लोक ताहन लागे धर्म राय किन न काल्यो बंद नानक उबरे जप हरी साध संग संबंध। पौड़ी टड्डा टूंडत कै फिराओ टूंडन या मन माहे संग तुहार प्रभसै बन बन का फिराए। तेरी टाहो साध संग अहं बुद्ध बिकराल सुख पावो सजे बसो दर्शन देखने हाल। तेरी जा मैं जा मरै गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रह हाँ हाँ आवे जाए। टहत टहत अब टह परे साजना सरनाए दुखे फाहे काटिया नानक लिए समाए। श्लोक जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत अणा होना तूने छुटै निकट न जाइयो दूत। पौड़ी अनाणा रण तेसी जिया आत्म जीतै कोए हम मैं अनस्यो लर मरै सो सो बादू होए। मणि मिटाई जीवत मरै गुरपूरे उपदेश मनुआ जीतै हर मिलै तेसु रतन वेश। अणा को जाने अपनो एक टेक आधार रहन दिन सो सिमरत रह सो प्रपुरख अपार। रेण सगल या मन करै एऊ कर्म कमाए हुक्मै बूझै सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पौ तिसै प्रभु मिलावै मोहे नानक परम पौ काटियै चूकै जमकी जो हो। पौड़ी तत्ता तास्यो प्रीत कर गुणित गोविंद राय फल पावै मन बांचते तब तुहारी जाए। त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाओ गत पावै मत होए प्रगास मैली पावै ठाओ। ताहू संग न तह चलै ग्रेजो बनै राज संत संग सिमरत रहो एह तुहारै काज। ताता कछु न होई है जो ताप निवारै आप प्रतपालै नानक हमै आपै माई बाप। श्लोक थाके बोबिद कालते तृप्त ना तृष्णा लाथ संच संच सागत मुवे नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनक बंच बल छल करो माया एक यो पाव। थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार मन कै कामना आवई अंत ओ सरवार। थित पावो गोबिंद भजाओ संतै की सिखले हो प्रीत करो सद एक स्यो या साचा स्नेहो। कारण करन करावनो सबदे कै हाथ जिजत लावो तित लगै नानक जंथ्या नाथ। श्लोक दस एक निहारिया सबके देवन हार सा सा सिमरत रह।

दिन दे तोट न आवई अगणत परे पंडार, दैन हार सब जीवन हारा, मन मूर क्यों ताहे बिसारा, दोष नहीं कहूं कहू मीता, माया मोह बंद प्रभ कीता, दर्द निवारे जाके आपे, नानक ते दे गुरमुख त्रापे, श्लोक धर जिया रे एक टेक तू, लाहे बिडानी आस, नानक नाम ते आई है कारज आवै रास पौड़ी, तद्दा तावत तौ मिटै संत संग होए बास, तुरते कृपा करो आप तौ होए मने प्रगास, तन साचा तेउ सच सहा, हर हर पूंजी नाम बिसाहा, तीरज जस सोभा तेह बनया, हर हर नाम श्रवण जे सुनया, गुरमुख जेह कट रहे समाई, नानक ते जन मिली वडाई, श्लोक नानक नाम नाम जप जपया, यंत्र बाहर रंग, गुरपूरै उपदेसिया, नरक नाहे साध संग पौड़ी, नन्ना नरक परै ते नाही, जाकै मंतन नाम बसाही, नाम निदान गुरमुख जो जपते, बिख माया मैं ना होए खपते, नन्ना कारना होता ता कहो, नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो, निद निदान हर अमृत पूरे, तै बाजे नानक अनहद तूरे, श्लोक पत राखी गुर पार ब्रह्म, तज प्रपंच मोह बेकार, नानक सो आराधी है अंत न पारावार पौड़ी, पप्पा परमित पार ना पाया, पतत पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु, अमृत नाम जपै मिल साधु, पर पज त्रोह मोह मिट नाई, जा कौ राखो आप गुसाई, पात साहो छत्र सिर सो, नानक दूसरे अवर ना को, श्लोक फाहे काटे मिटे गवन, फतेह पई मन जीत, नानक गुरते थित पाई, फिरन मिटे नितनीत पौड़ी, फफा फिरत फिर तू आया, दुर्लभ देहे कलजुग मैं पाया, फिरया ओसर चरै न हाथा, नाम जपो तो कटिया फासा, फिर फिर आमन जान ना होई, एक जपो जप सोई, करो किरपा प्रभ करने हारे, मिल लहो नानक बेचारे, श्लोक बिना सुनो तुम पार ब्रह्म, दीन दयाल गोपाल, सुख संपै बहु भोग रस ना।

एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल। पौड़ी अखर मैं तेरे भवन प्रभ तारे, अखर कर कर वेद विचारे, अखर शास्त्र सिमरत पुराना, अखर नाद कथन वखियाना, अखर मुक्त जुगत पै भरमा, अखर कर्म किरत सुच धर्मा, दृष्टमान अखर है जेता, नानक पा ब्रह्म निरलेपा। श्लोक हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती, उस्तत कहन ना।

जहां त्रिखा मन तुझिया करख तै नानक हर हर अमृत बरख भक्त जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हर औखद साधक मात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन कीनो दान मन तन रंग।

हर का नाम जनका रूप रंगो, हर नाम जपत कौ परै न भंगो। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालख जीना, हर तन जन कौ आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओठ सताणी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मद्दे फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास्त पितर थीवै। अग्न माहे होमत पुराण, कनक अश्व है वर भूम दान। न्यौली कर्म करै बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौपी होमै मैल न जावै। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करै दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबहू ना बिखिया टरै। जल धोवै बहु दे अनीत, शुद्ध कहां होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोटो पाव दरगै नहीं सजै। छूट सना ही

हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोलै सहज सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए मैं शोरे, जे को जन्म मरण ते डरे साजना की सरनी परे। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभिमान, आपस कहो जो जाने नीचा सो गनिय सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तन कड़कड़ कड़ चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल सृष्ट साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा। निरतन

अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछे पावै, एक वस्त कारण बिखोट गवावै। एक पी ना दे दस पी हर ले, तो मूड़ा कहो कहां करे। जिस ठाकर स्यो नाही चारा, ता कहो की जय सद नमस्कारा। जा कै मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन बूठा। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। अगंत साहो अपनी देरास, खात पीत बरते अनद उलास। अपनी अमान कश बाहुर साहो ले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी प्रतीत आप ही खोवे, बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी वस्तु तिस आगे रखे, प्रभु की आज्ञा मन मथे। उसते चौगन करे निहाल, नानक साहेब सदा दयाल। अनक पात माया के हेत, सर पर होवत जानिया नेत। बिरख की छाया स्यों रंग लावे, ओ बिन सहो मन पछतावे। जो दिसे सो चल नहार, लपट रहे होते आंध अंधार। बटाऊ स्यो जो लावे नेह, ताको हाथ ना आवे के हे। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई। मिथ्या तन तन कुटुंब सबाया, मिथ्या हो मैं ममता माया। मिथ्या राजोबन तन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती असो वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता। मिथ्या त्रोह मोह अभमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्त्र भगत साध की शरण, नानक जब जब जीवै हर के चरण। मिथ्या सर्वण पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्ब कौहिरै। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रे रूपाद, मिथ्या रसना पूजन अनस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार कौ तावै, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बेकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पै, सफल देह नानक हर हर नाम ले। बिरथी सागत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बिहाए, मेघ बिना ज्यो खेती जाए। गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यो किरपन के निरार्थ दाम। तन तन तेजन जह कट बस्यो हर नाओ, नानक ताके बल बल जाओ। रहत अवर कश अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंडलावत। जानन हार प्रभु परबीन, बाहर पेख न काहू पीन। अवर उपदेश आप ना करे, आवत जावत जन्म मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानक उन जन चरण पराता। करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। आपे आप करतन बेरा, किसे दूर जनावत किसे बजावत नेरा। उपाव सियानप सगलते रहत, सब कह जाने आत्म की रहत। जिस पावे तिस लय लड़ लाए, थान थनंतर रहया सुमाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमख निमख

बिनस जाए हमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी, जे प्रसाद शती अमृत खाहे, तिष्ठागर कौ रख मन माहे। जे प्रसाद

सुगंध तो तन लावे, तिसको सिमरत परम गत पावे। जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसे त्याय सदा मन अंदर। जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई है त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे, तिसे त्याग कत अवर लोभावे। जे प्रसाद सुख से सुई जय, मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जे प्रसाद तुझ सब को मन, मुखता को जस रसन बखाना। जे प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म। प्रभ जी जब तो दरगे मान पावे, नानक पासे ती कर जावे। जे प्रसाद आरो कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही। जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताके। जे प्रसाद तुझको ना पहुचे, मन सास सास सिमरो प्रभ ऊचे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानक ता की भगत करे हे। जे प्रसाद या पूखन पहरी जय, मन ते सिमरत क्यों वालस की जय। जे प्रसाद असव हस्त असवारी, मन तिस प्रभ को कबहू ना बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलख तना, राख परोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी

रखै जे प्रसाद करै पुन बहु दान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू चार बिहारी, तिस प्रभ को साथ साथ चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरौ सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कह। जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पेख है बिस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चले, जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परमगत पावे, जे प्रसाद सुख सहज समावे। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागौ, गुर प्रसाद नानक मन जागौ। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ता कहो जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावै साच, रे मन मेरे तू ता स्यो राच। जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जब जपै जब सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मति उत्तम होए। सर्व निधान प्रभ तेरी माया, आपो कछु न किन्हु लया। जित जित लावो तित लगे हर नाथ, नानक इनकै कछु ना हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुखी उज्जल होत, साध संग मर सगली खोत। साध कै संग मिटै अवमान, साध कै संग प्रगटै सुगयान। साध कै संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होतन बेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ महे समानी। साध कै संग गोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुलै। साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग न कतहूं तावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग के सो नहीं बैर, साध कै संग ना बींगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हौताप, साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बनियाई। साध कै संग न कबहूं तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बसता गोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थानी उच्चै, साधु कै संग मैल पहुँचै। साध कै संग दृढ़ै सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निधान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै। साधु कै संग सो तन पावै, जिस तन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुरदेवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं कशकाल, दर्शन भेटत होत निहाल। साध कै संग कलुख तहरै, साध कै संग नरक प्रहरै।
साध कै संग इहां उहां सुहेला, सा संग बिशरत हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, सा संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मनते बिसरै, सा संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्र मीठा, साधु कै संग कड़कड़ डीठा। सा संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा।

साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची। साध की शोभा साध बने आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एक बिन कोए। नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सुर सर्ब कौ सोख। ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान। ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, ज्यो बसदा को खोद को चंदन लेप। ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सही स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जलाओ। ब्रह्म ज्ञानी कै मन होय प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा। ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रव्याप करे। ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा। ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा। ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार। ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद त्यागत। ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संघेता। ब्रह्म ज्ञानी कै होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत। ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे।

ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर। ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाना है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाना है। ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता। ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता। ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ। ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। सलोक और तारे जो अंतर नाम, सर्व में पेख है भगवान। निमख निमख ठाकर नमस्कार, नानक हो अपरस सगल निस्तार। अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श। पारत्रे रूप ना पेख है नेत्र, साध की टहल संत संग हेत। कर्ण ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिखिया पर हरे, मन की बासना मन ते टरे। इंद्री जित पंच दोख ते रहत, नान कोट मदे को ऐसा अपरस। बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिसन की माया ते होए भिन्न। कर्म करत हो वै नेह कर्म, तिस बैसनो का निर्मल धर्म। काहू फल की इच्छा नहीं बाचै, केवल भगत कीर्तन संग राचै।

नानक हो बैसनो परम गत पावै। भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्यागै दुष्ट का संग। मन ते बिनसै सगला परम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म। साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै। भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत। हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै। सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम या तुम्हें सोदै। राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै। हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जोन ना आवै। वेद पुराण

बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चहवरना में जपे को नाम, जो जो जपे तिसकी गत होए, सासंग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उतारे, पस प्रेत मुग्ध पाथर को उतारे, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। काहू जूत कते ना पाइये धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसके मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन पाए तिन पाया, सदा निगट निगट हर जान, सो दास दर गए परवान। अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सोजी पर है, सगल संग आत्मयो दास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावे, जीवन मुक्त सोउ कहावे, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तै नहीं बियोग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानको पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर रख है तैसा तिन नाओ, आपे करन करामन जोग, प्रभ पावे सोई फन होग, पसरियो आप होए अंत तरंग, लखे ना जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक पहे निहाल, सलोक उस्तत करे।

अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बन प्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपिसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम ते आवे, नानक करते का अंत ना पावे, कई कोट पय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपेग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्ब कौ हिरै, कई कोट पर दुख ना करै, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट पर देश पर माहे, जित जित लावो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना। कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प्यो पाए, कई कोट पाथर बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरतर शास्त्र, कई कोट कीर्तन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिरजीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जख किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरै सब हूं ते दूर, नानक आप अलिप्त रहया परपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीव मरै, कई कोट बौजोनी फिरै, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काले थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया में चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किछ प्रभ कै हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संगतिन लवलागी, कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिनको मिल्यो प्रभ बनास, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक तेजन सदा तन तन, कई कोट खानी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट होए अवतार, कई जूत कीनो विस्तार, कई बार पसरियो पासार, सदा सदा एक एक अंकार, कई कोट कीने

प्रगास कई कोट तत् के बेते इसदा निहारा एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर पय सद सद ही जीवे कई कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सहि समावे अपने जन को सास सास समारे नानक होए परमेश्वर के प्यारे। सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहारण जल थल महियल सोए। अष्टपदी करण करावन करना जोग ज्योतिष पावे सोई होग खिन मैं थापो थप नहारा अंत नहीं किश पारा वारा हुक्मे तार अतर रहावे हुक्मे उपजय हुक्म समावे हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब मैरिया समाई। प्रभ पावे मानुख गत पावे प्रभ पावे ता पाथर त्रावे प्रभ पावे बिन सास ते राखे प्रभ पावे ता हर गुण पाखे प्रभ पावे ता पत तो धारे आप करे अपन विचारे दुहां सिरिया का आप स्वामी खेले बिकसे अंतर जामी जो पावे सो कार करावे नानक दृष्टि अवर न आवे कहो मानख ते क्या होए आवे ज्योतिष पावे सोई करावे इसके हाथ होए ता सब किश ले ज्योतिष पावे सोई करे अनजानत बिखिया मैं रचे जे जानते अपने आप बचे परमे पूला दे दस्तावे निमख माहे चार कुंट फिर आवे कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक तेज नाम मिले खिन मैं नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब निवाज जाका दृष्ट कशु न आवे तिस तत्काल देह दिस प्रगटावे जा को अपनी करे बख्शीस ताका लेखा ना गने जगदीस जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास अपनी बणत या बनाई नानक जीवे देख बड़ाई इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो ज्योतिष पावे सोई फुंथियो कबहू ऊंच नीच मैं बसे कबहू सोग हर खरख कबहू सोग हर खरंग हसे कबहू निंद चिंद व्यवहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावनहार कबहू निरत करे बहुपात कबहू सोए रह दिन रात कबहू महाक्रोध विकराल कबहू सर्व की हो त्रवाल कबहू होए बह बड़ राजा कबहू पेखारी नीच का साजा।

ज्यो प्रभ राखै तिवहि रहै, गुर प्रसाद नानक सच कहै। कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मौन धारी लावै ध्यान। कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू से साधक मो ज्ञान। कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन भरमे परमिया। नाना रूप ज्यो स्वांगी दिखावै, ज्यो प्रभ भावै तिवै नचावै। ज्योत पावै सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए। कबहू साध संग ते हो पावै, उस स्थान ते बहुर न आवै। अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश। मान तन नाम रते करंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान। सलोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया। नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसका अंतर राजा मान। सो नरक पाती होवत सवान, जो जाने मैं जो बनवंत। सो होवत बिष्टा का जंत, आप स्कौ कर्मवंत कहावै। जन्म मरै बह जोन परमावै, तन भूम का जो करै गुमान। सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै। नानक यहां मुक्त आगे सुख पावै। धनवंता होए कर गर्भावै, तृण समान का संग न जावै। बहु लश्कर मानख ऊपर करे आस, पल पीतर ताका होए विनाश। सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पसमंत। किसे ना बदै आप अहंकारी, धर्म राय तुस करे खुआरी। गुर प्रसाद जाका मिटे अभमान, सो जन नानक दरगह परवान। कोट कर्म करै हो तारे, श्रम पावै सगले बिरथारे। अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर फिर अवतार। अनक जतन करे आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह कौ कैसे गवै। आप स्कौ जो पला कहावै, तसे पलाई निकट न आवै। सर्व की रेण जाका मन होए, कहो नानक ताकी निर्मल सोए। जब लग जाने मुझ ते कश होए, तब इसको सुख नाही कोए। जब है जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय दे सजाए। प्रभ कृपा ते बंधन टूटै, गुर प्रसाद नानक हो छूटै। सहस खटे लख को उठतावै, तृप्त न आवै माया पाछै पावै। अनक भोग बिखिया के करै, नह तृप्तावै खप खप मरै। बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काज। नाम रंग सर्व सुख होए, वडभागी किसे प्राप्त होए। करण करावने आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप। करण करावन करने हार, इसके हाथ कहां विचार। जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए। जो किश कीनो सो अपने रंग, सब ते दूर सबहू कै संग। बूझै देखै करै बबेक, आपै एक आपै अनेक। मरै ना बिनसै आवै ना जाए, नानक सदी रहा समाए। आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ। आप कीनो अपन विस्थार, सब कछ उसका ओह करणै हार। उसते पिन कहो किश होए, थान थन अंतरे कै सोए। अपने चल तो

अवर्यो पाव सब मीत बिसारो, चरण कमल रत मैं उर धारो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवथ, एहो तन संचो होवो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाए, जिस तन कौ चार कुंट उठता वै, सो तन हर सेवा ते पावै, जिस सुख कौ नित बाछै मीत, सो सुख साधु संग परीत, जिस सोभा कौ करह पली करनी, सा सोभा पज हर की सरनी, अन क्यो पावी रोग ना जाए, रोग मिटै हर अवखद लाए, सर्व निदान मैं हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान, मन पर बोधो हर कह नाए, दै दिस्तावत आवै ठाए, ता कौ बिघन न लागे कोए, जा कर दै बसे हर सोए, कल ताती ठांडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन से पूर्ण होए आस, भगत पाए आत्म परगास, तित कर जाए बसे अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी, तत विचार कह जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवा गमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, इउ रतन जन्म का होए उधार, हर हर सिमर प्राण आधार, अन क्यों पाव ना छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए, संग ना चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना, सुत मीत कुटंब अर बंता, इनते कहो तुम कमन सनाथा, राज रंग माया विस्थार, इनते कहो कमन छुटकार, असहस्ती रथ असवारी, झूठा डंफ झूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना, नाम बिसार नानक पछताना, गुर की मत तू लेह आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल बिख जाहे, आप जपो अवरा नाम जपावो, सुनत कहत रहत गत पावो, सार पूत सत हर को नाओ, सहे सुबाए नानक गुण गाओ, गुण गावत तेरी उत्तर समैल, बिन सजाए हो मैं बिख फैल, होहे अचिंत बसे सुख नाल, सास ग्रह सार नाम समाल, छाड़ सियानप सगली मना, सा संग पावे सजतना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दर गै जयकार, सर्व निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख, एको जाप एको साला हे, एक सिमर एको मन आहे, एक सके गुण गाओ अनंत, मंतन जाप एक भगवंत, एको एक एक हर आप, पूर्ण पूर रहो प्रव्याप, अनक विस्थार एक ते पै, एक अराध प्राश्त गए, मन तन अंतर एक प्रभराता, गुर प्रसाद नानक एक जाता, सलोक फिरत फिरत प्रभ आया, परया तौ शरनाए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए, अष्टपदी जाचक जंजा चै प्रभदान, कर कृपा देवो हर नाम, साजना की मंग तूर, पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर, सदा सदा प्रभ के गुण गावो, सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो, चरण कमल स्यों लागे प्रीत, भगत करो प्रभ की नित नीत, एक ओट एको आधार, नानक मांगे नाम।

प्रभु की दृष्ट महासुख होए, हर रस पावे बिरला कोए, जिन चाखिया से जन त्रिपताने, पूर्ण पुरख नहीं डोलाने, सुब्र परे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साध कै संग, परे सरन आन सब त्याग, अंतर प्रगास अनदिन लिवलाग, वड भागी जपया प्रभ सोए, नानक नावरते सुख होए, सेव की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेव की नो सदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन पया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, इच पुन्नी सरदा सा पूरी, रव रहया सा संग हजूरी, जिसका साथ न लिया मिलाए, नानक भक्ति नाम समाए, सो क्यों बिसरै जे काल ना पानै, सो क्यों बिसरै जे किया जानै, सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया, सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया, सो क्यों बिसरै जे अग्न मै राखै, गुर प्रसाद को बिरला लाखै, सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै, जन्म जन्म का टूटा गांढ़ै, गुर पूरै तत है बुझाया, प्रभ अपना नानक जन त्याया, साजन संत करो एहो काम, आन त्याग जपो हर नाम, सिमर सिमर सिमर सुख पावो, आप जपो अवरह नाम जपावो, भगत पाए तरिय संसार, बिन भक्ति तन होसी शार, सर्व कल्याण सुख निद नाम, बूढ़ जात पाए विश्राम।

दयालो भगत वचन सदा कृपालो अनाथ नाथ गोबिंद गोपालो सर्व कटा करत प्रतपालो आदि पुरख कारण करतार पगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मनहीत हम निर्गुणी आर नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनक राज भोग वडियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत पली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास सलोक सर गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब आकार हो कछ ना दृटेता पाप उन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संक मात जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरक शोक कसै व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्म ता मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नान करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी ता बंद मोत कौ किस कौ गनी जब एक हर अगमे अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहे सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तरै तब कवन निडर कवन कत डरै आपन चलत आप करन हार नानक ठाकर अगमय अपार अविनाशी सुख अपने आसन तै जन्म मरण कौ कहां विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब आप गत्या गोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचरिया गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे अपने आप ही चर जा नानक अपने रूप आप ही उपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तै शल शिदर लगत कौ कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तै किसै भूख कवन त्रिपतावै करण करावण करण हार नानक करते का नहि सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला आपे परवीन तै वेद तेब कहा कुचीन जब अपने आप उतार है तो सगन अब सगन कहा विचार है जह अपन ऊच अपने आप नेरा तै कौन ठाकर कौन कहिये चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी का जानो आप जय अशाला शेदा भेद।

जह आप रचियो पर पंच आकार तेहु गुण मै कीनो विस्तार पाप उनते पई कहावत को नरक को सुर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल हम मैं मोह परम पै पार दुख सुख माने अपमान अनक प्रकार की ओ बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानके कै।

पूर्ण पूर रहे दयालो, सब ऊपर होवत कृपालो। अपने कर्तव्य जानै आप, अंतर जामी रहो ब्याप। प्रतपालै जियन बहु पांत, जो जो रचियो सोत सहत आत। जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक एक जानिया। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आसना बिरथी जाए। सेवक को सेवा बनयाई, हुकम बूझ परम पद पाई।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमर गोविंद मन अंतर की उतरै चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नान गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमुद दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजय सुन सुन अंध करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरै तिन कै साथे सरन योग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावताने एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवै आवन जान हर तन खाड़ चलै जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सात रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ ऊतम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख पने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण तां का दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत तां की बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल तां के कर्म सब ते ऊच तां की शोभा बनी नानक एह गुण ना।

प्रम कटिया नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा करनीत राम रतन मन तन बसै तज काम करो लो मीत। मरण मिटै जीवन मिलै बिनसा सगल कलेस आप तजो गोविंद भजो पाओ भगत परवेश। लाभ मिलै तोटा हिरै हर दरगै पतवंत राम नाम धन संचवै सातशाह भगवंत। उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। सलोक तीन व्यापै जगत को तुरिया पावै कोए नानक संत निर्मल पय जिनमन वसिया सोए पौड़ी। तृतीया त्रै गुण बिखै फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग ब्रह्म तो घणो सदा संगार मीच। हरख सोग सहसा संसार हाहो करत विहाए जिन किए तिस न जाननी चितवै अन क्यों पाए। आद ब्याद उपाद रस कबू न टूटै ताप पार ब्रह्म पूर्ण धनी न बूझै प्रताप। मोह परम बुढ़त कणो महा नरक मैं वास कर कृपा प्रभ राख लिहो नानक तेरी आस। सलोक चतर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजिया अवमान चार पदार्थ हिट सिद्ध भज नानक हर नाम पौड़ी। चतुर्थ चारे वेद सुन सो दियो तत विचार सर्व खेम कल्याण निद राम नाम जप सार। नरक निवारै दुख हरै टूटै अनक कलेस मीच हुटै जमते छुटै हर कीर्तन परवेश। पाओ बिनसै अमृत रसै रंग रते निरंकार दुख दर्द अपवित्रता नासै नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला होए नानक साधरवाल। सलोक पंच विकार मन में बसे राचे माया संग साध संग होए निर्मला नानक प्रभ कै रंग पौड़ी। पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो पर पंच कुसम बास बहु रंग कणो सब मिथ्या बलबंच। नह जापै नह बुझिए नह कछ करत विचार स्वाद मोह रस भेदियो अज्ञान रचियो संसार। जन्म मरण बहु जोन भ्रमण कीने कर्म अनेक रचन हार न सिमरियो माना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त नारंच नानक बिरले पाई जो नारचै परपंच। सलोक खट शास्त्री उच्चो कह अंत ना पारा वार भगत सोहै गुण गावते नानक प्रभ कै द्वार पौड़ी। खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथे अनेक उत्तम उच्च पार ब्रह्म गुण अंत ना जाने सेख। नारद मुनजन सुख ब्यास जस गावत गोबिंद रसगी दे हर स्यों भी दे भगत रचे भगवंत। मोह मान परम बिनसियो पाई शरण दयाल चरण कमल मंतन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिलै तोटा हिरै सा संग लिव लाए खाट खजाना गुण निधारे नानक नाम ते आए। सलोक संत मंडल हर जस कथै बोलै सत सुभाए नानक मन संतोखी है एक सिस्यों लिव लाए पौड़ी। सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मैं पाई है अंत ना पारावार। आप तजो गोबिंद भजो शरण भरो हर राय दुख हरै पव जल तरै मन चंदिया फल पाए। आठ पहर मन हर जपै सफल जन्म परवान अंतर बाहर सदा संग करने हार पछाण।
सो साजन सो सखा मीत जो हर की मत दे नानक तिस बलिहारण है हर हर नाम जपे सलोक आठ पहर गुण गाइए तजिए अवर जंजाल जम कंकर जो है न सकई नानक प्रभु दयाल पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल प्रगास सदा आनंद निर्मल रीत निरुद्र मंत सगल धर्म पवित्र इशनान समय उच्च बसेह ज्ञान हर हर भजन पूरे गुरसंग जप तरिए नानक नाम हर रंग सलोक नारायण ने सिमरियो मोहयो स्वाद बिकार नानक नाम बिसारे है नरक सुरग अवतार पौड़ी नौमी नवे शदर अपवीत हर नाम न जपै करत विपरीत पारत्रे रमै बकै साध निंद करन सुनही हर जस बिंद हिरै पर दर्ब उदर कै ताई अगना निवरै तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमै अभागे सलोक दह जस खोजित मैं फिरयो जत देखौं तत सोए मन बस आवै नानका जे पूरन कृपा होए पौड़ी दसवीं

मन में चितवै पूर्ण भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाई है, नानक हो संजम प्रभ कृपा पाई है। सलोक एको एक बखानी है, बिरला जाने स्वाद, गुण गोबिंद न जानिए, नानक सब विस्माद। पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बसकर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्ब जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे कठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, सब मैं पूर रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। सलोक दुर्मत हरि सेवा करी, पेटे साध कृपाल, नानक प्रभ सो मिल रहे बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान, हर अमृत पान करो साध संग, मंत्र पतासै कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सब को संतोख है, पंच पू आत्मा हर नाम रस पुख है, गुर पूरे ते एह निहचा उपाई है, नानक राम रमत फिर जो न आई है। सलोक तीन गुणा मैं व्यापिया, पूर्ण होत ना काम, पतो धारण मन बसै, नानक छूटै नाम। पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन मैं आयो, सुख सागर प्रभ निमख ना गायो, हर सो का दे कर बाध्यो, दीर्घ रोग माया आशा देओ, दिने बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौदह पवन, सगल व्याप्त राम, नानक ऊना देखिए पूर्णता के काम। पौड़ी चौदह चार कुंट प्रव्याप, सगल पवन पूर्ण प्रताप, दसे दिशा रव्या प्रभ एक, तरण्य आकाश सब मैं प्रपेख, जल थल बन पर्वत पाताल, परमेश्वर तै बसै दयाल, सूखम अस्थूल सगल भगवान, नानक गुरमुख ब्रह्म पिशान। सलोक आत्म जीता गुरमति, गुण गाए गोबिंद, संत प्रसादी भै मिटे, नानक बिनसी चिंद। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे, संतोख दिया गुरुदेव, मन तन शीतल शांत सहज, लागा प्रभ की सेव, टूटे बंधन बहु बेकार, सफल पूर्णता के काम, दुर्मत मिटी हम मैं छुटी, सिमरत हर को नाम, शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवा गवन, आप तरिया कोटा बस्यों, गुण गोबिंद प्रभ रवन, हर की टहल कमावनी, जपिए प्रभ का नाम, गुरपूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। सलोक पूरन कबो न डोलता, पूरा किया प्रभ आप, दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट। पौड़ी पूर्ण मां पूर्ण प्रभ एक, करण कारण समरथ, जी जंत दयाल पुरख, सब ऊपर जाका हथ, गुण निदान गोबिंद गुर, किया जाका होए, अंतर जामी प्रभ सुजान, अलख निरंजन सोए, पार ब्रह्म परमेश्वरो, सब जन नहार, संत सहाई शरण योग, आठ पहर नमस्कार, अकथ कथा न बुझिया, सिमरो हर के चरण, पतो धरण नाथ नाथ, नानक प्रभ की शरण। सलोक दुख बिन से सहसा गयो, शरण गही हर राए, मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाए। पौड़ी कोई गावे को सुने, कोई करे विचार, को उपदेश है को दृढ़ है, तिसका होए उधार,
किलबे काटै हुए निर्मला जन्म जन्म मल जाए हलत पलत मुखी उजला नै पो है तिसमाए सो सुरता सो बैसनो सो ज्ञानी तनवंत सो सूरा कुलवंत सोए जिन भजया भगवंत खत्री ब्राह्मण सूद वैस उदरै सिमर चंडाल जिन जान्यो प्रभ अपना नानक तसैरवाल गौड़ी की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला चौथा सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोए एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होए सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए नानक कृपा ते हर त्याई है गुरमुख पावै कोए महला चौथा हम मैं माया सब बिख है नित जग तोटा संसार लहा हर तन खटिया गुरमुख शब्द विचार हम मैं मैल बिख उतरै हर अमृत हर ओर धार सब कार्य तिन के सिद्ध है जिन गुरमुख कृपा तार नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मेले सृजनहार पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चा गोसाई तुदनो सब ते आईंदी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है जिन कीती तिस पार लंघाई गुरमुखा नो फल पाईंदा सच नाम समाई वड्डे मेरे साहिबा वड्डी तेरी वड्याई सलोक महला चौथा विण नावै होर सलाहना सब बोलन फिका साध मनमुख अहंकार सलाह दे हौ मैं ममतावाद जिन सलाहन से मरै खप जावै सब अपवाद जन नानक गुरमुख उबरे जप हर हर परमानाद महला चौथा सतगुर हर प्रभ दस नाम ते आई मन हरी नानक नाम पवित हर मुख बोली सब दुख पर हरी पौड़ी तू आपे आप निरंकार है निरंजन हर राया जिनी तू एक मन सच ते आया तिनका सब दुख गवाया तेरा श्री को नाही जिसनो लवै लाए सुनाया तो जेवड़ दाता तू है निरंजना तू है सच मेरे मन पाया सच्चे मेरे साहेबा सच्चे सच नाया सलोक महला चौथा मन अंतर हम मैं रोग है प्रम पूले मन मुख दुर्जना नानक रोग गवाए मेरे सतगुर साधु सजना महला चौथा मंतन रत्ता रंग स्यों गुरमुख हर गुण तास जन नानक हर सरनागति हर मेले गुरसाबास पौड़ी तू करता पुरखिया गम है किस नाल तू वड़ी है तुद जेवड़ होए सो आखी है तो जेहा तू है पड़ी है तू घट घट एक वरतदा गुरमुख पर गड़ी है तू सच्चा सब सदा खसम है सबदू तू चढ़ी है तू करै सो सच्चे होए सी तां कायत कड़ी है सलोक महला चौथा मैं मन तन प्रेम परम का अठे पहर लगान जन नानक कृपा धार प्रभ सतगुर सुख वसन महला चौथा जिन अंदर प्रीत परम की ज्यो बोलन तवै सुहान नानक हरे आपे जानदा जिन लाई प्रीत परन पौड़ी तू करता आपा पुल है पुलन विच नाही तू करै सो सच्चे भला है गुरशब्द बुझाही तू करण कारण समर्थ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद ते आही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छडाही सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठै सज्जन मिलिया जन नानक सुख सवन महला चौथा
सतगुर दाता दयाल है, जिसनों दया सदा होए। सतगुर अंदरों निर्वैर है, सब देखै ब्रह्म एक सोए। निर्वैरा नाल जे वैर चलाएंदे, तिन विचों तिष्टिया ना कोए। सतगुर सबना दा भला मनाएंदा, तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर नो जेहा को इच्छदा, तेहा फल पाए कोए। नानक करता सब के जानदा, जिदू किश गुजा ना होए। पौड़ी जिसनो साहिब वड्डा करे, सोई वड जानी। जे साहिब पावे तिस बख्स लए, सो साहिब मन पाणी। जे कोई उस दी रीस करे, सो मूढ़िया जानी। जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै, गुणिया खवखाणी। नानक सच्चा सच है, बो सच समाणी। सलोक महला चौथा। हर सत निरंजन अमर है, निरपौ निरवैर निरंकार। जिन जपिया एक मन एक चित, तिन लथा हो मैं पार। जिन गुरमुख हरिया राधिया, तिन संत जना जयकार। कोई निंदा करे पूरे सतगुरु की, तिसनो फिट फिट कहे सब संसार। सतगुर विच आप वरतदा, हर आपे रखन हार। तन तन गुरु गुण गावदा, तिसनो सदा सदा नमस्कार। जन नानक तिन कौ वारिया, जिन जपिया सृजनहार। महला चौथा। आपे धरती साजिया नु, आपे आकाश। विच आपे जन तो पाया नु, मुख आपे दे गिरास। सवे आपे आवरदा, आपे ही गुणतास। जन नानक नाम ते आए तू, सब किलवे कटे तास। पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चे भावै। जो तुद सच सलाह दे, तिन जम कंकर नेण न आवै। तिन के मुख दर उजले, जिन हर हिरदय सच्चा भावै। कूड़ यार पिशाहा सटियन, कूड़ हिरदय कपट महा दुख पावै। मोह काले कूड़ यारियां, कूड़ यार कूड़ो हो जावै। सलोक महला चौथा। सतगुर धरती धर्म है, तिस विच जेहा को बीजे, तेहा फल पाए। गुरसिखी अमृत बीजिया, तिन अमृत फल हर पाए। ओना हलत पलत मुख उजले, ओए हर दरगह सच्ची पैन आए। एक ना अंदर खोट, नित खोट कमावै। ओहो जेहा बीजे, तेहा फल खाए। जा सतगुर सराफ नदर कर देखै, सुभाव गीर सब उगड़ आए। ओए जेहा चितवै नित, तेहा पायन। ओए तेहो जेहे दईये बजाए। नानक दुही श्री खसम आपे वरतै, नित कर कर देखै चलत सवाए। महला चौथा। एक मन एक वरतदा, जित लगै सो थाए पाए। कोई गल्ला करे कनेरियां, जे घर वथ होवै साई खाए। बिन सतगुर सोझी ना पवै, हंकार ना विचों जाए। हंकारियां नो दुख भुख है, हथ तड़ै कर कर मंगाए। कूड़ ठगी गुजी ना रहै, मुलम्मा पाज लै जाए। जिस होवै पूर्व लिखिया, ते सतगुर मिलै प्रभ आए। जो लोहा पारस भेटिया, मिल संगत स्वर्ण हो जाए। जन नानक के प्रभ तू धनी, जो पावै तिवै चलाए। पौड़ी जिन हर हिरदय सेविया, तिन हर आप मिलाए। गुण की सांझ तिन स्यों करी, सब अवगुण सब जलाए। अवगुण विकण पलरी, जिस देह सो सच्चे पाए। बलिहारी गुरे अपने, जिन अवगुण मेट गुण प्रगटी आए। वड्डी वड्याई वड्डे की, गुरमुख आलाए। सलोक महला चौथा। सतगुर विच वड्डी वड्याई, जो वंदन हर हर नाम ते आवै। हर हर नाम रमत सो संजम, हर नामे ही तृप्तावै। हर नाम तान हर नाम दीबाण, हर नामो रख करावै। जो चितलाए पूजे गुरमूर्त, सो मन इच्छे फल पावै। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, तिस करता मार देवावै। फिर ओह वेला उस हथ ना आवै, ओह अपना बीजिया आपे खावै।
नरक कोर मोहे काले खड़िया जो तस्कर पाए गलावे। फिर सतगुर की सरनी पवे ता उबरे जा हर हर नाम ते आवे। हर बाता आख सुनाए नानको हर करते ए वै भावे। महला चौथा पूरे गुर का हुक्म न मन्ने ओह मनमुख अज्ञान मुठा बिखमाया। ओस अंदर कूड़ कूड़ो कर बुझे अनहोंदे झगड़े दईये ओस दे गल पाया। ओ गल फरोसी करे बहु तेरी उसदा बोलिया किसे ना पाया। ओह कर कर हंडे जो रन दुहागण ओस नाल मोह जोड़े ओस पी लक्षण लाया। गुरमुख होए सो अलिप तो वरतै उसदा पास छड गुर पास बह जाया। जो गुर गोपे अपना सो भला नाही पंचो ओन लाहा मूल सब गवाया। पहला आगम निगम नानक आग सुनाए पूरे गुर का बचन उपरे आया। गुर सिखा वडियाई पावे गुर पूरे की मन मुखा ओ वेला हथ ना आया। पौड़ी सच सच्चा सबदू वड्डा है सो लै जे सतगुर टिके सो सतगुर जे साहित्य आईंदा। सच सच्चा सतगुर एके सोई सतगुर पुरख है जिन पंजे दूत कीते वस छिके। जे बिन सतगुर सेवे आप गणाए दे तिन अंदर कूड़ फिट फिट मोए फिके। ओए बोले किसै ना भावनी मोह काले सतगुर ते चुके। सलोक महला चौथा हर प्रभ का सब खेत है हर आप किरसाणी लाया। गुरमुख बख्श जमाइया न मन मुखी मूल गवाया। सब को बीजे अपने भले नो हर भावे सो खेत जमाया। गुर सिखी हर अमृत बीजिया हर अमृत नाम फले अमृत पाया। जम चूहा किरस नित कुरकदा हर करते मार कढ़ाया। किरसाणी जमी भाव कर हर बोहल बख्श जमाया। तिनका काड़ा अंदेसा सब लायोन जिनी सतगुर पुरख ते आया। जन नानक नाम आरा दया आप तरिया सब जग।

किया। सब जन को आए करै रह रास, गुरपुरे की वड्डी वड्याई, हर वड्डा सेवा तुल सुख पाया। गुरपुरे दान दिया हर निचल, नित बक्से चढ़ै सवाया। कोई निंदक वड्याई देख ना सकै, सो करतै आप पचाया। जन नानक गुण बोले करते के, भगता नो सदा रखदा आया। पौड़ी तू साहेब अगम दयाल है, वरदाता दाना, तो जेवड़ मैं होर को दिस ना आवई। तू है सुगड़ में रह मन पाणा, मोह कुटुंब दिस आमदा, सब चल नहारा आवण जाना। जो बिन सच्चे होरत चित लाएं दे, से कूड़ियार कूड़ा तिन माणा। नानक साहित आए तू, बिन सच्चे पच पच मोए अजाना। सलोक महला चौथा। अगों दे सत पाओ ना दिचै, पिछों दे आख्या काम ना आवै। आद विच फिरै मनमुख विचारा, गली क्यों सुख पावै। जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की, सो कूड़ी आवै कूड़ी जावै। जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता, ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवै। ता अप्यो पीवै शब्द गुर केरा, सब काड़ा अंदेसा भ्रम चुकावै। सदा आनंद रह दिन राती, जन नानक अंदर हर गुण गावै। महला चौथा। गुर सतगुर का जो सिखिया खाए, सो पल के उठ हर नाम ते आवै। उद्यम करे पलके प्रभाती, इशनान करे अमृत सरन आवै। उपदेश गुरु हर हर जप जापै, सब किल विख पाप दोख लै जावै। फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावै, बहिंदियां उठदियां हर नाम ते आवै। जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर, सो गुर सिख गुरु मन पावै। जिसनो दयाल होवै मेरा स्वामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवरै नाम जपावै। पौड़ी जो तुद सच ध्यान दे, से विरले थोड़े। जो मन चित एक आराध ते, तिनकी बरकत खाहे असंख करोड़े। तुदनो सब ध्यान दी, से थाए पए जो साहेब लोड़े। जो बिन सतगुर से वे खांदे पैन दे, से मोए मर जमे कोड़े। ओए हाजर मिठा बोल दे, बाहर विस कड्डै मुख कोले, मन खोटे दईए विछोड़े। सलोक महला चौथा। मल जूई भरिया नीला काला, खेदो लड़ा तिन वे मुख, वे मुखे नू पाया। पास ना देई कोई बहन जगत मैं, गुह पढ़ सगवी मल लाए मन मुख आया। पराई जो निंदा चुगली, नो वे मुख करके भेजिया। ओथे पी मुह काला, दुहा वे मुखां दा कराया। तड़ सुनिया सबत जगत विच पाई, वे मुख सने नफरे पौली पौंदी। फावा होए कै उठ कर आया, अगे संगती कुड़मी, वे मुख रलना ना मिले। ता वोटी भतीजी फिर आण कर पाया। हलत पलत दो बह गए, नित भुखा कूके तिहाया। तन तन स्वामी करता पुरख है, जिन न्याओ सच बै आप कराया। जो निंदा करे सतगुर पूरे की, सो सच है मार पचाया। एहो अखर तिन आखिया, जिन जगत सब यो पाया। महला चौथा। साहिब जिसका नंगा भुखा होवै, तिसदा नफर किथों रज खाए। जे साहिब कै कर वथ होवै, सो नफर हथ आवै। अणहोंदी किथों पाए, जिसदी सेवा कीती फिर लेखा मंगियै। सा सेवा औखी होई, नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की। फिर लेखा मंगै ना कोई। पौड़ी नानक विचार है संत जानो, चार वेद कहंदे, भगत मुखे दे बोल दे, से वचन हो मंदे। प्रगट पहारा जापदा,
सब लोग सुनंदे सुख ना पाए मुगद नारो संत नाल खांदे ओए लोचन ओ ना गुणै नो ओए अहंकार सड़ंदे ओए विचारे क्या करे जा भाग तुर मंदे जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसे ना संदे वैर करे निर्वैर नाल धर्म न्याय पचंदे जो जो संत सरापिया से फिरै पवंदे पेड़ मुंडा हूं कटिया तिस डाल सुकंदे सलोक महला चौथा अंतर हर गुरु ते आईंदा वड्डी वड्याई तुस दित्ती पूरे सतगुरु कटै नाही एक तिल किसे दी कटाई सच साहेब सतगुरु कै वल है ता चख चख मरै सब लोक आई निंदका के मोह काले करे हर करता है आप वधाई ज्यों ज्यों निंदक निंद करै त्यों त्यों नित नित चढ़ै सवाई जन नानक हर यारा दया तिन पैरी आन सब पाई महला चौथा सतगुर सेती गणत जे रखै हलत पलत सब तिसका गया नित चहिया पाए चगू सुटे चखदा चखदा चढ़ पया नित्यो पाव करै माया तन कारण अगला तन पी उड़ गया क्या ओ खटे क्या ओ खावै जिस अंदर सहसा दुख पया निर्वैरै नाल जे वैर रचाए सब पाप जगतै का तिन सिर

देखो भाई एहो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिने अपने जोर सब आन निवाए, अपने भगतां की रख करे हर स्वामी, निंदका दुष्टां के मोह काले कराए, सतगुर की वड़ियाई ने चढ़ै सवाई, हर कीर्त भगत नित आप कराए, अंध नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए, गुरसिखा के मोह जले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए, पौड़ी तू सच्चा साहब आप है ससा हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ वणजारे थारे, सच सेवा सच वणंजल है गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहिब अलख है गुर शब्द लखारे, श्लोक महला चौथा, जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला, उस दे आखे है कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई, मुकट न सके उसदा काला भया, कर्म धरती शरीर कलयुग विच जिहा को बीजे तिहा को खाए, गल्लां उपर तपावस ना होई विस खादी तत्काल मर जाए, भाई वेखो न्याओ सच करते का जिहा कोई करे तिहा कोई पाए, जन नानक ओ सब सो जी पाई हर दर कियां बातां आग सुनाए, महला चौथा, हुंदे प्रतख गुरु जो विछड़े तनको दर ढोई नाही, कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाई, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित पंबल पूसे खाही, जिन गुर गोप्या अपना से लैंदे टहा फिराही, तिन की भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कूकाही, ओना दा आख्या को ना सुनै नित हौले हौल मराही, सतगुर की वड्याई वेख ना सकनी ओना अगै पिछे था ओ नाही, जो सतगुर मारे तिन जाए मिलै रहंदी खोंदी सब पत गवाही, ओए अगै कुश्ती गुर के फिटके जे ओस मिलै तस कुश्ट उठाही, हर तिनका दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, तुर करता आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक ना मारा तू तिस अपड़ को ना सकाही, नावे की वड्याई वड्डी है नित सवाई चढ़े चढ़ाही, महला चौथा, जे होंदे

और ओल कचोला गुरमुख जापै शब्द लिवलाए हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए ज्योत पावै सो करे कराया नानक वज

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़े आरा चित उदास। ओए वल छल कर चत कढ दे, फिर जाए बह कूड़ियारा पास। विच सच्चे कूम न गड़ई, मन वेखो को निर्जास। कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सच्चियार सिख बैठे सतगुर पास।

जन नानक का खसम वड्डा है, सबना दा धनी है। श्लोक महला चौथा। मनमुख मूलों भुलिया विच लभ लोभ अहंकार, झगड़ा कर दिया अंदन गुदरै शब्द ना करै विचार। शुद्ध मत करते सब हिर लई बोलन सब विकार, दिते कते ना संतोखी है अंतर दिसना बहु अज्ञान अंधार। नानक मन मुखा नालों तुट्टी भली जिन माया मोह प्यार। महला चौथा। जिन्ना अंदर दूजा पाओ है तिन्ना गुरमुख प्रीत ना होए, ओह आवै जाए पवाई है सुपने सुख ना कोए। कूड़ कमावै कूड़ उचरै, कूड़ लग्या कूड़ होए। माया मोह सब दुख है, दुख बिनसै दुख रोए। नानक तात लवै जोड़ ना आवई, जे लोचै सब कोए। जिन कौ पोतै पुन पया तिन्ना गुर सब दी सुख होए। पौड़ी महला पंजवा। नानक विचारै संत मुन जना, चार वेद कहंदे भगत मुखै ते बोल दे। से वचन हो मंदे प्रगट पहारै जाप दे, सब लोग सुन दे सुख ना पाएन मुग्ध नर संत नाल खहंदे। ओए लोचन ओना गुणै नो, ओए अहंकार सड़न दे। ओए विचारे क्या करै जा भाग तुर मंदे, जो मारे तिन पार ब्रह्म से किसै ना संदे। वैर करन निर्वैर नाल धर्म न्याय पचंदे, जो जो संत सरापिया से फिरै पवंदे। पेड़ मुडाहू कटिया तिस डाल सुकंदे। श्लोक महला पंजवा। गुरु नानक हर

हार गुण गुंफो मन माल हार सब मल पर हरी है नानक प्रीत मिल रहे पार ब्रह्म नर हरी है। श्लोक महला पंजवा नानक आए से प्रवान है जिन हर उठा चित गाली अल्प लालिया कम न आवै मित। महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूर्ण अगम विस्माद नानक राम नाम तन कीता पूरे गुर प्रसाद। पौड़ी तोहो न चली खसम नाल लब मोहे विगुते करतब करन भलेरिया मद माया सुते फिर जोन पवाईया नू जब मार्ग मुते कीता पाए ने अपना दुख सेती जुते नानक नाए विसारे आए सब मंदी रुते। सलोक महला पंजवा उठन दया बहन दया सवन दया सुख सोए नानक नाम सलाहे आए मन तन शीतल होए। महला पंजवा लालच अटिया नित फरै स्वार्थ करे ना कोए जिस गुर पेटै नानका तिसमन वसिया सोए। पौड़ी सबे वस्तु कौड़िया सच्चे नाओ मिठा साध आया तिन हर जना चख साधी डिठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मंत सह उठा एक निरंजन रव रहया पाओ दोया कुठा हर नानक मंगे जोड़ कर प्रभ देवै तुठा। सलोक महला पंजवा जाचड़ी सासार जो जा चंदी हेकड़ो गाली ब्याह विकार नानक तणीवी हुणिया। महला पंजवा नीहे जे विदा मन पछाणु विरलो थियो जो नहारा संत नानक पादर पदरो। पौड़ी सोई सेवो जियड़े दाता बख्शिंद किलविक सब विनाश होन सिमरत गोविंद। हर मार्ग साधु दसिया जपिए गुरमंत माया स्वाद सब फिकिया हर मन पावंद। त्याए नानक परमेसर जिन दित्ती जिंद। सलोक महला पंजवा वत लगी।

कहो कबीर एक ऐ काहे, साध संगत बैकुंठ आहे। गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाई, नैना देखत एहो जग जाई। लाज ना मरो कहो कर मेरा, अंत की बार नहीं कष्टेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली। चोवा चंदन मर्दन अंगा, सोतन जलै काठ कै संगा। कहो कबीर सुनो रे गुनिया, बिनसै गो रूप देखै सब दुनिया। गौड़ी कबीर जी अवर मुए क्या सो करी जै, तौ की जै जो अपन जी जै। मैं ना मरो मरबो संसारा, अब मोहे मिलियो है जिया वनहारा रहाओ। आ देही परमल मैं कंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा। कुवटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज पर है मतहारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म की

अब कहो राम कवन गत मोरी, तजी ले बनारस मत पही थोरी रहाओ। सगल जन्म से पुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया। बहुत बरस तब की आकाशी, मरण पया मगहर की बासी। काशी मगर संबिचारी, ओछी भगत कैसे उतरस पारी। कहो गुर गाज से।

सूर्य चंद करै जियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुखरा मैं होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत भाई, सांकत सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर

हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया। गौड़ी कबीर जी दे मुहार।

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचे ता प्रेम कै चाबक मारों। कहत कबीर पले असवारा, बेद कतेब ते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूक टलाए। एक दुख राम राय।

काको जरै काहे होए हान, नटवट खेलै सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे, नामै जोगत्या।

कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो वान। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर सुन।

दुचित्ते की दोए थून गिरानी मोह बलेंडा टूटा तिसना शान परी तारी उपर दुर्मत पांडा फूटा आंधी पाछे जो जल बरखे तह तेरा जन पीना कह कबीर मन पया प्रगासा उदय पान जब चीना गौड़ी चेती एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर जस सुने ना हर गुण गावै बात नहीं असमान गिरावै ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए जो प्रभ किए भगते बाहजो तिनते सदा डराने रही है रहाओ आप ना देहे चुरू पर पानी तह निंदे जे गंगा यानी बैठत उठत कुटलता चाल आप गए और नहूं कहल शाड़कु चर्चा यान न जाने ब्रह्मा हूं को कयो न माने आप गए और नहू खोवे आग लगाए मंदिर में सोवे अवर्ण हस्त आप है काने तिनको देख कबीर ले जाने राग गौड़ी बैरागण कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जीवत पितर ना मान।

कौन लाज बहारी, लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी, उठ चली पनिहारी। साहेब होए दयाल कृपा करे, अपना कार्य सवारे, ता सोहागण जानिए गुरशब्द विचारे। किरत की बांधी सफर है, देखो बिचारी, इसनो क्यों आखी है, क्या करे विचारी। पई निराशी उठ चली, चित बंद ना धीरा, हर की चरणी लाग रहो, पाए शरण कबीरा। गौड़ी जोगी कह जोग पल मीठा, अवरना दूजा पाई, रुंडत मुंडत एक है शब्दी, एक है सिद पाई। हर बिन परम पुलाने अंधा, जा पै जाओ आप छुटकावनो, ते बांधे बो फंदा रहाओ। जहते उपजी तही समानी, एह बिद बिसरी तब ही, पंडित गुणी सूर हम दाते, एक है बढ़म ही। जिसे बुझाए सोई बूझे, बिन बूझे क्यों रही है, सतगुर मिले अंधेरा चूकै। इन बिद माणक लही है, तज बावे दाहने बेकारा, हर पद दृढ़ कर रही है। कहो कबीर गूंगे गुड़खाया, पूछे ते क्या कही है। राग गौड़ी पूर्वी कबीर जी एको अंकार, सतगुर प्रसाद। जह कछ आहा तहां किश नाही, पाई तत्त नाही, इड़ा पिंगला सुख मन बंदे, ए अवगन कत जाही।

ज्ञानी त्यानी बहुपदेशी एहो जग सगलो तंदा कहे कबीर एक राम नाम बिनु या जग माया अंधा गौड़ी बारवी मन रे छड़ो परम प्रगट होए नाचो या माया के डांडे सूर के सन मुखरंते डरप सती के साचे पांडे डगमग छाड़े मन बौरा अब तो जरे मरे सद पाई ऐली नोहा संधौरा रहाओ काम क्रोध माया के लीने या बिद जगत बिगूता कह कबीर राजा राम ना छोड़ो सगल ऊते ऊंचा गौड़ी तेरवी फरमान तेरा सिराई ऊपर।

साहेब रोस्तरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा, ज्यो फूल जई है नार, कह कबीर गुलाम कर का, जी आए पावे मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं, प्रमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है, भाग बड़ो बपरा कोरे, तुम जो कहता हो नंद को नंदनो, नंद सो नंदन का कोरे, तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ, संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर, जा कै माई ना बापोरे। गौड़ी निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन कौ खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी रहाओ, निंदा होए ता बैकुंठ जाइए, नाम पदार्थ मने बसाइए, हृदय शुद्ध।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भय है, कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कहे कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सिद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहोरे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसै कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर मै रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले परगास उजारा। नौ कर देख जो कामन भूली, बस्तन उप ना पाई। कहत कबीर नवे कर मूसे, दसवें तत् समाई। गौड़ी माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना, शिव सनकाद जास गुण गावे, तास बसे मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, गगन मंडल मैं ध्याना ना। बिखै रोग पै बंधन भागे, मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ, दूसर मने ना आना ना। चंदन बास भय मन बासन, त्या कट्यो अभमाना ना। जो जन गाए त्या जस ठाकर, तास प्रभु है थाना ना। तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो, एक है एक समाना ना। कह कबीर गुर भेट महासुख, भ्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बाम नखरी, कबीर जियो की एक ओंकार। सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

मन ना रहावा, बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तस लखै ना कोई। अल्लाह लहो तव क्या कहो, कहो ताको पुकार, भटक बीज में रव रहो, जाको तीन लोक विस्तार। अल्लाह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदयो, पायो अपंग छेद। तुरक तरीकत जानिए, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने, कशवक पढ़िए ज्ञान। ओवंकार याद मैं जाना, लेखियार मेट ताहे ना माना, ओवंकार लख जो कोई, सोई लख मेटना ना होई। कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहां कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा। खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दे जस्तावा, खसमै जान खिमा कर रहे, ता होए निखियाओ अखै पदल है। गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न धरी काना, रह बिहंगम कतै ना जाई, अगै गह गै गगन रहाई। कग्गा घट घट निवसै सोई, घट फूटे घट कवै ना होई, ता कट माहे काट जो पावा, सो कट शाड अव कट कत्तावा। गंगा निग्रह स्नेहो कर, निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एह। चचा रचित चित्र है भारी, ता चित्र है चेतो चितकारी, चित्र बचित्र एह अवचेरा, ता चित्र चित्राक्ष तेरा, छछा एह छत्रपत पासा, छक के ना रहो उछाड़ के ना आसा। रे मानव मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़ कत्या बधावा, जज्जा जाओ तन जीवत जरावै, जोबन जार जुगत सो पावै, अस जर पर जर जर जब रह, तब जाए जोत उजारो लहै। चज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो चजक नाही परवाना, कत चक चख और न समझावा, चगर किए चगर ही पावा। नन्या निकट जो घट रहो, दूर कहां तज जाए, जा कारण जग ढूंढ आओ, नेरा पायो ताहे। टटा बिकट काट कट माही, खोल कपाट महल के ना जाही, देख या टल टल कतै ना जावा, रह लपट कट पर चौपावा, ठठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया तीरा। जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा, डड्डा डर उपज डर जाई, ता डर मह डर या समाई, जाओ डर डरे ता फिर डर लागे, निडर हुआ डर और होए भागे। टड्डा टेग टूंडे कत्याना, टूंडत ही टह गए पराना, चढ़ सुमेर टूंड जब आवा, जे गड़ गड़े हो सो गड़ में पावा।

बंधक होए बंद सुध लह। पब्बा पेद पेद मिलावा आपो पान परोसो आवा। जो बाहर सो पीतर जानिया पया भेद पुबत पहचानिया। मम्मा मूल गया मन मान मरमी होए सो मन को जान। मत कोई मन मिलता बिलमावे मगन पया ते सो सच पावे। मम्मा मन स्यों काज है मन सादे सिद्ध होए। मन ही मन स्यों कहे कबीरा मनसा मिलिया ना कोए। एहो मन शक्ति एहो मन सीओ एहो मन पंच तत् को जियो। एहो मन ले जाओ उन मन रह तौ तीन लोक की बात कह। यैया जाओ जान तौ दुर्मत हानो कर बस काया गाओ। रण रूतो पाजे नहीं सूरो थारो नाओ। रारा रस निरस कर जानिया होए निरस सो रस पहचानिया। एहरा छाडे ओ रस आवा ओ रस पिया ए रस नहीं पावा। लल्ला ऐसे ले मल्लावे अंत ना जाए परम सच पावे। आर जाओ तहां प्रेम लेवलावे तो अल लह लह चरण समावे। ववा बार बार बिसन सुमार ना आवे हार। बल बल जे बिसन तना जस गावे विसन मिले सब ही।

ससा सोनी का कर सो दो, घट परचा की बात न रो दो, घट परचा जो उपजय पाओ, पूर रया तैंतर भवन राओ। खखा खोज पर जो कोई, जो खोजै सो बहुर ना होई, खोज बूझ जो करे बिचारा, तो भव जल तरत ना लावे बारा। ससा सो सह सही सवार, सोई सही संदेह निवार, अल्प सुख छाड़।

तवै मन माना। है तो सही लखे जो कोई, तब ओही ओहो एहो ना होई। ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग, ता कारण व्यापै बो सोग। लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावै, सोग मिटै सब ही सुख पावै। खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अजू न चेते। अब जग जान जो मना रह, जह का बिचरा तह थिर लह। बावन अखर जोरे आन, सकिया ना अखर एक पछान। सत का शब्द कबीरा कह, पंडित हुए सो अन पैर है। पंडित लोग कौ व्यवहार, ज्ञानवंत कौ तत् विचार। जा कह जी जैसी बुध होई, कह कबीर जाने गा सोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग गौड़ी थिति कबीर जी की। श्लोक पंद्रह थिति सात वार, कह कबीर उर्वार ना पार। साधक सिद्ध लखे जो पेओ, आपे करता आपे देओ। थिति अमावस में आस निवारो, अंतर जामी राम सुमारो। जीवत पावो मोख द्वार, अनपौ शब्द तत् निजसार। चरण कमल गोबिंद रंग लागा, संत प्रसाद भय मन निर्मलो। हर कीर्तन में अंदन जागा रहाओ। परवा प्रीतम करो विचार, घट में खेल अकट अपार। काल कल्पना कदे ना खाए, आद पुरख में रह समाए। द्वितीया दोहकर जाने अंग, माया ब्रह्म रमै सब संग। ना उबड़े न करता जाए, अकुल निरंजन एक कह पाए। तृतीया तीने सम कर लिया वै, आनंद मूल परम पद पावै। साध संगत उपजै विश्वास, बाहर पीतर सदा प्रगास।

पंच है पंच तत् विस्तार, कनक कामनी जोग व्यवहार, प्रेम सुधा रस पीवै कोए, जरा मरण दुख फेर ना होए, छट खट चक्र शहु दिसताए, बिन पर चै नहीं थिरा रहाए, दुबदा मेटख मांग रहो, कर्म धर्म की सूल ना सहो, सात समकर बाचा जान, सात सतकर बाचा जान, आत्म राम लिहो प्रवान, छूटे संसा मिट जाहे दुख, सुन सरोवर पावो सुख, अष्टमी अष्ट तात की काया, ता मैं कुल महान निद्राया, गुरगम ज्ञान बतावै भेद, उल्टा रह अपंग अछेद, नौमी नवै द्वार कौ साध, बहती मनसा राखो बांध, लो मोह सब बिसर जाहो, जुग जुग जीवो अमर फल खाहो, दसवीं दैदस होए आनंद, छूटे परम मिलै गोबिंद, ज्योत स्वरूपी तात्यानूप, अमल ना मलन शाह नहीं धूप, एकादशी एक दिस्तावै, तो जोनी संकट बहुर नायावै, शीतल निर्मल पया शरीरा, दूर बतावो पाया नीरा, बारस बारह उगवै सूर, अहनिस बाजे अनहद तूर, देख्या तिहू लोक का पियो, अचरज पया जीव ते सीओ, तेरस तेरा यगम बखान, अर्ध उर्द बिच सम पहचान, नीच ऊच नहीं मान अमान, व्यापक राम सगल समान, चौद से चौदह लोक मजार, रोम रोम में बसे मुरार, सासन तो कातरो ध्यान, कथनी कथिया ब्रह्म ज्ञान, पुण्यो पूरा चंद आकाश, पसरे कला सहज प्रगास, आदि अंत मद होए रहे आथीर, सुख सागर में रमै कबीर, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत, बार बार हर के गुण गावो, गुरगम पे सो हर का पावो रहाओ, आदित करै भगत आरंभ, काया मंदर मनसा थंब, अहनस अखंड सो रही जाए, तो अनहद बेण सहज मह वाए, सोमवार सस्य अमृत चरै, चाखत बेख सगल बिखहरै, बाणी रोकिया रह द्वार, तो मनमत वारो पीवनहार, मंगलवारे ले माहीत, पंच जोर की जाने रीत, कर छोड़े बाहर जिन जाए, ना तर खरा रिसै है राए, बुधवार बुध करै प्रगास, हृदय कमल में हर का बास, गुरमिल दो एक समतरै, उद पंक लै सुदा करै, बृहस्पत बिख्या दे बिहाए, तीन देव एक संग लाए, तीन नदी तै त्रिवटी माहे, एनस कसमल तो वै नाहे, सुकृत सहारै, सो एह व्रत चढ़ै, अनदिन आप आप स्यों लड़ै, सुरखी पांचो राखै सबै, तो दूजी दृष्ट न पैसै कबै, थावर थिर कर राखै सोए, जोत दी वट्टी कट मैं जोए, बाहर पीतर पया प्रगास, तब हुआ सगल कर्म का नास, जब लग कट मैं दूजी आन, तौ लो महल न लाभै जान, रमत राम स्यों लागो रंग, कह कबीर तब निर्मल अंग,

राम कहत जन का स्नान तरे रहाओ। तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याद अजा मल तारियले। चरण बदक जन तेउ मुक्त भय, हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सोत जन बिदर सुदामा।

मेरी हरो बिपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तसवीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल।

राव प्रगास रजनी जथा गत जानत सब संसार परस मानो ताबोश होए कनक होत नहीं बार। परम परस गुर भेटी है पूर्व लिखत ललाट उन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट। भगत जुगत मत सत करी परम बंधन काट बेकार सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक विचार अनक जतन।

सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहब साचै नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड़ियाई, आग थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै काट ना जाए।

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मंत्रिप्त न आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमे माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चलतो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द भाखे, साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए। आसा महला पहला, जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हिरदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नवनिध पाई रहाओ। कर्म धर्म

हर वार जिन पाया धन नारी हर सिमराती शब्द विचारी आप तरै संगत कुल तारै सतगुर सेव तत् विचारै हमरी जात पत सच नाओ कर्म धर्म संजम सत भाओ नानक बख्शे।

एक हर राते रह समाई, एक धरन गगन में ठवर ना पावे, ऐसे कर्महीन हर नाम ना त्यावे। गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत भौजल, गुर शब्दी हर पार लंघाई रहाओ। जिनको आप लय प्रमेल, तिनको काल न सके पेल, गुरमुख निर्मल रह प्यारे, जो जल अंब ऊपर कमल निरारे। बुरा पला कहो किसनो कही है, दिसे ब्रह्म गुरमुख सच लही है, अकथ कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार। शास्त्र वेद सिमरत बहु भेद, अठसठ मजन हर रस रेद, गुरमुख निर्मल मैल ना लागे, नानक हिरदय नाम वड्डे तुर भागे। आसा महला पहला, निम्न उपाय लग

प्रभ दूर नाही प्रभ तू है। सब जग देखिया माया छाया, नानक गुरमत नाम ते आया। आसा महला पहला ते तुका, कोई भीखक भीख्या खाए, कोई राजा रहा समाए। किसी मान किसै अपमान, टाहयो सारे तरे त्यान। तुते वड्डा

मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंद, खान जीवन की बहुती आस, लेख तेरा एहसास गिरास, अहनिस अंधले दीपक दे, पाओ जल डूबत चिंत करे, कह सुने जो माने नाओ, हाँ बलिहारे ता कह जाओ, नानके करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा नाओ, दर गए बैसन होवे थाओ, जा तुद पावे ता दुम जाए, ज्ञान तन मन वसे आए, नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै, आसा महला पहला पंच पदे, दुध बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही, रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विण सेवा फल लागै, अखर बिरख बाग पोए चोखी, संचित पाओ करेही, सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही, जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही, दुख सुख पाना तेरा होवे, विण नावें जियो रह नाही, मत विच मरण जीवन होर कैसा।

पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामे पढ़ाओ, नामे चज्याचार रहाओ। बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, धोती टिक्का नाम संभाल, एथे उथे निभी नाल, विणना में होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया प्रजाल, एको वेखो अवरना पाल, चिन्ह तत् गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार। भोजन पाओ परम पाओ भागै, पाहरू राशब चोर ना लागै, तिलक लाट जाने प्रवेक, बुझे ब्रह्म अंतर बबेक, आचारी नहीं जीतया जाए, पाठ पढ़े ने कीमत पाए। अष्ट दसी चहु भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया, आसा महला पहला। सेवक दास भगत जन सोई, ठाकर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फनगोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, साच नाम गुर शब्द विचार, गुरमुख साचे साचा दरबार रहाओ। सच्चा अर्ज सच्ची अरदास, मैली खसम सुने सावास, सच्चे तख्त बुला

मन्ने हुक्म सो प्रगट जाए, सच निशाने ठाक ना पाए। पंडित पढ़े वखाणे वेद, अंतर वस्त ना जाने भेद। गुरबिन सोजी बूझना होए, साचा रव रह या प्रभ सोए। क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर्व विडाणी। नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण। आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली। उपजे बिनसै दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है। बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है। तिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे। फिर स्यो मिलना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवा। हर गुर किरपा ते नदर तही, आप विचार मार मन देखिया। तुम सामीत ना यवर कोई, जो तू राखै तिवही रहना। दुख सुख देवै करै सोई, आसा मनसा दो बिनास्त। त्रिगुण आस निरास पही, तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है। संसवा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हिरदय अलाख्या पेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाए सहज सेवा, आसा महला पहला। पंच पदे मोह कुटुंब मोह सबकार, मोह तुम तजो सगल वेकार। मोह अर भरम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ। सच नाम जा नव निध पाई, रोवै पूत न कल्पै माई। एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जमपुर जाहे। गुर दीख्या ले जब तब कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे। नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर स्यों रहै समाए। आसा महला पहला, आप करे सच अलाख्या पार। हां पापी तू बख्शन हार, तेरा पाणा सब किश होवै। मन अठकीचै अंत विगोवै रहाओ। मनमुख की मत कूड व्यापी, बिन हर सिमरण पाप संतापी। दुर्मत त्याग लाह किश लेवो, जो पजे सो लाख्या पेवो। ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलिया भगत दृढ़ाई। सगली सौंदी तोटा आवै, नानक राम नाम मन पावै। आसा महला पहला, चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी। जा पंच रासी ता तीर्थवासी, घुंगरू वाजै जे मन लागै। तौ जम कहां करे मोस्यो वागै रहाओ। आस निरासी तौ सन्यासी, जा जत जोगी ता कायां भोगी। दया दिगंबर देह बिचारी, आप मरै अवरा नै मारी। एक तू होर वेस बहु तेरे, नानक जाने चोज ना तेरे। आसा महला पहला, एक ना परिया गुण कर तोवा। मेरा सह जागै हो निष्पर सोवा, इओ क्यों कंत प्यारी होवा। सह जागै हो निष्पर सोवा रहाओ। आस प्यासी से जयावा, आगे से पावा के ना पावा। क्या जाना क्या होए गारी माई, हर दर्शन बिन रहन ना जाई रहाओ। प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी, गया सो जो बन धन पछतानी। अजय सो जागो आस प्यासी, पई ले उदासी रहो निरासी रहाओ। हम मैं खोए करे सिंगार, तव कामन से जरवै पतार। तव नानक कंते मन पावै, छोड़ वडाई अपने खसम समावै रहाओ। आसा महला पहला, पेव कड़ैतन खरी।

साहुरडे तन सच पिछाणिया सहज सुभाए अपना पिर जाणिया गुर प्रसादी ऐसी मत आवे ता कामण कंते मन भावे कहत नानक पै भाव का करे सिंगार सधी से जरवे पतार आसा महला पहला ना किसका पूत ना किसकी माई झूठे मोहे भरम भुलाई मेरे साहेब हाँ कीता तेरा

कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दो पदे तित सरवरण पहिले निवासा पानी पावक तनह किया पंकज मोह पग नहीं चाले हम देखा तह डूबियाले मन एक ना चेत समूढ़ मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिनकी सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पहला शे घर शे गुर शे उपदेश गुर गुर एको वेसानेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो पया सूरज एको रोता नेक नानक करते के तेवेस एको वंकार सतगुर प्रसाद आसा कर तीजा महला पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमाइश तेरी लख उठ राखे मान जा पत लेखे ना पवै ता सब निरा फुलकाम हर के नाम बिना जग तंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंदो वंदा रहाओ लख खटिए लख संजिए खाजे लख आवे लख जाहे जा पत लेखे ना पवे ता जी किथे फिर पाहे लख शास्त समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेखे ना पवे ता सबे को प्रमाण सच नाम पच उपजय कर्म नाम करतार अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच पाया तेल उन चानन ओह सोखिया चूका जम स्यों मेल लोका मत को फकड़ पाए लख मड़िया कर एक ठे एक रतीले पाहे रहाओ पिंड पतल मेरी केसो किरिया सच नाम करतार एथे उथे आगे पाचे एहो मेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावे आत्मराओ सच्चा नामन तांथी है जा एनस लागे पाओ एक लोकी होर शमशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबू ने खूट सना है आसा कर चौथा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवतिया दर्शन कहताई दुख पुख तीर्थ किए जोगी जति जुगत मैं रहते कर कर पगवे भेख पए तौ कारण साहेबा रंग रते तेरे नामा नेका रूपानंता कहन ना जाही तेरे गुण के ते रहाओ दर कर मैला हस्ती घोड़े छोड़वे लायत देश गए पीर पे कांबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पए सात सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमण लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेस पए खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत तोती कीनी तू साहेब हम सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी आसा कर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पीतर पंच गुप्त मन वासे थिर न रहे जैसे पवे उदासे मन मेरा दयाल से ती थिर न रहे।

एको ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर छेवा महला पहला मन मोती जे गहना होवे पौन होवे सूत तारी खिमा सिंगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी लाल बहुगुण कामन मोही तेरे गुण होहे नायवरी रहाओ हर हर हर कंठ ले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तेरे मद सूदन कर मुंदरी पहरे परमेसर पट ले तीरज तड़ी बंदावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राओ जब से जय आवे ता नानक भोग करे आसा महला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कहिए भाई जो किश करना सो कर रहया कीते क्या चतराई तेरा हुकम भला तुद पावे नानक ता को मिले वडाई साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बाहड़ हुक्म ना होई जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट ना सके कोई जे को दरगे बहुता बोले नौ पवे बाजारी सतरंज बाजी पक्के नाही कच्ची आवे सारी ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर सिफत कराए ता को कहिए बंदा आसा महला पहला गुर का शब्द मने मैं मुंदरा खिंथा खिमा हंडावो जो किश करे पला।

अमृत नाम ने रंजन पाया, ज्ञान काया रस भोगं रहाओ, शिव नगरी में आसन बैसाओ, कल्प त्यागी बादं, सिंगी शब्द सदा तुन सोहै, एनिस पूरे नादं, पत विचार ज्ञान मत डंडा, वर्तमान बेपूतं, हर कीर्त रह रास हमारी, गुरमुख पंथ अतीतं, सगली ज्योत हमारी समया, नाना वर्णा नेकं, कहो नानक सुन पार्थर जोगी, पार ब्रह्म लिवेकं, आसा महला पहला, गुड़ कर ज्ञान त्यान कर तावै, कर करनी कस पाई है, पाठी पवन प्रेम का पोचा, इतरस अम्यो चुआई है, बाबा मनमत वारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहनस बनी प्रेम लिवलागी, शब्दा नाहद गहया रहाओ, पूरा सच प्याला सहजे, तिसे पियाए जा को नदर करे, अमृत कावा पारी होवे, क्यामत शूशे पाओ तरे, गुर की साखी अमृत बाणी, पीवत ही परवान पया, दर दर्शन का प्रीतम होवे, मुक्त बैकुंठ करे क्या, सिफती रता सद बैरागी, जुवे जन्म न हार है, कहो नानक सुन पार्थर जोगी, खीवा अमृत धार है, आसा महला पहला, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता, जमकर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कर लाने, तै की दर्द न आया, करता तू सबना का सोई, जे सकता सकते कौ मारे, ता मन रोस ना होई रहा हो, सकता सीहो मारे पै वगे, खसमे सा पुरसाई, रतन विगाड़ वे गोए कुत्ती, मुया सार ना काई, आपे जोड़ वे छोड़े आपे, वेख तेरी वड़े आई, जे को ना उतराए वड़ा, साध करे मन पाने, खसमै नदरी कीड़ा आवै, जेते चुगै दाने, मरमर जीवै तक्ष पाए, नानक नाम वखाने, राग आसा कर दूजा महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर दर्शन पावै वडभाग, गुर कै सब सच्चै बैराग, खर दर्शन वरतै वरतारा, गुर का दर्शन अगमे अपारा, गुर कै दर्शन मुक्तगत होए, साचा आवसै मन सोए रहाओ, गुर दर्शन उदरै संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा, पाओ प्यारा लाए विरला कोए, गुर कै दर्शन सदा सुख होए, गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार सधार, निगुरे कहो गतकाई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर कै शब्द सुख सां शरीर, गुरमुख ता कहो लगे ना पीर, जम काल तिस नेण ना आवै, नान गुरमुख साज समावै, आसा महला तीजा, शब्द

तू कर कर वेख्या जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर दूजा महला चौथा। किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई। किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई। हमारा तड़ा हर रया समाई, हम हर सो तड़ा किया मेरी हर टेक। मैं हर बिन पख तड़ा अवर ना कोई, हम हर गुण गावा असंख अनेक। रहाओ जिन स्यो तड़े करे से जाहे, झूठ तड़े कर पछोताहे। थिर ना रहे मन खोट कमाहे, हम हर स्यो तड़ा किया जिसका कोई समर्थ ना है। एह सब तड़े माया मोह पसारी, माया कौलू जय गावारी। जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी। कलयुग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अपमान वधाए। जिसनो कृपा करे तिस सतसंग मिलाए, हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए। मिथ्या दूजा भाव तड़े बह पावै, प्राया शिद्र अटकलै अपना अहंकार वधावै। जैसा बीजै तैसा खावै, जन नानका हर तड़ा धर्म सब सृष्ट जिन आवै। आसा महला चौथा, हिरदय सुन सुन मन अमृत पाया। गुरबाणी हर लख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी पहना। एको रव रहया कट अंतर, मुख बोलो गुरे अमृत बैना। रहाओ मैं मंतन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड भाग। दूजे पाए पवै बिख माया, भाग ही नहीं सतगुर पाया। अमृत हर रस हर आप पियाया, गुरपुरे नानक हर पाया। आसा महला चौथा, मेरा मन तन प्रेम नाम आधार। नाम जपी नामो सुखसार, नाम जपो मेरे साजन सह।

रस गाए गुण परमानंदा रहाओ, हर गुण गावे हर जन लोगा, वड्डे भाग पाए हर निरजोगा, गुण में हूण माया मलतारी, विण गुण जन्म मोए हंकारी, शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मस्त तत कढ़िए। आसा महला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वड्डे भाग गुरमुख हर पावे, नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं धर नहीं काई, नाम रविया सब सास गिरासा रहाओ, नामै सुरत सुनी मन पाई, जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सिखाई, नाम हीन गए मूड नंगा, पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थापो थापे, नानक नाम देवे हरे आपे। आसा महला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस करसाई, हर हर नाम जप अंत तरंगा, जप जप नाम गुरमत सा लाही।

मन निर्मल हर हर गुण गाए, भय आनंद मिल साधु संग, अब मेरा मन कत ही ना जाए। तपत बुझी गुरसबदी माए, बिनस गयो ताप सब सहसा, गुरसीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ। तावत रहे एक एक बुझिया, आए बसे अब नहीं चल थाए। जगतो दारण संत तुम्हारे, दर्शन पेखत रहे अगाए। जन्म दोख परे मेरे पछ है अवपक।

खोइत खोइत सुनि एह सोए, साध संगत बिन तरियो ना कोए। जिस मस्तक भाग तिन सतगुर पाया, पूरी आसा मंत्र बताया।

बिगड़ रूप मन में अभिमान, सोहनी स्वरूप सुजान विचखन, अत गर्भ मोहे फाकी तू रहाओ, अत सूची तेरी पाकसाल, कर इशनान पूजा तिलक लाल, गली गर्भ मुख गोवै ज्ञान, सब बिद खोई लोभ सुवान, कापर पहरै पुगै भोग, आचार करै शोभा मै लोग, चोवा चंदन सुगंध विस्तार, संगी खोटा क्रोध चंडाल, अवर जोन

तीन सेर का दिहाड़ी मेहमान, अवर वस्त तुझ पाहे अमान। बिष्टा अस्त रक्त परे टे चाम, इस ऊपरले राख्यो गुमान। एक वस्त बुझे ता होवे पाक, बिन बुझे तू सदा ना पाक। कहो नानक गुर कौ कुरबान, जिसते पाइए हर पुरख सुजान। आसा महला पंजवा, एक तुके चौपदे। एक कड़ी दिनस मोको बहुत दिहारे, मन न रह कैसे मिलो प्यारे। एक पल दिनस मोको कवो ना बिहावे, दर्शन की मन आस कनेरी। कोई ऐसा संत मोको पर मिलावे रहाओ। चार पहर चौ जुगे समाने, रहन पई तब अंत न जाने। पंच दूत मिल परो विछोड़ी, भ्रम भ्रम रोवे हाथ पिछोड़ी। जन नानक हर दर्श दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया। आसा महला पंजवा, हर सेवा मैं परम निधान। हर सेवा मुख अमृत नाम, हर मेरा साथी संग सखाई। दुख सुख सिमरी तह मौजूद, जम बपरा मोको कहां डराई रहाओ। हर मेरी ओट में हर का तान, हर मेरा सखा मन माही दीबान। हर मेरी पूंजी मेरा हर वेसा हो, गुरमुख तन खट्टी हर मेरा साहो। गुर कृपा ते एह मत आवै, जन नानक हर कै अंक समावै। आसा महला पंजवा, प्रभ होए।

वेमो ताजा वे प्रवाहो, नानक दास कहो गुरवाहो, आसा महला पंजवां, हर रशोड़ होशै रसमाता, घर मैं वस्त बाहर उठ जाता, सुनी ना जाई सच अमृत काथा, रार करत झूठी लग गाथा रहाओ, वजो साहेब का से बिरानी, ऐसे गुनैशा देव प्राणी, तिस्यों लूक जो सदही संगी, कामना आवै सो फिर मंगी।

बिन हर नाम अवर सब थोरा, तृप्तिया गावै हर दर्शन मन मोरा रहाओ। भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल स्यों लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान। नानक कौ गुर दीख्या दीन, प्रभ अविनाशी घट घट चीन। आसा महला पंजवा, आनंद बिनोद भरे पुर धारिया, अपना कार्य आप सवारिया। पूर समग्री पूरे ठाकर की, भरपुर धार रही सोभ जा की रहाओ। नाम निधान

साथ पूरा गुरपुरी बणत बनाई नानक भगत मिली वड्याई आसा महला पंजवां गुर कै शब्द बनावो इहो मन गुर का दर्शन संचो हर तन उतम मत मेरे हृदय तू आओ त्यावो गावो गुण गोविंदा अत प्रीत मोहि लागै नाओ रहाओ तृप्त गावन साचै नाए अठ सठ मज्जन संत तू राए सब मैं जानो करता एक साध संगत मिल बुद्ध बिबेक दास सगल का छोड़ अभिमान नानक कहो गुर दीनो दान आसा महला पंजवां बुद्ध प्रगास पई मत पूरी ताते बिरसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर अंध कू मैं निकस्यो मेरे भाई रे रहाओ महा अगाह अग्न का सागर गुर बोहिथ तारे रतनागर दुत्तर अंध बिख मेह माया गुर पूरे प्रगट मार्ग दिखाया जाप ताप कश युगत न मोरी गुर नानक सरणागत तोरी आसा महला पंजवा ते पदे दो हर रस पीवत सद ही राता आन रसा खिन मैं लै जाता हर रस के माते मन सदा आनंद आन रसा मैं व्यापै चिंद हर रस पीवै अलमस्त मतवारा आन रसा सब हो छेरे रहाओ हर रस की कीमत कही ना जाए हर रस साधु हर सुमाए लाख करोरी मिले ना के हे जिसे प्राप्त तिस ही देहे नानक चाख पए बिस्माद नानक गुरते आया साद ईत ऊत कत छोड़ ना जाए नानक गीदा हर रस माहे आसा महला पंजवां काम क्रोध लोभ मोह मिटावै छुटकै दुरमत अपनी तारी होए निमाणी सेव कुमावै ता प्रीतम होवै मन प्यारी सुन सुंदर साधु बचन उधारी दुख भूख मिटै तेरो सहसा सुख पावै तू सुख मन नारी रहाओ चरण पखार करो गुर सेवा आत्म सुध बिख त्यास निवारी दासन की होए दास दासरी ता पावै सो बाहर द्वारी इही आचार इही ब्योहारा आग्या मान भगत होए तुम्हारी जो एहो मंत्र कमावै नानक सो भौजल पार उतारी आसा महला पंजवां दो पदे पही प्राप्त मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै नाकाम मिल साध संगत पज केवल नाम सरंजाम लाग पवजल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाओ जप तप संजम तरम ना कुमाया सेवा साध ना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच करमा सरन परे की रखो शर्मा आसा महला पंजवां तुझ बिन अवर नाही मैं दूजा तू मेरे मन माही तू साजन संगी पर मेरा काहे जी डराही तुमरी ओड़ तुम्हारी आसा बैठत उठत सोबत जागत विसर नाही तू सास गिरासा रहाओ राख राख सरन प्रव अपनी अग्न सागर विकराला नानक के सुखदाते सतगुरु हम तुमरे बाल गोपाला आसा महला पंजवां हर जन लीने

राम नाम गुण गाए, डाकी को चित कछु ना लागे, चरण कमल शरण आए, संत प्रसाद पय कृपाला, होए आप सहाय, गुण निदान नित गावे नानक, सहसा दुख मिटाए। आसा महला पंजवा, औख दिखायो हर को नाओ, सुख पाए दुख बिनसिया थाओ, ताप गया बचन गुरपूरे, अंध पया समटे विसूरे रहाओ, जी जंत सगल सुख पाया, पार ब्रह्म नानक मन त्याया। आसा महला पंजवा, बांशत नाही सो बेलाय आई, बिन हुक्मै क्यों बुझै बुझाई, ठंडी ताती मिट्टी खाई, ओहना बाला बूढ़ा पाई, रहाओ नानक दास शरणाई, गुरप्रसाद पौ पार पराई। आसा महला पंजवा, सदा सदा आया तुम परगास, सा संगत हर चरण निवास, राम नाम नित जप मन मेरे, शीतल सांस सदा सुख पावे, किल विख जाहे सबे मन तेरे रहाओ। कहो नानक जाके पूर्ण कर्म, सतगुर पेटे पूर्ण पार ब्रह्म, दूजे करके चौतीस। आसा महला पंजवा, जा का हर स्वामी प्रबेली, पीड़ गई फिर नहीं दुहेली रहाओ, कर कृपा चरण संग मेली, सुख सहज आनंद सुहेली, साध संग गुण गाया तोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा, काम क्रोध माया मत मद सर, ए खेलत सब जुए हारे, सत संतोख दया धर्म सच, ए अपने गृह भीतर वारे, जन्म मरण चुके सब पारे, मिलत संग पयो मन निर्मल, गुरपूरै लैखन मैं तारे रहाओ। सब की रेन होए रहे मनुआ, सगले दिसे मीत प्यारे, सब मध्य रव्या मेरा ठाकर, दान दे सब जी सुमारे, एको एक आप एक एक, एक है सगला पा सारे, जप जप होए सगल साथ जानो, एक नाम ते आए बहुत उधारे, गहर गंभीर बेअंत गुसाई, अंत नहीं किश पारा वारे, तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक, त्याए त्याए प्रभ को नमस्कारे। आसा महला पंजवा, तू बेअंत अवगत या गोचर, एहो सब तेरा आकार, क्या हम जंत करै चतराई, जा सबके तुझे मजार, मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार, देह सुमत सदा गुण गावा, मेरे ठाकर अगमे अपार रहाओ। जैसे जनन जठर मैं प्राणी, ओरेता नाम आधार, आनंद करे साह सा सुमार, ना पोहै अगनार, पर तन पर दारा पर निंदा, इनस्यो प्रीत निवार, चरण कमल सेवी दे अंतर, गुरपूरे कै आधार, गृह मंदिर महला जो दिसै ना कोई संगार, जब

राज मिलक जोवन ग्रह शोभा रूपवंत जोवानी बहुत दर्ब हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी आगे दरगह काम न आवे छोड़ चला अभिमानी काहे एक बिना चित लाई है उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर त्याई है रहाओ महाबचित्र सुंदर।

छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने, नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किसाने, संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा, मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा, गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा, राग आसा कर पंजवा महला पंजवा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जागे हर जन महामोहनी मगन, प्रे प्रीत प्राण को त्यागे विरला, चरण कमलया नूप हर संत मंत, को लागे साधु नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग वडभागे कृपा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर छेवा महला पंजवा, जो तुद भावे सो परवाना, सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा, अवर नाही रे कोई, तेरे जानो रसक।

साध संग रस पाया तृप्त अगाए सही जन पूरे सुख निदान हर गाया। जा कौ टेक तुम्हारी स्वामी ता कौ नाही चिंता, जा कौ दया तुम्हारी होई से सह पले भगवंता। भरम मोह त्रोह सब निकसे जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना हर नामे रंग समाया। आसा महला पंजवा जन्म जन्म की मल तोवे पराई, अपना कीता पावे इहां सुख नहीं दरगै ढोई, जमपुर जाए पचावै। निंदक अहला जन्म गवाया पहुंच ना साकै काहू बात, आगै ठौर ना पाया रहाओ। किरत पया निंदक बपरे का क्या ओ करे बिचारा, तहां बिकूता जै कोई ना राखै ओ किस पै करे पुकारा। निंदक की गत कतहु नाही खसमै एवै भाणा, जो जो निंद करे संतन की त्यों संतन सुख माना। संतां टेक

बाहर तोए अंतर मन मैला, दोए ठौरे अपने खोए, इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया, आगे मुसमुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साप न मरे, नाम न सुनई डोरा रहाओ। माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्र को तरकन लागा, तत् योग ना पिछाने। उगर गया जैसा खोटा टबुआ, नदर सराफा आया, अंतर जामी सब किस जाने, उसते कहां छिपाया। कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया, अपना हृदय देख समाले। आसा महला पंजवा, उद्यम करत हो वै मन निर्मल, नाचा आप निवारे, पंच जनाले वसगत रखे, मन में एकंकारे। तेरा जन निरत करे गुण गावे, रबाब पखाव जो ताल घुंगरू, अनहद शब्द बजावे रहाओ। प्रथमे मन परबोधे अपना, पाछे अवर रिझावे, राम नाम जप हृदय जापे, मुखते सगल सुनावे। कर संग साधु चरण पुखारे, संत तूर तन लावे, मन तन अर्प तरे गुरिया गै, सत पदार्थ पावे। जो जो सुने पेखे लाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख भागे, ऐसी निरत नरक निवारे, नानक गुरमुख जागे। आसा महला पंजवा, अदम चंडाली पई ब्राह्मणी, सूदी ते श्रेष्ठ आई रे, पाता लिया काशी सखनी, लहबर बूजी खाई रे। घर की बिलाई अवर सिखाई, मूसा देख डराई रे, आज कह वस गुर की नोके हर, कुकर तने लगाई रे रहाओ। बाई थूनिया शपर

मैं सब जग बौराया ना मिले सुख पाइए। क्या कहिए किस आख सुनाइए, जे कहना सो प्रभ जी पास, सब कुछ कीता तेरा वरत है सदा सदा तेरी आस। जे देहे वड़ियाई ता तेरी वड़ियाई, एते ओ तुझे ते आओ, नानके प्रभ सदा सुखदाते, मैं तान तेरा एक नाओ। आसा महला पंजवा, अमृत नाम तुम्हारा ठाकर, एहो महाराज जने पियो, जन्म जन्म चूके पह पारे, दुर्त बनास्यो परम बियो। दर्शन पेखत मैं जियो, सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर, मन तन मेरा ठार थियो रहाओ। तुमरी कृपा ते पयो साध संग, एहो काई तुम आप कियो, दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे, सहजे बिखिया पही खियो। सुख निदान नाम प्रभ तुमरा, एहो बनासी मंत्र लियो, कर कृपा मोहे सतगुर दीना, ताप संताप मेरा बैर गियो। धन सो मानस देही पाई, जित प्रभ अपने मिल लियो, धन सो कलयुग साध संकीर्तन गाई है, नानक नाम आधार ही हो। आसा महला पंजवा, आग्या ही ते सब किश हुआ, अवर के जाने ज्ञाना, भूल चूक अपना बारक बख्शिया, पार ब्रह्म भगवाना। सतगुर मेरा सदा दयाला, मोहे दीन कौ राख लिया, काट्या रोग महा सुख पाया, हरे अमृत मुख नाम दिया रहाओ। अनक पाप मेरे पर हरिया, बंधन काटे मुक्त पहे, अंध कूप महा कोरते, बहा पकर गुर काढ लिए। निरपव पय सगल पव मिटिया, राखे राखण हारे, ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे, कार्य सगल सवारे। गुण निधान साहिब मन मेला, शरण पया नानक सोहेला। आसा महला पंजवा, तू विसरै ता सब को लागू, चीत आवै ता सेवा, अवरना को दूजा सूजै, साचे अलख्या पेवा। चीत आवै ता सदा दयाला, लोगन क्या विचारे, बुरा भला को किसनो कहियै, सगले जी तुम्हारे रहाओ। तेरी टेक तेरा आधारा, हाथ दे तू रख, जिस जानी ऊपर दे।

ओरी रहाओ काम क्रोध अहंकार गाखरो संयम कौन छुटे ओरी सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो पवन लुटे ओरी दावा यगन बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी ऐसो सम्राथ वर्ण ना साका ताकि उपमा जात ना कहे ओरी काजर कोठ में पई नकारी निर्मल वर्ण बने ओरी महामंत्र गुरु हृदय बसेओ अचरज नाम सुने ओरी कर कृपा प्रभ नजर अवलोकन अपने चरण लगाई प्रेम भक्त नानक सुख पाया साधु संग समाई एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर सतवा महला पंजवा लाल चोलना तैं तन सोहया सुरजन पानी ता मन मोहया कमन बनीरी तेरी लाली कमन रंग तू पई गुलाली रहाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग तुम कर लालन तुम कर भाग तू सतवंती तू प्रधान तू प्रीतम पानी तू ही सुर ज्ञान प्रीतम पानी ता रंग गुलाल कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल सुन री सखी ए हमरी काल प्रभ आप सिंगार सुवारण हार रहाओ दूजा आसा महला पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोय मिली हदूर चुका निहोरा सखी सहेरी भरम गया गुर पिर संग मेरी रहाओ निकट आन प्रे से धरी कान कड़न ते छूट परी मंदिर मेरा सब दो जारा आनंद बिनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं पिर घर आया थिर सुहाग नानक जन पाया आसा महला पंजवा साज नाम मेरा मन लागा लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा बाहर सूत सगल स्यो मौला अलिप्त रहो जैसे जल मैं कौला रहाओ मुख की बात सगल स्यो करता जी संग प्रभ अपना धरता दीस आवत है बहुत पीहाला सगल चरण की हो मन राला नानक जन गुर पूरा पाया अंतर बाहर एक दिखाया आसा महला पंजवा पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संगरलिया कान कुंडलिया बस्त्र उडलिया से सुखलिया मन गर्बलिया रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर भगत बनाले तरन गडलिया रूप सुंदरिया अनक स्त्रिया हर रस बेनो सब स्वाद फिकरिया माया शलिया बिकार बिखलिया सरन नानक प्रपुरख दयालिया आसा महला पंजवा एक बगीचा पेड़ घन करिया अमृत नाम तहां मैं फलिया ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाईए पद निर्बानी आस पास बिखुआ के कुंटा बीच अमृत है पाई रे रहाओ सिंचन हारे एक माली खबर करत है पात पत डाली सगल बनस्पत यान जड़ाई सगली फूली निफल ना काई अमृत फल नाम जिन गुरते पाया नानक दास धरी तिन माया

सो स्थान बतावो मिता, जाके हर हर कीर्तन नीता रहाओ। शास्त्र वेद पापुन विचार, नरक स्वर्ग फिर फिर अवतार। ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार, कर्म करत जी को जंजार। प्रभ कृपा ते मन वसे आया, नानक गुरमुख तरी तिन माया। साध संग हर कीर्तन गाइए, एहो अस्थान गुरु ते पाइए। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा, घर में सुख बहर फन सुखा। हर सिमरत सगल बिनासे दुखा, सगल सुख जा तू चित आवै। सो नाम जपै जो जन तुद पावै। रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा, हर हर जपत तहै दुख डेरा। हुक्म बूझै सोई परवान, साध सब जा का निशान। गुर पूरे हर नाम दृढ़ाया, पंडित नानक मेरा मन सुख पाया। आसा महला पंजवा, जहां पठावो तै तै जाई। जो तुम देहो सोई सुख पाई, सदा चेरे गोविंद गुसाई। तुमरी कृपा ते तृप्त्या गाई। रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई, तो प्रसाद प्रभ सुखी बलाई। मन तन अंतर तुझे ते आई।

प्रभ की प्रीत पय सकल निदान, प्रभ की प्रीत हृदय निर्मल नाम, प्रभ की प्रीत सदशोभावंत, प्रभ की प्रीत समिटी है चिंत, प्रभ की प्रीत एहो पव जल तरै, प्रभ की प्रीत जमते नहीं डरै, प्रभ की प्रीत सगलोधार है, प्रभ की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग कूले, कहो नानक तेरे कुर्बान, संत ओट प्रभ तेरा तान, आसा महला पंजवा, भूपत होए कै राजक माया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर कौदीनी, काच गगरिया अंब मझरिया, गर्भ गर्भ उवाहू मैं परिया, रहाओ निरपव होयो भया निहंगा, चीतना आयो करता संगा, लश्कर जोड़े किया संबाहा, निकस्या फूकता होए गयो स्वाहा, ऊचे मंदर महल अरानी, हस्त घोड़े जोड़े मन पानी, वड परवार पूत अरतिया, मोहे पचे पच अंधा मुआ, जिने उपाहा तिने बिनाहा, रंग रसा जैसे सुपनाहा, सोई मुक्ता तिस राजमाल, नानक दास जिस खसम दयाल, आसा महला पंजवा, इन स्यों प्रीत करी कनेरी, जो मिलिए तो वदै वधेरी, गल चमड़ी जो छोड़ै नाही, लाग छटो सतगुर की पाई, जग मोहनी हम त्याग गवाई, निर्गुण मिलियो वजी वधाई, रहाओ ऐसी सुंदर मन कौ मोह, बाट काट करे बन बन जो है, मन तन लागै होए कै मीठी, गुरप्रसाद मैं खोटी डीठी, अगर उसके वड्डे ठगाऊ, छोड़ै नाही बाप ना माऊ, मेली अपने उनले बांधे, गुर कृपा ते मैं सगले साधे, अब मोरे मन पया आनंद, पौ चूका टूटे सब फंद, कहो नानक जा सतगुर पाया, कर सगला मैं सुखी बसाया, आसा महला पंजवा, आठ पहर निकट कर जाने, प्रभ का किया मीठा माने, एक नाम संतन आधार, होए रहे सब की पगशार, संत रहत सुनो मेरे भाई, ओवा की महिमा कथन ना जाई, रहाओ वर्तन जा कह केवल नाम, अनद रूप कीर्तन विश्राम, मित्र सत्र जा कह एक समान, प्रभ अपने बिनयावर ना जाने, कोट कोट अग कट नहारा, दुख दूर करन जी के दातारा, सूर बीर बचन के बली, कौला बपरी संती शली, ताका संग बांछै सुरदेव, अमोग दर्स सफल जां की सेव, कर जोड़ नानक करे अरदास, मोहे संत है टहल दीजै गुणतास, आसा महला पंजवा, सगल सुख जप एक है नाम, सगल धर्म हर के गुणगाम, महापवित्र साध का संग, जिस पेड़त लागे प्रभ रंग, गुरप्रसाद होय आनंद पावे, जिस मृत मन होए परगासा, ताकि गत में तो कहन ना जावे, रहाओ वर्त नेम मज्जन तिस पूजा, वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा, महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाके हर हर नाम, प्रगट्यो सो जन सगले भवन, पतत पुनीत ताकि पगरेन, जाको पेट्यो हर हर राय, ताकि गत में तो कथन ना जाए, आठ पहर कर जोड़ते आवाओ, उन साधा का दर्शन पावाओ, मोहे गरीब को लेहोर लाए, नानक आए पै सरनाए, आसा महला पंजवा, आठ पहर उदके सुनानी, सद ही भोग लगाए सुगयानी,
ਬਿਰਥਾ ਕਾਹੂ ਛੋਡੈ ਨਾਹੀ, ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਤਿਸ ਲਾਗੈ ਪਾਈ। ਸਾਲ ਗਿਰਾਮ ਹਮ

का सदा बैकुंठ, जहां का चवर सब ऊपर झूले, ताँ का धूप सदा पर फुले। काट काट संपट है रे जा का, अपग सभा संग है सादा। आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत। जैसे प्राप्त तिस ही लहना, संत चरण ओ आयो सरना। हाथ चढ़ो हर साल गिराम, कहो नानक गुर की नोदान। आसा महला पंजवा पंचपदा, जे पेंड लूटी पनिहारी, सो मार्ग संतन दूरारी। सतगुर पूरे साच कहया, नाम तेरे की मुक्ते बिथी। जम का मार्ग दूर रहया रहाओ, जह लालच जागाती काट। दूर रही ओ जनते बाट, जह आवटे बहुत घन साथ। पार ब्रह्म के संगी साध, चित्र गुप्त सब लिखते लेखा। भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा, कौ नानक जे सतगुर पूरा। वाजे ता कै अरहद तूरा, आसा महला पंजवा दो पदा। साधु संग सिखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम। बुझ गई तृष्णा हर जसे अगाने, जब जब जीवा सारंग पाने। करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जवेहर भरे भंडार। तोट ना आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जन कोए। नानक ताकी परम गत होए, आसा कर सतवा महला पंजवा। हर का नाम हृदय नित त्याई, संगी साथी सगल तराई। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ। तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। आसा महला पंजवा, साधु संगत तरिया संसार। हर का नाम मनै आधार, चरण कमल गुरदेव प्यारे। पूजै संत हर प्रीत प्यारे रहाओ, जा कै मस्तक लिखिया भाग। कहो नानक ता का थिर सोहाग,

की तपत हरी। पलो पयो प्रे कहया मान्या, सुख सहज इस घर का जान्या रहाओ। हौ बंदी प्रे खिजमतदार, ओह अवनासी अगमे अपार। ले पखा प्रे चलो पाए, पा गए पंच दूत लावे। ना मैं कुल ना सोभावंत, क्या जाना क्यों पानी कंत। मोहे अनी मोहे अनाथ गरीब ने मानी, कंत पकर हम कीनी रानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा, सुख सहज मेरा तन सोहागा। कहो नानक मोरी पूर्ण आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा।

उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना माया मोहे सबो जग बादा हमें पचय मन मुख मूह राखा गुर नानक बहां पकर हम राखा आसा महला पंजवा सर्व दुख जब बिसरै स्वामी इहां उहां कामना प्राणी संत तृप्तासे हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रिजाए रहाओ। संग होवत कौ जानत दूर सोजन मरता नित नित चूर जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे महाबिख्या मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरो एक गत पाईए गुर पूरे टेक आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया कल मल दोग सगल पर हरिया सोई दिवस भला मेरे भाई हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। साजन के पूजे पैर मिटे उपद्रय मन ते बैर गुर पूरे मिल झगड़ चुकाया पंच दूत सब वसगत आया जिस मन वसया हर का नाम नानक ते सुपर कुर्बान आसा महला पंजवा गाव लेहे तू गावन हारे जी पिंड के प्राण आधारे जा की सेवा सर्व सुख पावे अवर काहू पह भव ना जावे सदा आनंद आनंदी साहेब गुण निधान नित नित जापिए बलिहारी ते संत प्यारे जिस प्रसाद ब्रह्मन वासिए रहाओ। जा का दान निखूट नाही पली पांत सब सह सुमाही जा की बख्शना मेटै कोई मनवा साई है साचा सोई सगल समग्री ग्रह जा कै पूर्ण प्रभ के सेवक दुख ना चूर्ण ओट गही निरपौ पद पाई है सास सास सो गुणित गई है दूर ना होई कतहू जाई है नजर करे ता हर हर पाई है अरदास करी पूरे गुरपास नानक मंगे हर तन रास आसा महला पंजवा प्रथमे मिटिया तन का दुख मन सल का होवा सुख कर कृपा गुर दीनो नाओ बल बल ते सतगुर को जाओ। गुर पूरा पायो मेरे भाई रोग सोग सब दुख विनासे सतगुर की शरणाई रहाओ। गुर के चरण हृदय वसाए मन चिंतत सगले फल पाए अग्न बुझी।

मान बंधन काटो सेवक कर राखे अमृत बानी रसना चाखे वडे भाग पूज गुर चरना सगल त्याग पाई प्रभ सरना गुर नानक जा को भया दयाला सोजन हो वासदा निहाला आसा महला पंजवा सतगुर साचे दिया भेज चिर जीवन उपजया संजोग उदरै माहे आए किया निवास माता कै मन बहुत बिगास जम्या पूत भगत गोविंद का प्रगटिया सब मैं लिखिया तुरका रहाओ दसी मासी हुकुम बालक जन्म लिया मिटिया सोग महा आनंद थिया गुरबाणी सखी आनंद गावै साचे साहेब कै मन भावै वदी वेल बहु पीड़ी चाली धर्म कला हर बंद बहाली मन चिंदिया सतगुरु देवाया पय अचिंत एक लिव लाया ज्यो बालक पिता ऊपर करे बहुमान बुलाया बोले गुर कै पाण गुज्जी छन्नी नाही बात गुर नानक तुठा कीनी दात आसा महला पंजवा गुर पूरे राख्या दे हाथ प्रगट भया जन का प्रताप गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई जी की अरदास गुरु पह पाई रहाओ शरण परे साचे गुरदेव पूर्ण होई सेवक सेव जियो पिंड जोबन राखे प्राण कहो नानक गुर कौ कुर्बान आसा कर अठवां का

जिस गुर पूरा भेड़ सी सो चलै रजाए, चतराई सियाण पाक तै कामना आई है, तुठा साहेब जो देवै सोई सुख पाई है, जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा, आसा महला पंजवा सर्व सुखा मैं पालिया, हर जेवड़ ना कोई गुर तुठे ते पाई है, सा साहब सोई बलिहारी गुरे अपने सा सतकुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा एहो की जैदाना, रहाओ पागठ सच्चा सोए है जिस हर तन अंतर, सो छूटे महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर, गुर की महिमा क्या कहा गुर बिबेक सतसार, ओह आद जुगादी जुगह जुग पूरा परमेसर, नाम ते आवो सद सदा हर हर मन रंगे, जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे, आसा महला पंजवा साई अलख्या पार पोरी मन वसै, दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै, हाउ मन्या कुर्बान साई अपने, होवे अंधकणा मन तन जापने, रहाओ बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धणी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी, नैन पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई, बेद कतेब संसार हब्बा हूं बाहरा, नानक का पात साहो दिसै जाहरा,

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाई संत पेखे सदा हजूर, नाम बिहू नड़िया सिमरन में सूर विसूर। दास दा सतन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पास

मन तन होए निहाल तुम संग भेटिया, सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ। जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिन खे, जिन मन उठा आप पूरे भगत से, जिसनों मन्ने आप सोई मानिए, प्रगट पुरख प्रवान।

आसा महल्ला पंजवा पूर रया सर्ब ठाए हमारा खसम सोए एक साहेब सर छत दूजा नाहे कोए ज्यो पावै त्यों राख राखण हारिया तुझ बिन अवर ना कोए नदर निहारिया रहाओ प्रतपाले प्रव आप कड़कड़ सारी है जिस मन उठा आप तिस ना विसारी है जो किश करे सो आप अपन भाणिया भगता का सहाई जुग जुग जाणिया जप जप हर का नाम कदे ना झूरिया नानक दर्श प्यास लोचा पूरी है आसा महला पंजवा क्या सोवै नाम विसार गाफल गह लिया किती इत दरियाए वंजन महिंदिया बोहे थड़ा हर चरण मन चढ़ लंगिया आठ पहर गुण गाए साधु संगिया रहाओ भोगै भोग अनेक विणना मैं सुनिया हर की भगत बिना मर मर रुनिया कपड़ भोग सुगंध तन मर्दन मालना बिन सिमरन तन शार सर पर चलना महा बिखम संसार विरले पेखिया छूटन हर की सरण लेख नानक लेखिया आसा महला पंजवा कोई न किसी संग काहे गरबी है एक नाम आधार पौजल दरबी है मैं गरीब सच टेक तू मेरे सतगुर पूरे देख तुम्हारा दर्शनो मेरा मन धीरे रहाओ राज माल जंजाल काज ना कितै गनो हर कीर्तन आधार निहचल एहो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निदान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जी अरे आसा महला पंजवा जे सिमरत दुख जाए सह सुख पाईऐ रैन दिनस कर जोड़ हर हर त्याईऐ नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोए सर्ब रहया भरपूर सच्चा सच सोए रहाओ अंतर बाहर संग सहाई ज्ञान योग तिसे अराध मना विनाशै सगल रोग राखन हारिया पार राखै अगन माहे शीतल हर हर नाम सिमरत तप्त जाए सुख सहज आनंद घना नानक जन तूरा कार्ज सगले सिद्ध पए भेटिया गुरपूरा आसा महला पंजवा गोबिंद गुणी निधान गुरमुख जानिया होए कृपाल दयाल हर रंग माणिया आवो संत मिला हर कथा कहानियां अंदर सिमरो नाम तजलाज लुकानियां रहाओ जप जप जीवा नाम होवै अनद कणा मिथ्या मोह संसार झूठा विणसना चरण कमल संग ने हो किने विरले लाया तन सुहावा मुख जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई आसा महला पंजवा आवहो मीत एकत्र होए रस कस सब पुंच है अमृत नाम हर हर जप है मिल पापा मुंच है तत विचारो संत जनो ताते बिघन ना लागे खीन पए सब तस्करा गुरमुख जन जागे रहाओ बुद्ध गरीबी खर्च लै हो हम मैं बिख जा रहो साचा हट

दुर्मत मद जो पीवते बिखली पत कमली, राम रसायन जो रते नानक सच अमली। आसा महला पंजवा, उद्यम किया कराया आरंभ रचाया, नाम जपे जब जीवना गुरमंत्र दृढ़ाया। पाए परे सतगुरु कै जिन भरम बेदारिया, कर कृपा प्रभ अपनी सच सच सवारिया रहाओ। कर गहलीने अपने सच हुक्म रजाई, जो प्रभ दित्ती दात सा पूर्ण वड्याई। सदा सदा गुण गाई है जप नाम मुरारी, नेम निभायो सतगुरु प्रभ कृपा तारी। नाम तान गुण गाओ लाभ पूरे गुर दिता, वणजारे संत नानका प्रभ साहो अमिता। आसा महला पंजवा, जा का ठाकर तुही प्रभ ताके वड़ पागा, ओह सुहेला सद सुखी सब प्रम पाओ पागा। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पारा, करन करावन सगल बिद सो सदगुरु हमारा रहाओ। दूजा नाही और को ताका पौ करिए, गुर सेवा महल पाइए जग दुत्तर तरिए। दृष्ट तेरी सुख पाइए मन माहे निदाना, जा कौ तुम कृपाल पए सेवक से परवाना। अमृत रस हर कीर्तनो को विरला पीवे, वजो नानक मिले एक नाम रिद जप जप जीवे। आसा महला पंजवा, जा प्रभ की हौ चेरली सो सब ते ऊंचा, सब की ताका कांडिया थोरा यार मुचा। जी प्राण मेरा तनो साहिब की मनिया, नाम जिसे कै उजली तिस दासी गनिया रहाओ। वे प्रवाहो आनंद मैं नाओ माणक हीरा, रजी ताई सदा सुख जाका तू मीरा। सखी सहेरी संग की सुमत दृढ़ावो, सेवो साधु पाओ कर तो निधर पावो। सगली दासी ठाकरे सब कहती मेरा, जिसे सिंगारे नानका तिस सुख है बसेरा। आसा महला पंजवा, संतां की होए दासरी एहो अचारा सिखरी, सगल गुणा गुणी उत्तमो परता दूर ना पिखरी। एहो मन सुंदर अपना हर नाम जीठे रंगरी, त्याग स्याण पचातरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ। परता कह सो मानिए एहो सिंगार बनायरी, दूजा पाव विसारी एहो तंबोला खायरी। गुर का शब्द कर दीप को ए सत की सेज बिछायरी, आठ पहर कर जोड़ रहो तौ पेटे हर रायरी। तिस ही चज सिंगार सब साई रूप अपार री, साई सुहागण नानका जो पानी करतार री। आसा महला पंजवा, डीगन डोला तऊ लो जौ मन के परमा, परम काटे गुरे अपने पाए बिश्रामा। ओए बिखादी दोखिया ते गुरदे हूटे, हम छूटे अब उना ते ओए हम ते छूटे रहाओ। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लव दुखिया, गुर मेरे हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया। ना को दुश्मन दुखिया ना ही को मंदा, गुर की सेवा सेव को नानक खसम बंदा। आसा महला पंजवा, सुख सहज आनंद कणा हर कीर्तन गाओ, ग्रह निवारे सतगुरु दे अपना नाओ। बलिहारी गुरे अपने सत सत बल जाओ, गुरु विटा हो वारिया जिस मिल सच सुवाओ रहाओ। सगन अप सगन तिस कौ लग है, जिस जीत ना आवे
तिस जम नेण न आवई जो हर प्रभु पावै। पुन दान जप तब जेते सब उपर नाम, हर हर रसना जो जपै तिस पूर्ण काम। पै बिन से प्रम मोह गए को दिसै ना बिया, नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया। आसा करनावा महला पंजवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद चितवो चितव सर्व सुख पावो, आगे पावो के ना पावो। एक दा तार सगल है जाचक दूसर कह पह जावो, हाँ मांगो आन ल जावो। सगल छत्रपत एको ठाकर कौन समसर लावो रहाओ। उठो बैसो रह पे ना सको, दर्शन खोज खोजावो। ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार, तिनको महल दुलभावो। अगम अगम अगाध बोध कीमत परे ना पावो, ताकि शरण सतपुरख की सतगुर पुरख ते आवो। भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काट्यो बंद गरावो, कहो नानक जो साध संग पावो, कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आवो। आसा महला पंजवा अंतर गावो बाहर गावो, गावो जाग सवारी संग चलन कौ तोसा दीना, गोविंद नाम के व्यवहारी। अवर बिसारी बिसारी नाम

माहे तू बसता संग सगल बिखै की ब्यादे रहाओ। मेरी मेरी कर तो दिन रहन बिहावै पालखिन छीजै अरजादे। जैसे मिठे साध लुबाए झूठ तन दुर्गा दे। काम क्रोध अर लोभ मोह एह इंद्री रस लपटा दे। दीप वारी पुरख बिदाता बहुर बहुर जन्मा दे। जो भयो किरपाल दीन दुख भंजन तो गुरमिल सब सुख ला दे। कहो नानक दरैन त्याव मार काढ़ी सगलियो पा दे। इउं जपियो पाई पुरख विधाते भयो किरपाल दीन दुख भंजन जन मरण दुख लाथे रहाओ। दूजा आसा महला पंजवां निमुख काम स्वाद कारण कोट दिनस दुख पावै करी मोहत रंग माणै फिर बहुर बहुर पछतावै। अंधे चेत हर हर राया तेरा सो दिन नेड़ै आया रहाओ। पलक दृष्ट देख भूलो आग नीम को तूमर जैसा संग बिसियर स्यों है रे तैसे ही एहो पर ग्रहो। बैरी कारण पाप करता बस्त रही अमाना छोड़ जाए तिन ही स्यों संगी साजन स्यों बैराना। सगल संसार एह बिद व्याप्यो सो उबरियो जिस गुर पूरा। कहो नानक पाव सागर तरियो पहे पुनीत शरीरा।

कृपा पाए सहजाए दरसाए अब रातिया गोविंद स्यों संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मंदर लाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए सब तजी मने की काम करा चिर चिर चिर चिर भया मन बहुत प्यास लागी हर दर्शनो दिखावो मोहे तुम बतावो नानक दीन शरण आए गल लाए आसा महला पंजवां को बिखमगार तोरै आस प्यास तोह मो।

गुण गोविंद गावो। अन दिनो प्रभ त्यावो प्रम पीत जीत मिटावो। निद नाम नानक मोरै आसा महला पंजवा। काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम। हर भजन सफल काम रहाओ तज मान मोह विकार मिथिया। जप राम राम राम मन संतना कै चरण लाग। प्रभ गोपाल दीन दयाल पतत पावन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग। कर भगत नानक पूर्ण भाग आसा महला पंजवा। हर खसोग बैराग आनंदी खेलरी दिखायो रहाओ। खिनहू पै निरपै खिनहू खिनहू उठतायो। खिनहू रस भोगन खिनहू खिनहू तजायो। खिनहू जोग ता बौ पूजा खिनहू परमायो। खिनहू कृपा साधु संग नानक हर रंग लायो। राग आसा महला पंजवा। कर सतारवा आसावरी इको ओंकार सतगुर प्रसाद। गोबिंद गोबिंद कर हां हर हर मन प्यार हां। गुर कया सोचित धर हां अनस्यो तोर फेर हां। ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ। पंकज मोसर हां पग नहीं चले हर हां। गहड्यो मूड़ नर हां अन ना उपाव कर हां। तौ निकसै सरन पैरी सखी थिर थिर चित थिर हां। बन

समसर हां, अंतर एक पिर हां, बाहर अनेक तर हां, राजन जो कर हां, कहो नानक लोग या लोगीरी सखी, आसावरी महला पंजवा। मनसा एक मान हां, गुरस्यो नेत ध्यान हां, दृढ़ संत मंत ज्ञान हां, सेवा गुरचरान हां, तो मिलिया गुर कृपान मेरे।

गुरमुख राम नाम तृप्ता से खुइत पावो से हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लव लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साज पछाण अंतर की गत गुरमुख जाने साच शब्द बिन मैल ना पछाण। निरंकार मैं आकार समावे अगल कला सा साई टकावे सो नर गर्भ जो न आवे। जहां नाम मिले ते जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ। गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम वस्या सुखदाता अंदर बाणी ना मेरा ता। मेरा प्रभु लाए ता को लागे हो मैं मारे सब दे जागे एथे उथे सदा सुख आगे। मन चंचल बिद नाही जाने मन मुख मैला शब्द ना पछाणे गुरमुख निर्मल नाम वखाणे। हर जियो आगे करी अरदास साधु जन संगत होए निवास। किल विख दो काटे हर नाम परगास कर विचार आचार पराता सतगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम राता। आसा महला पहला मन मैंगल सक देवाना बन खंड माया मुहे हैराना। एत उत जाहे काल के चापे गुरम खोज लह करे आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमराओ राम नाम यत निर्मल अवर त्यागो हमें कौरा रहाओ। एहो मन मुग्द कहो क्यों रहसी बिन समझे जमका दुख सहसी। आपे बक्से सदगुर मिले काल कंटक मारे सच पे लै। एहो मन कर्मा एहो मन धर्मा एहो मन पैता ते जन्मा साक्त लोभी एहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा। गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभवन सोजी होई। एहो मन जोगी भोगी तपता पै गुरमुख चीने हर प्रव्या पै। मन बैरागी हमे त्यागी कट कट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाख है दर कर महली हर पत रख है। एहो मन राजा सूर संग्राम एहो मन निरपो गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस किए हमें ग्रास एक तथाए किए। गुरमुख राग स्वाद अंत आगे गुरमुख एहो मन भक्ति जागे अन हद सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पै निरंकारी। एहो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई। अह निस हर जस गुर प्रसाद घड़ घड़ सो प्रभ आज जुगाद। राम रसायन एहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दासन दासा। आसा महला पहला तन बिनसै तन का को कही है बिन गुर राम नाम कतल है। राम नाम तन संग सखाई अहनस निर्मल हर लिवलाई। राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख समकर नाम ना छोड़ो आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ। कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा जिस तू बख्शे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुण गाए। हर गुरदाता राम गोपाला जो पावे त्यों रख दयाला गुरमुख राम मेरा मन पाया रोग मिटे दुख ठाक रहाया। अवर ना औखद तंत ना मंता हर हर सिमरन किल विख हंता तू आप लावे नाम विसार तू आपे राखे कृपा तार। रोग परम भेद मन दूजा गुर बिन परम जपै जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देखै विण गुर शब्द जन्म के लिखै देख अचरज रहे बिस्माद घट घट सुर नर सहि समाद। भरपुर तार रहे मन माही तुम समसर अवर को नाही जाकी भक्त हित मुख नाम संत भगत की संगत राम। बंधन तोरे सहि त्यान छूटै गुरमुखार गुर ज्ञान ना जम दूत दुख तिस लागे जो जन राम नाम लिव जागे। भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पय हर रंग। आसा महला पहला एक तुगी गुर सेवे सो ठाकर जाने दुख मिटे सच शब्द पछाने। राम जपो मेरी सखी सखैनी सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ। बंधन मात पिता संसार बंधन सुत कन्या अरनार
बंधन कर्म धर्म हो किया। बंधन पोत कलत मन बिया, बंधन किरखी करे किरसान। हों मैं डन सह राजा मंगे दान। बंधन सौदा अण विचारी, तिप्त नाही माया मोह पसारी। बंधन शासन चैतन जाए, बिन हर भगत न पवी थाए। बंधन भेद बाद अहंकार, बंधन बिन सह मोह विकार। नानक राम नाम सरनाई, सतगुरु राखे बंध ना पाई। राग आसा महला पहला, अष्टपदियां करती जा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संदूर। से सरकाती मुनियां, गल विच आवै धूड़। महला अंदर होंदियां, हुण बहन ना मिलन हदूर। आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत ना पाया। कर कर देखै वेस रहाओ। जदों सियां वी आहियां, लाड़े सोहन पास। ही डोली चढ़ आईयां, दंद खंड कीते रास। उपरो पानी वारी है, चले चिमकन पास। एक लख लहन बैठिया, लख लहन खड़िया। गरी शुहारे खांदियां, मन से जड़ियां। तिन गल सिलका पाईया, तुटन मोसरिया। तन जो बंदो वैरी होए, जिनी रखे रंग लाए। दूता नो फरमाया, ले चले पत गवाए। जे तिस पावे दे वड्याई, जे पावे दे सजाए। अगों दे जे चेती है, तां कायत मिलै सजाए। साहा सुरत सवाई गवाईया, रंग तमाशा चाहे। बाप रवाणी फिर गई, कोयर ना रोटी खाए। इक ना वक्त खुवाई है, इक ना पूजा जाए। चौके बिन हिंदवाणिया, क्यों टिके कड़े नाए। राम न कबहू चेते ओ, हुण कहन ना मिले खुदाए। एक घर आवै अपने, एक मिल मिल पुछे सुख। एक ना हो लिखिया, बैबै रोवै दुख। जो तिस पावै सोथी है, नानक क्या मानुख। आसा महला पहला, कहां सो खेल तबेला कोड़े। कहां पेरी सहनाई, कहां सो तेग बंद गा ढेरड़। कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मो बंके। ऐथे दिसै नाही, एहो जग तेरा तू गोसाई। ए कड़ी मैं थापो थापे, जर वंड देवे पाई रहाओ। कहां सो घरदार मंड मैला, कहां सो बंकसराई। कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई। कहां सो पान तंबोली हरमा, होइया शाही माई। इस जर कारण कणी विगुती, इन जर कणी खुवाई। पापा बाजो होवै नाही, मुया साथ ना जाई। जिसनो आप खुवाए करता, खुसले चंग्याई। कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जा मीर सुनिया ताया। थान मुकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कोयर रुलाया। कोई मुगल ना होवा अंधा, किन ना परचा लाया। मुगल पठाना पई लड़ाई, रण में तेग बगाई। ओनी तुपकतान चलाई, ओनी हस चढ़ाई। जिनकी चीरी दरगह फाटी, तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अवर तुरकाणी, पटियाणी ठकराणी। एक ना पेरन सिर खुर पाटे, एक ना वस मसाणी। जिनके बंके करी ना आया, तिन क्यों रैण विहानी। आपे करे कराए करता, किसनों आख सुनाई है। दुख सुख तेरे पाना होवै, किसथे जाय रुवाई है। हुक्मी हुक्म चलाए विकसै, नानक लिखिया पाईए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा काफी महला पहला। कर अठवां अष्टपदिया, जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा। कूड़ कमावे आदमी बंद है कर बारा। जागो जागो सूते हो, चले अवन जारा रहाओ। नीत नीत कर बांधी।

सब नावै नौ लोच दी जिस कृपा करे सो पाए। बिन नावै सब दुख है सुख तिस जिस मन वसाए। तू बेअंत दयाल है तेरी सरनाई गुरपुरे ते पाई है नामे वड्याई। अरहाओ अंतर बाहर एक है बहुबिध से ट्यो पाई। हुक्मे कार कराईंदा दूजा किस कही है भाई। बुझना या बुझ

एक तोर पवित पावना है तुदना में लाए, गुर सेवा ते सुखी उपजाए, सच्चा सब बुझाए। एक कुचल कुचील विखली पते, नामो आप खुआए। ना ओन सिद्ध ना बुद्ध है, ना संजमी फिर उत्तवताए। नजर करे जिसे अपनी तिसनो पावनी लाए, सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए। लेखा पढ़ना पहुंची कथ कहना अंत ना पाए, गुरते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए। एहो मन देही सोध तू गुर शब्द विचार, नानक इस देही विच नाम निधान है, पाई है गुर कै हित अपार। आसा महला तीजा, सच रतियां सोहागनी जिन्ना गुर कै सब सिंगार, कर ही सो पिर पाया सच्चे शब्द विचार। अवगण गुणी बगसाया हर स्यों लिवलाई, हर वर पाया कामनी गुरमेल मिलाई रहाओ। एक पिर हदूर न जाननी दूजे परम पुलाए, क्यों पाए न डोहागनी दुखी रहन विहाए। जिन कै मन सच वसिया सच्ची कार कुमाए, अंदन सेवै सहज स्यों सचे माए समाए। दोहागणी परम भुलाईया कूड़ बोल बिख खाहे, पिर न जाणनु अपना सुनी सहज दुख पाहे। सच्चा साहिब एक है मत मन परम भुलाए, गुर पूछ सेवा करै सच निर्मल मन वसाहे। सोहागणी सदा पिर पाया हौ मैं आप गवाए, पिर सेती अंदन गह रही सच्ची सहज सुख पाए। मेरी मेरी कर गए पल्ले किश ना पाए, मैं नही डोहागणी अंत गई पछताए। सो पिर मेरा एक है एक सिउं लिवलाए, नानक जे सुख लोड़े कामणी हर का नाम मन वसाए। आसा महला तीजा, अमृत जिन्ना चखाए ओन रस आया सह सुवाए, सच्चा वे प्रवाहो है तिसनो तिल ना तमाए। अमृत सच्चा वरसदा गुरमुखा मुख पाए, मन सदा हरियावला सहजे हर गुण गाए रहाओ। मन मुख सदा दोहागणी दर खड़िया बिलाहे, जिन्ना पिरका स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाहे। गुरमुख बीजे सच जम्मै सच नाम वापार, जो इतला है लायन भगती दे भंडार। गुरमुख सदा सुहागणी पै पग सिंगार, अंदन रावे पर अपना सच रखे उतार। जिन्ना पिर रावे अपना तिना विटो बर जाओ, सदा पिर कै संग्रह विचो आप गवाए। तन मन शीतल मुख उजले पिर कै पाए प्यार, से सुहावी पिर रावे हमें तृष्णा मार। कर किरपा कर आया गुर कहे ते अपार, वर पाया सुहागणी केवल एक मुरार। सबे गुने बख्शाए लाए उन मेले मिलन हार, नानक आखने आखी है जे सुन तरे प्या। आसा महला तीजा, सतगुर ते गुणी उपजै जा प्रभ मिले सोए, सहजे नाम ते आई है ज्ञान प्रगट होए। ए मन मत जाने हर दूर है सदा वेख दूर, सद सुनदा सद वेखदा शब्द रहा भरपूर रहाओ। गुरमुख आप पछाणिया तिन्नी एक मन त्याया, सदा रवै पिर अपना सच्चा नाम सुख पाया। ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार, हर सरनाई भज पाओ पाए मुख द्वार। शब्द सुनिए शब्द बुझिए, सच रह लिवलाए शब्दे हमें मारिए, सच्चे मैल सुख पाए। इस युग में शोभा नाम की, बिन नाम शोभ ना होए। एह माया की शोभा चार दिहाड़े, जांदी बिलम ना होए। जिनी नाम विसारिया से मोहे मर जाहे, हरा साधना आयो बिष्टा माए समाहे। एक आपे बख्श मिलाया नो अंदर नामे लाए, सच कमावे सच रहे सच्चे सच समाहे।
ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਸੁਣੀਐ ਨਾ ਦੇਖੀਐ ਜਗ ਬੋਲਾ ਅੰਨਾ ਪਰਵਾਏ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਦੁਖ ਪਾਏ ਸੀ ਨਾ ਮਿਲੈ ਤਸੈ ਰਜਾਏ ਜਿਨ ਬਾਣੀ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਸੇ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਿੰਨਾ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸੇਦਰ ਸੱਚੇ ਜਾਣ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਬਦੋ ਹੀ ਭਗਤ ਜਾਪ ਦੇ ਜਿਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੱਚੀ ਹੋਏ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਿਆ ਨਉ ਮੰਨਿਆ ਸੱਚ ਮਿਲਾਵਾ ਹੋਏ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਪਤ ਹੋਏ ਸਫਲ ਤਿੰਨਾ ਕਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤਿੰਨ ਮਾਨੈ ਸਭ ਕੋਈ ਰਹਾਓ ਹਉ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜਾਤ ਹੈ ਅਤ ਕ੍ਰੋਧ ਅਵਮਾਨ ਸ਼ਬਦ ਮਰੈ ਤਾਂ ਜਾਤ ਜਾਏ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲੈ ਭਗਵਾਨ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟਿਆ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ ਨਾਮ ਨਵੇਂ ਨਿਧ ਪਾਇਆ ਭਰਿਆ ਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰਾ ਆਵੈ ਇਸ ਰਾਸੀ ਕੇਵਾ ਪਾਰੀਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੈ ਸੋ ਤਨ ਪਾਏ ਤਨਾਂਤਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ।

आन रस मैं भुलाया बिना मैं दुख पाए। सतगुर पुरख ना भेटो जे सती बूझ बुझाए। ए मन मेरे बावले हर चक साध पाए। अन रस लागा तू फिरै बिरथा जन्म गवाए रहाओ। इस युग मैं गुरमुख निर्मले सच नाम रह लिवलाए। बिन कर्मा किश पाईए नहीं क्या कर कया जाए। आप पछाणै शब्द मरै मनो तज विकार। गुर सरनाई भज पए बख्शे बख्शन हार। बिन नामै सुख ना पाईए ना दुख विचों जाए। एहो जग माया मोहे वे आपिया दूजे भरम भुलाए। दुहागणी पिरकी सार ना जानही क्या कर करै सिंगार। अंदन सदा जल्दी आ फिरै सेजै रवै ना पतार। सुहागणी महल पाया विचों आप गवाए। गुर सरनाई गुर शब्दी सिंगारिया अपने सह

आप मिलाए नु से मिले गुर शब्द विचार नानक नाम समाने मुख उजले ते सच्चा दरबार। आसा महला पंजवा अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पंच मनाए पंच रसाए पंच वसाए पंच गवाए इन बिद नगर बुठा मेरे भाई दुरत गया गुर ज्ञान दरड़ाई रहाओ। साज धर्म की कर दीनी वार फरहे मुहकम गुर ज्ञान विचार। नाम खेती बीजाओ भाई मीत सौदा करो गुर सेवो नीत। सांत सहज सोके सभाट सहवा पारी एक थाट। जे जिया डन को लै ना जगात सतगुर कर दीनी तुर की छाप। वखर नाम लद खेप चलावो लै लाहा गुरम कर आवो सतगुर साहो सिख मन जारे पूंजी नाम लेखा साज समारे। सो वसै इत कर जिस गुर पूरा सेव अब चल नगरी नानक देव। आसावरी महला पंजवा करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मन हर स्यो लागी प्रीत साध संग हर हर जपत निर्मल साची रीत रहाओ। दर्शन की प्यास कणी चित अनक प्रकार करो अनग्रो पार ब्रह्म हर कृपा धार मुरार। मन पर देसी आया मिलियो साध कै संग जिस वखर को चाहता सो पायो नम ऐ रंग। जेते माया रंग रस बिनस जाए खिन माहे भगत रते तेरे नाम स्यों सुख पुंचाए सब ठाए। सब जग चलत उपेखिए निचल हर को नाओ कर मितराई साध स्यों निचल पावे ठाओ। मीत साजन सुतबंध पा को होत ना साथ एक निवाहु राम नाम।

तू करावै सो करी प्यारे, अवर किश कर ना जाए। दिन रहण सब सुहावने प्यारे, जे जपिए हर नाओ साची साच साई कार कमावनी प्यारे। तुरमस्तक लेख लिखाए एको आप वर्तदा प्यारे, कटकर रह समाए संसार कूप ते उधर लै प्यारे, नानक हर शरण आए। राग आसा महला पहला, पट्टी लिखी एको अंकार सतगुर प्रसाद। ससै सोए सिरठ जिन साजी, सबना सहव एक भया। सेवत रहे चित जिनका लागा, आया तिनका सफल पया। मन काहे पूले मूड मना, जब लेखा देवै बीरा तो पड़िया रहाओ। ईवड़ी आद पुरख है दाता, आपे सच्चा सोई। इना अखरा मैं जो गुरमुख बूझै, तेसर लेख ना होई। ऊड़ै उपमा ता की कीजै, जा कांत ना पाया। सेवा करै सही फल पावै, जिनी सच कमाया। नंगै ज्ञान बुझै जे कोई, पढ़िया पंडित सोई। सर्ब जिया मैं एको जानै, ताहो मैं कह ना कोई। कक्कै केस पुंडर जब हुए,

दोष कर्मा अपनिया जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजे अवर जना। तदै तार कला जिन छोड़ी, हर चीजी जन रंग किया, तिहदा दिया सब नी लिया, कर्मी कर्मी हुकुम पया। नन्ने नाहा भोग नित भोगे, ना डीठा ना संभलिया, गली हो सो हगण भैने, कंत न कबहू मैं मिलिया। पप्पै पातशाहो परमेसर, वेखण काओ परपंच किया, देखे बूझे सबके जाने, अंतर बाहर रव रहया। फफे फाही सब जग फासा, जमकै संगल बंद लया, गुर प्रसादी से नर उबरे, जे हर शरणागत भज पया। बब्बे बाजी खेलन लागा, चौपड़ कीते चार जुगा, जी जंत सब सारी कीते, पासा टालन आप लगा। पब्बे पाले ऐसे फल पावे, गुर प्रसादी जन को पौ पया। मन मुख फिरे ना चेते मुड़े, लख चौरासी फेर पया। मम्मै मोह मरण मधुसूदन, मरण पया तब चेतव्या। काया पीतर यवरो पड़िया, मम्मा अखर विसरिया। यही है जन्म ना हो वी कदी, जेकर सच पछाणे, गुरमुख आखै गुरमुख बूझै, गुरमुख एको जाणै। आरारे रव रहया सब अंतर, जेते किए जनता, जनतो पाए तंदे सब लाए, कर्म होवा तिन्ना मिलया। लल्ले लाए तंदे जिन छोड़ी, मीठा माया मोह किया, खाना पीना समकर सहना, पाने ताके हुक्म पया। ववे वास दियो परमेश्वर, वेखण कहो जिन वेस किया, वेखे चाखे सबके जाने, अंतर बाहर रव रहया। अड़ाड़े राड़ करे क्या प्राणी, तुसे ते आवो जे अमर होवा, तुसे ते आवो।

ज्यों पावै त्वै चलाए जियो। एको ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा शंत कर चौथा। हर अमृत पिने लोयना मन प्रेम रतना राम राजे मन राम कसवटी लाया कंचन सोविना। गुरमुख रंग चलूलिया मेरा मन तनो पिना जन नानक मुस्क चकोलिया सब जन्म तन तन्ना। हर प्रेम बाणी मन मारिया अणिया ले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया। जीवन मुक्त सो आखिया मर जीवै मरिया जन नानक सतगुर मेल हार जगद उतर तरिया। हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे। गुरपूरै हर पाया हर भगत एक मंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अंत तरंगा। मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभर राया राम राजे। हाँ मांगाऊं सरन हर नाम की हर हर मुख पाया भगत वचल हर बिरद है हर लाज रखाया। जन नानक शरणागति हर नाम तराया आसा महला चौथा। गुरमुख टूंड टूंडेंदिया हर सज्जन लदा राम राजे कंचन काया कोट गाड़ विच हर हर सिद्धा। हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विद्धा तुर भाग वड्डे हर पाया नानक रस गुद्धा। पंथ दिशावा नित खड़ी मंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुर हर मार्ग चाली। मेरा मन तन्ना माधार है हम मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिलिया बनवाली। गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विशुन्ने राम राजे। मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने। हाँ मूर्ख कारे लाइया नानक हर कमे गुर अमृत पिनी देहुरी अमृत बुरके राम राजे। जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके। हर जन हर हर होया नानक हर इके आसा महला चौथा। हरे अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजे। गुर सतगुर सच्चा शाहो है सिख दे हर रासे। धन धन वन जा रावण जह गुर शाहो साबासे जन नानक गुर तिन्नी पाया जिन तुर लिखत लिलाट लिखासे। सच शाहो हमारा तू तनी सब जगत वन जा रहा राम राजे। सब पांडे तुदै साजिया विच वस्त हर थारा जो पावै पांडे विच वस्त सा निकलै क्या कोई करै विचारा। जन नानक हर बख्सिया हर भगत भंडारा हम क्या गुण तेरे विथरा स्वामी तू अपरे अपारो राम राजे। हर नाम सलाह है दिन रात एहा आस आधारो। हम मूर्ख किशु ना जान क्यों पावै पारो जन नानक हर का दास है हर दास पनिहारो। ज्यों पावै त्यों राख लै हम शरण प्रभ आए राम राजे। हम पूल विगाड़े दिन सरात हर लाज रखाए। हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए। आसा महला चौथा। जिन मस्तक तोर हर लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया राम राजे। अज्ञाना देरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया। हर लद्दार तन पदार्थो फिर बहुना चलिया जन नानक नाम आराध्या आराधार मिलिया। जिनी ऐसा हर नाम ना चेत्यो से काहे जगे आए राम राजे। एहो मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए। हुण वत्ते हर नाम ना बीजियो अगे भुखा क्या खाए मन मुखा नो फिर जन्म है नानक हर पाए। तू हर तेरा सब को सब तो दियो पाए राम राजे। किश हाथ किस दै किश नाही सब चले चलाए। जिन तू मिल है प्यारे से तुद मिल है जो हर मन पाए। जन नानक सतगुर भेटिया।

क्या कीजै, हर करता सब किश जानदा, सिर रोग हथ दीजै, जिन्ना नानक गुरमुख हिरदा सुध है, हर भगत हर लीजै, आसा महला चौथा, जिन अंतर हर हर प्रीत है, तेजन सुगण सियाने राम राजे, जे बारों पुल चुक बोल दे, पी खरे हर पाणे, हर संतानो होर थाओ नाही, हर मान निमाणे, जन नानक नाम दीबान है, हर तान सताने, जिथे जाए बह मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे, गुरसिखी सो थान पालिया, लै तूर मुख लावा, गुरसिखा की काल थाए पई, जिन हर नाम ते आवा, जिन नानक सतगुर पूजिया, तिन हर पूज करावा, गुरसिखा मन हर प्रीत है, हर नाम हर तेरी राम राजे, कर सेवै पूरा सतगुरु, भुख जाए लह मेरी, गुरसिखा की भुख सब गई, तिन पिछे हुर खाए कन्हेरी, जन नानक हर पुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर पुन केरी, गुरसिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुर डिठा राम राजे, गुरसिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजे, कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगे गुरसिखा मन मिठा, हर दर गै गुरसिख पै नाई है, जिन्ना मेरा सतगुर तुठा, जन नानक हर हर होया, हर हर मन बुठा, आसा महला चौथा, जिन्ना पेटिया मेरा पूरा सतगुरु, तिन हर नाम दृढ़ावै राम राजे, तिसकी तृष्णा भुख सब उतरै, जो हर नाम ते आवै, जो हर हर नाम ते आए दे, तिन जम नेड़ न आवै, जन नानक कौ हर कृपा कर, नित जपै हर नाम तरावै, जिनी गुरमुख नाम ते आया, तिन्ना फिर बिघन न होई राम राजे, जिनी सतगुर पुरख मनाया, तिन पूजे सब कोई, जिनी सतगुर प्यारा सेवया, तिन्ना सुख सद होई, जिन्ना नानक सतगुर पेटिया, तिन्ना मिलिया हर सोई, जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजे, तिन की निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा, जिन हर सेती मन मानिया, सब दुष्ट चख मारा, जन नानक नाम ते आया, हर रखण हारा, हर जुग जो भगतो पाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाक्ष दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदका पिठ दे, नाम देओ मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लए छडाया, आसा महला चौथा, शंत कर पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन परदेसी वे

हर किया कथा कहानियां मेरे प्यारे सतगुरु सुनाइया गुर विटड़िया हों कोली मेरे प्यारे जिन हर मेलाइया सब आसा हर पूरिया मेरे प्यारे मन चिंदेड़ा फल पाया हर तुथड़ा मेरे प्यारे जन नानक नाम समाया प्यारे हर बिन प्रेम ना खेल सा क्यों पाई गुर जित लग प्यारा देख सा हर दातड़े मेल गुरु मुख गुरमुख मेल सा गुर नानक पाया मेरे प्यारे तुर मस्तक लेख सा एको अंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला पंजवा शंत कर पहला अनदो अनद घना मैं सुप्रभ डीठा राम चाखे आड़ा मैं हर रस मीठा राम हर रस मीठा मन मैं बूठा सतगुर तूठा सहज पया गृह वसाया मंगल गाया पंच दुष्ट ओए भाग गया शीतलिया गाने अमृत बाणे साजन संत बसीठा कहो नानक हरस्यो मन मानिया सो प्रभ नैणी डीठा सोहे अड़े मेरे बंक द्वारे राम पाहुनड़े मेरे संत प्यारे राम संत प्यारे कार्ज सारे नमस्कार कर लगे सेवा आपे जानी आपे मानी आप स्वामी आप देवा अपना कार्ज आप सवारे आपे तारण तारे कहो नानक सौ घर मैं बैठा सोहे बंक द्वारे नव निदे मेरे घर मैं आई राम सब कुछ पाया नाम ते आई राम नाम ते आई सदा सिखाई सह सुभाई गोविंदा गणत मिटाई चुकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अचर जसो बनाई कहो नानक पे मेरे संगे ता मैं नाम निद पाई सरस्याड़े मेरे भाई समीता राम बिखमो बिखमे अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता तूटी पीता परमगड़ा पाया खजाना बहुत निधाना सानथ मेरी आप खड़ा सोई सुगयाना सो प्रधाना जो प्रभ अपना कीता कहो नानक जां वल स्वामी ता सरसे भाई मीता आसा महला पंजवा अकथा हर अकथ कथा किश जाय न जानी राम सुर नर मुन जन सहज बखानी राम सहजे बखानी अम्यो बाणी चरण कमल रंग लाया जप एक लख प्रभ निरंजन मन चिंदिया फल पाया तज मान मोह विकार दूजा ज्योति जो समाणी बिरवंत नानक गुर प्रसादी सदा हर रंग माणी हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वडभागी सत्संगत पाई राम वडभागी पाए नाम ते आए लाथे दुख संतापै गुरचरनी लागे परम्पो पागे आ मिटाया आपै कर कृपा मेले प्रभ अपने विछड़ कतै ना जाई बिनवंत नानक दास तेरा सदा हर सरनाई हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम वारी तिन वारी जावा सतबलिहारे राम सतबलिहारे कर नमस्कारे जिन भेड़ प्रभ जाता घट घट रव रहा सब थाई पूर्ण पुरख विदाता गुरपुरा पाया नाम ते आया जुए जन्म ना हारे बिनवंत नानक सरन तेरी राह कृपा तारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केद गावा राम तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम हर तूड़ी नाइयै मैल गवाइयै जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेसर प्रभ साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुर सरन तरीयै अपने प्रभ पावा आसा संत महला पंजवा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर चरण कमल मन बेदया किश आन ना मीठा राम राजे मिल संत संगत आराध्या हर कटकटे डीठा राम राजे हर कटकटे डीठा अमृतो बूठा जन मरण दुख नाठे गुण निद गाया सब दुख मिटाया हम मैं बिनसी गाठे प्रोसै सुभाई छोड़ ना जाई मन लागा रंग मजीठा हर नानक बेदे चरण कमल किश आन ना मीठा ज्यो राती जल माछली त्यो राम रसमाते राम राजे गुरपुरै उपदेसिया जीवनगत पाते राम राजे जीवनगत स्वामी अंतर जामी आप लिए लड़ लाए हर रतन पदार्थो प्रगटो पूर्णो छोड़ना कत हूं जा